0: लड़की और दीदी कोलंद और हम, ये 163 BNS भी तोड़े नहीं हम। अगर उधर नहीं है 163, उधर 144 जो हम बोलते थे वो नहीं है, फिर भी हम बोल रहे हैं हम तोड़े नहीं। एक गाड़ी जा रहा था, दूसरा कोई गाड़ी भी नहीं था, फिर भी ये हालत। दीदी तो पीपल्स लीडर है, मास्ट लीडर है, हमारी पार्टी की वर्कर कस्टोडियल डेथ हुआ, दीदी जाएंगे नहीं उसकी विक्टिम फैमिली को मिलने? ये हालत होगा लॉ एंड ऑर्डर की।
1: वी ममता दी, ममता बनर्जी वेंट टू दैट प्लेस एंड बिफोर व्हेन वी आर गोइंग इन ऑन द रोड ऑन नियरली 1 hour वी आर स्ट्रक बाय क्रिएटिंग ए आर्टिफिशियल ट्रैफिक जैम। एनीवे व्हेन वी रीच देयर, व्हेन वी रीच देयर That point of time, the BJP peoples were throwing big stones to the into the car itself, and continuously the stones were thrown, and Didi was about to be very.
2: Uni Jet Plus category pan, amra withdraw korini. ডাইরেক্টর অফ সিকিউরিটি সিনিয়র অফিসার এখানে আছেন, আমার সিকিউরিটির জন্যই আছেন। দেখুন, আমি ওনাকে নেমেই জিজ্ঞেস করেছিলাম, জি ইজ দেয়ার এনি কমিউনিকেশন? তারা বলেছেন কমিউনিকেশন আমাদের কাছে ছিল না। তবুও আমি টিভি ছবিতে যেটুকু দেখেছি, সিনিয়র পুলিশ ডিসির নেতৃত্বে পুলিশরা তাকে প্রপারলি সাপোর্ট দিয়েছে, এবং আমি বিজেপির কোনো পরিচিত মুখকেও দেখিনি, ঝান্ডাকেও দেখিনি।
3: মমতা ব্যানার্জিকে গাড়ি কে উপর কিচড় ফেঁকনা, পত্থর ফেঁকনা, চপ্পল ফেঁকনে কাজ দূর দূর তক ভারতীয় জনতা পার্টি কাজ সম্পর্ক নেই। আর তৃণমূল হামলোক শিখানে মত আয়ে ক্যা হো রা হে, তৃণমূল আর তৃণমূল কাজ লড়াই হয়, জনতা আর তৃণমূল কাজ লড়াই হয়। কিসি মুখ্যমন্ত্রী তো বহু দূর কি বাত হয়, কিসি মহিলা নেত্রী কাজ গাড়ি কে উপর, किसी नेता का गाड़ी के ऊपर पत्थर फेंका जाए, भारतीय जनता पार्टी इसका समर्थक नहीं है। हम इस घटना की निंदा करते हैं, और ऐसा हुआ तो पुलिस है, उसका जो कार्रवाई करना है पुलिस करेगी।
4: मारना, पकड़ना, कादा फेंकना, काली फेंकना, जूता का चप्पल फेंकना, ये हमारा संस्कृति नहीं हो सकता है, ये भाजपा का संस्कृति नहीं है। हो सकता है ममता बनर्जी बहुत कुछ किया है, बहुत दोष किया है, लेकिन हम तो ये समर्थन कभी नहीं कर सकते। वो भी एक महिला, और वो भी इतना उम्र के महिला, हम इसको समर्थन नहीं करते हैं। हम बार बार बोलते हैं, हमारा माननीय मुख्यमंत्री नहीं समर्थन करता है, हमारा माननीय राज्यसभापति समर्थन नहीं करता है। जो भी कर रहे, अगर भाजपा का स्टैंप लगाकर अगर करना आप ये ले रहे तो आप गलत।
5: Even as the political war of words speaks, the brother of the deceased TMC worker has claimed that he did not want to meet the former chief minister or the TMC leaders. Listen in to what's been said.
6: हमको उनसे कुछ बात नहीं की है, हमको बात नहीं करना है उनसे, क्या करेंगे हम बात करके। अभी हमको चाहिए मेरे भाई का विचार, बस और कुछ नहीं चाहिए हमको, तो हम किसी से बात करके क्या करेंगे।
5: We are shifting our focus. The Congress versus Shashi Tharoor debate has reignited over Rahul Gandhi's Gen Z outreach. After Congress MP Shashi Tharoor said Rahul's Chhatro Ki Goonj campaign had failed to resonate with the youth, it was Congress General Secretary KC Venugopal who urged the party leaders to exercise caution, warning against making statements that could please the BJP. He, however, said he did not believe Tharoor made the remarks intentionally. Tharoor said that the party needs to examine where it failed to connect, while Venugopal is defending Rahul Gandhi's outrage, pointing to the participation of the young people in his programs and protests. As we speak, let's also listen in to what is it that exactly Shashi Tharoor had said before which instigated this fallout, or rather these reactions from other Congress members.
7: The established parties will cease to be relevant unless they can listen to the new voices that they haven't heard so far. And I think, frankly, we should have started hearing them already with this. Interestingly enough, the issues taken up by the CJP and the Janta Ranta protesters had been taken up by us earlier. We had a Chhatron Ki Goonj thing, where Rahul Gandhi was addressing students about the paper leaks, about the things.
8: And that didn't resonate, sorry to interrupt, but that didn't resonate as much as this did.
7: Correct. And that's why we need to ask ourselves, what did we fail to do? Did we fail to listen? Did we fail to tap into, you know, the old cliche of having a finger on the pulse of the people? Was our finger missing from the pulse of Gen Z? And that's something we really need to interrogate and solve it.
5: The political war of words is intensifying, with Rahul Gandhi training his guns on the Modi government over the July 20th crackdown on the students in the national capital. Leader of the opposition in the Lok Sabha has sought accountability from Home Minister Amit Shah and Prime Minister Narendra Modi. Targeting the Home Minister, Rahul Gandhi has said that 13 days have gone by, but Amit Shah has not spoken a single word about the crackdown. He's also hit out at Prime Minister Modi, saying that instead of apologising to the students, he's busy forgiving them. But Uttar Pradesh Chief Minister, meanwhile, Yogi Adityanath, has hit back at the opposition, accusing the Congress and the Samajwadi Party of wrecking the economy, betraying the youth time and again, and dividing people for political gains. Listen in to what was said.
9: Us kalakhand mein baatne ka kaam us kalakhand mein un logon ne kiya tha jiske karan desh gulam hua tha. वही पाप आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता समाज को जाति के नाम पर बांटने का पाप फिर से कर रहे हैं बहनों और भाइयों.
5: The political war of words is intensifying, with Rahul Gandhi training his guns on the Modi government over the July 20th crackdown on students in the national capital. The leader of opposition in the Lok Sabha has sought accountability from Home Minister Amit Shah and Prime Minister Narendra Modi. Targeting the Home Minister, Rahul Gandhi has said that 13 days have gone by, but Amit Shah has not spoken a single word about the crackdown. He's also hit out at Prime Minister Modi, saying that instead of apologising to the students, he's busy forgiving them. But Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has hit back at the opposition and hard, accusing the Congress and the Samajwadi Party of wrecking the economy, betraying the youth's time and again, and dividing people for political gains. In fact, listen in to what he has to say.
9: Us kalakhand mein baatne ka kaam us kalakhand mein un logon ne kiya tha jiske karan desh gulam hua tha. वही पाप आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता समाज को जाति के नाम पर बांटने का पाप फिर से कर रहे हैं बहनों और भाइयों. इनके बांटने का परिणाम क्या है, कोई पूछे तो इन लोगों से. किसी ने पूछने का प्रयास किया कभी कि देश के अंदर और प्रदेश के अंदर सर्वाधिक समय तक कांग्रेस ने शासन किया, सर्वाधिक समय तक शासन किया, लेकिन इन्होंने अपने समय में इन्होंने क्या किया था युवाओं के लिए, क्या किया था किसानों के लिए, क्या किया था गरीबों के लिए, क्या किया था इन्होंने महिलाओं के लिए. इस समाजवादी पार्टी ने तो हर जिले में एक माफिया पाल दिया था, हर जिले में माफिया, हर थाने में माफिया का कब्जा, हर तहसील में माफिया का कब्जा, गरीब की जमीन पर कब्जा होता था, लैंड माफिया, केन माफिया, सैंड माफिया, कैटल माफिया और पेशेवर अपराध के लिए कुख्यात माफियाओं की समानांतर सत्ता एक प्रदेश की पहचान थी.
5: मैसिव ट्विस्ट surfaced in the Air India Flight 2379 turbulence saga. One of the two pilots of the flight that encountered severe turbulence while flying from Phuket to New Delhi on August 4th failed a dope test after the incident. The government has now confirmed India Today's news break earlier on the pilot's dope test, and the DGCA stated that both pilots underwent screening, with a pilot in command requiring a confirmatory test. The final lab report is awaited, while the AAIB will probe the very incident. Both pilots have been taken off roster pending further action. Air India Flight 2379 had a sudden loss of an altitude of 300 feet after encountering turbulence, and as many as 10 passengers, 4 crew members were hospitalized as a result. And in fact, total 17 people were injured. Earlier, Air India told India Today that it was in no position to comment as findings of the post-flight drug screening had not been shared with them.
10: वो इतने irresponsibly आकर के कुछ नशा करके या तो alcohol हो या तो कोई और drugs हो वो लेकर के आके फ्लाइट में इतने लोगों का जान अपने हाथ में रखते हैं, बहुत irresponsible है. और इससे भी ज़्यादा जो मेरे को क्या लगता है कि सिस्टम की गलती है. यहाँ पे जो DGCA हैं या एयरपोर्ट अथॉरिटी हैं या एयरलाइंस हैं, इनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, इनको इम्प्रूवमेंट्स करने चाहिए.

0: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.
1: You are watching India Today.
2: It's a deadlock, viewers, that continues in Jharkhand. Talks between the protesting students, the Jharkhand government, have ended without a resolution on the 16th day of the protest after a meeting that lasted over 5 long hours. The government proposed a probe headed by a retired judge, but students remain firm on their demand for a CBI probe and cancellation of all tainted examinations. The government has offered to cancel the 14th JPSC preliminary examination, but said that the CGL examination cannot be cancelled as it was conducted under court orders. Jharkhand Minister Sudivya Kumar Sonu has said the government accepted 98% of the students' demands, but differences remained on key issues. Students have said that they will continue their agitation and ghirao the Vidhan Sabha tomorrow. And that remains to be quite a major episode that will be unfolding. How it unfolds is something we'll keep a watch on. Meanwhile, Jharkhand Chief Minister Hemant Soren has claimed his government's actions gave the students the courage to come forward and raise their demands. He's assured that the youth will get justice and those responsible for irregularities will face the severest punishment, adding, there is no need to make the issue political at all.
3: रिफॉर्म्स का ज़्यादातर मांग जो है सर ने सहमति दी है कि उसके लिए हम कंसिडर करेंगे और कुछ चीज़ों में जो है सहमति नहीं बन पाई है उसके पीछे का कारण भी सर की तरफ से जो है वाजिब है, मेरा मानना है वाजिब है, लेकिन 14वीं जेपीएससी पे सर की सहमति है कि 14वीं जेपीएससी का परीक्षा रद्द हम लोग कर रहे हैं, साथ ही साथ बैकलॉग का 2 एग्जाम है उसको भी हम लोग रद्द कर रहे हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन पे भी सर की सहमति है। जो सबसे मेन बोन ऑफ कंटेंशन है वो जेएसएससी सीजीएल और कुछ पीजीटी वगैरह, और मुझे लगता है आंसू लिपिक का भी, जो हमारी एक बहन आई थी हमारे साथ में, सर ने उसको भी सहमति दी है कि हम लोग उस पर जो है विचार करेंगे और उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। अब जो सबसे बड़ा हम लोग का बोन ऑफ कंटेंशन है जेएसएससी सीजीएल का, साथ ही साथ टीडीपीएल ने जितनी परीक्षाएं कराई हैं, टीडीपीएल से जो भी परीक्षा हुई, हमारी डिमांड है कि सारी परीक्षाओं को रद्द किया जाना चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के जो उदाहरण भी कुछ कोर्ट्स किए हैं, सर चाहते हैं कि उसमें उनको कुछ समय दें, न्यायिक जांच की प्रक्रिया है, सर का कहना है कि हम लोग जो है कुछ समय लेंगे, पर हमारी मांग है कि चूंकि यह परीक्षा प्रक्रिया दूषित है टीडीपीएल के द्वारा, तो टीडीपीएल के द्वारा जितनी भी परीक्षा है वो समस्त परीक्षाओं को रद्द किया जाना चाहिए।
4: छात्र प्रतिनिधियों का यह मांग था कि सीजीएल की परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। सरकार का स्पष्ट कथन यह था जीपी परीक्षा ऑनरेबल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर हुई है, इसलिए इस परीक्षा को रद्द करने में सरकार सक्षम नहीं है। यह परीक्षा ऑनरेबल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में चल रही है। सरकार यही कर सकती है कि एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाकर इस जांच की मॉनिटरिंग कर दे, जिस पर छात्रों का मानने से इनकार हुआ। और हम ये समझते हैं कि 98% बिंदुओं पर सरकार ने सहमति प्रदान की, 2% बिंदु पूरे में मसले में जो बचे, जो सिर्फ और सिर्फ सीजीएल की परीक्षा के रद्द करने के थे, और सरकार का स्पष्ट कहना है कि जो माननीय न्यायालय के आदेश पर परीक्षा कंडक्ट की गई है, जिसका परीक्षा का प्रकाशन है, जिसके अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं, उनको सरकार अपने स्तर से रद्द नहीं कर सकती है। आज तीसरे दिनों की वार्ता और तमाम कंसल्टेशन के बाद हेमंत सोरेन जी के निर्देश पर सरकार ने यह निर्णय किया कि 14वीं जीपीएससी और 23-25 के बैकलॉग में हुई अनियमितताओं को दो तरीके से देखा जाएगा। आपराधिक मामलों की जांच सीआईडी करेगी, और चूंकि इसमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस भी हैं, पैसे का अवैध लेन देन हुआ है, इसलिए इसकी जांच के लिए ईडी से अनुरोध किया जाएगा। इसके उपरांत फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा, 90 दिनों के अंदर में इन लोगों पर चार्जशीट सबमिट की जाएगी। अलावे जो रिफॉर्म्स के मामले थे उस पर सरकार का यह कहना था कि विशेषज्ञों से राय लेकर ITISM, IIM रांची और एक्सलराई के विशेषज्ञों की राय के आधार पर एक कमेटी बनाकर सारा रिफॉर्म्स किया जाएगा।
5: राजनीतिक दलों के लिए एक रास्ता बनता है जहां युवा पीढ़ी को दिग्भ्रमित करने का है। मैं विशेष रूप से नौजवानों से कहूंगा, न हमारी राजनीतिक छत्रछाया की आपको आवश्यकता है, न किसी और राजनीतिक दलों की छत्रछाया की आपको आवश्यकता है। आप छात्र हैं, आपका अधिकार है, और आपका अधिकार आपको मिले, आपको न्याय मिले, ये काम करने की जिम्मेवारी सरकार की है जो पूरा होगा।
6: हमारे बच्चे जो आंदोलन कर रहे हैं, अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसके बारे में कुछ विस्तार से बताया। मेरा आग्रह है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी कहा है उस पर भरोसा करें, और हम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते। आप बात करके इसका समाधान करें, और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत चिंतित हैं इसके लिए, और वो लगातार हमसे बात कर रहे हैं कि बच्चों की समस्याओं को कैसे समाधान किया जाए। तो मेरा आप सभी बच्चों से आग्रह है कि बजाय लड़ाई इसके स्थान पर हमसे जब भी मिलेंगे आपको एक पॉजिटिव सकारात्मक रिस्पांस मिलेगा।
2: Shifting focus to West Bengal now. Former West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee's convoy allegedly attacked in North 24 Parganas today with stones, bricks, slippers all thrown at her vehicle during the protest. Mamata Banerjee, who was on her way to meet the family of the Trinamool worker Birju Keot, who allegedly died in police custody. She claimed that the attack could have been fatal had her car windows been open. She accused the police of failing to protect her, alleging they were instead providing protection to the BJP leaders. Now, West Bengal Chief Minister Shivendu Adhikari has countered Mamata Banerjee's claims, saying cops provided proper support with no BJP faces or flags seen. He's also said that her Z-plus security was never withdrawn and the former Chief Minister deserves full security and respect. Earlier, West Bengal BJP chief Shomik Bhattacharya had also condemned the attack while denying any involvement of the party. He stated that the clash was between the public and Mamata Banerjee.
7: मेरे को गाड़ी में बड़े बड़े पत्थर मारा गया बाहर से, एंटी सोशल पुलिस का सामने में। हमको इतना गाड़ी को अटक किया, अगर हम गाड़ी का कांच शीशा खुला रखता तो हमारा माथा फट जाता, हम लोग सब मर जाता। ऐसा पुलिस के सामने में हुआ, हम कभी ऐसा हमला नहीं देखा।
8: पुलिस क्या कर रहे हैं? इतना
7: पुलिस बीजेपी को प्रोटेक्शन दे रहा है।
9: पुलिस और बीजेपी की गूंज वो इकट्ठा होके इतने सारे ईट फेंका, ब्रिक्स फेंका, पत्थर फेंका, सोचा नहीं जाता। हम चार थे, एक छोटी सी लड़की और दीदी कोल्लंद और हम। ये 163 BNS भी तोड़े नहीं हम, अगर उधर नहीं है 163, उधर 144 जो हम बोलते थे वो नहीं है, फिर भी हम बोल रहे हैं हम तोड़े नहीं। एक गाड़ी जा रहा था, दूसरा कोई गाड़ी भी नहीं था, फिर भी ये हालत। दीदी तो पीपल्स लीडर है, मास्ट लीडर है, हमारी पार्टी की वर्कर कस्टोडियल डेथ हुआ, दीदी जाएंगे नहीं उसकी विक्टिम फैमिली को मिलने? ये हालत होगा लॉ एंड ऑर्डर की।
10: ममता बनर्जी वेंट टू दैट प्लेस एंड बिफोर व्हेन वी आर गोइंग इन ऑन द रोड ऑन नियरली वन आवर वी आर स्ट्रक बाय क्रिएटिंग ए आर्टिफिशियल ट्रैफिक जैम। एनीवे व्हेन वी रीच देयर That point of time, the BJP peoples were throwing big stones to the into the car itself, and continuously these stones were thrown, and Didi was about to be very.
11: Uni Z plus category pan, amra withdraw korini. ডাইরেক্টর অফ সিকিউরিটি সিনিয়র অফিসার এখানে আছেন, আমার সিকিউরিটির জন্যই আছেন। দেখুন, আমি ওনাকে নেমেই জিজ্ঞেস করেছিলাম, জি ইজ দেয়ার এনি কমিউনিকেশন? তারা বলেছেন কমিউনিকেশন আমাদের কাছে ছিল না, তবুও আমি টিভি ছবিতে যেটুকু দেখেছি সিনিয়র পুলিশ ডিসির নেতৃত্বে পুলিশরা তাকে প্রপারলি সাপোর্ট দিয়েছে, এবং আমি বিজেপির কোন পরিচিত মুখ কেউ দেখিনি, ঝান্ডা কেউ দেখিনি।
8: মমতা ব্যানার্জী গাড়ি উপর কিচড় ফেঁকনা, পত্থর ফেঁকনা, চপ্পল ফেঁকনে কাজ দূর দূর তক ভারতীয় জনতা পার্টি কাজ সম্পর্ক নেই। আর তৃণমূল হামলোক শিখানে মত আয়ে ক্যা হো রা হ্যাঁ, তৃণমূল আর তৃণমূল কাজ লড়াই হ্যাঁ, জনতা আর তৃণমূল কাজ লড়াই হ্যাঁ। কিছু মুখ্যমন্ত্রী তো বহু দূর কী বাত হয়, কিছু মহিলা নেত্রী কাজ গাড়ি কাজ উপর, কিছু নেতা কাজ গাড়ি কাজ উপর পত্থর ফেঁকা যায়, ভারতীয় জনতা পার্টি ইসকা সমর্থক নেই হ্যাঁ। আমি ইস ঘটনাকে নিন্দা করতে আর এসা হুয়া তো পুলিশ হ্যাঁ, যো কার্রবাই করনা হ্যাঁ পুলিশ করেগে।
12: মারনা, পকড়না, কাদা ফেঁকনা, কালি ফেঁকনা, জুতা কা চপ্পল ফেঁকনা, ইয়ে হামারা সংস্কৃতি নেই হো সকতা হ্যায়, ইয়ে ভাজপা কা সংস্কৃতি নেই হ্যায়। হো সকতা হ্যায় মমতা ব্যানার্জি বহুত কুছ কিয়া হ্যায়, বহুত দোষ কিয়া হ্যায়, লেকিন হাম তো ইয়ে সমর্থন কবি নেই কর সকতা, ও ভি এক মহিলা আর ও ভি ইতনা উমর কে মহিলা, হাম ইসকো সমর্থন নেই করতে হ্যাঁ, হাম বার বার বলতে হ্যাঁ, হামারা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নেই সমর্থন করতে, হামারা মাননীয় রাজ্যসভাপতি সমর্থন নেই করতে, জো ভি কর রে আগর ভাজপা কা স্ট্যাম্প লগা কর আগর করনা আপ ইয়ে লে রে তো আপ গলত।
2: ইভেন অ্যাজ দ্য পলিটিক্যাল ওয়ার অফ ওয়ার্ডস স্পিকস, দ্য ব্রাদার অফ দ্য ডিসিজড টিএমসি ওয়ার্কার হ্যাজ ক্লেমড দ্যাট হি ডিড নট ওয়ান্ট টু মিট দ্য ফর্মার চিফ মিনিস্টার অর দ্য টিএমসি লিডার্স। লিসেন ইন টু হোয়াটস বিন সেড।
13: হমক উনসে কুছ বাত নেই কি হাম, হমকো বাত নেই করনা উনসে, আব ক্যা করেঙ্গে হাম বাত করকে, আবি হমকো চাহিয়ে মেরে ভাই কা বিচার বাস, অর কুছ নেই চাহিয়ে হমকো, তো হম কিসি সে বাত করকে ক্যা করেঙ্গে।
2: We are shifting our focus. The Congress versus Shashi Tharoor debate has reignited over Rahul Gandhi's Gen Z outreach. After Congress MP Shashi Tharoor said Rahul's Chhatro Ki Goonj campaign had failed to resonate with the youth, it was Congress General Secretary K.C. Venugopal who's urged the party leaders to exercise caution, warning against making statements that could please the BJP. He, however, said he did not believe Tharoor made the remarks intentionally. Tharoor said that the party needs to examine where it failed to connect, while Venugopal is defending Rahul Gandhi's outreach, pointing to the participation of the young people in his programs and protests. As we speak, let's also listen in to what is it that exactly Shashi Tharoor had said before which instigated this fallout, or rather these reactions from other Congress members.
14: The established parties will cease to be relevant unless they can listen to the new voices that they haven't heard so far. And I think, frankly, we should have started hearing them already with this. Interestingly enough, the issues taken up by the CJP and the Janta Ranta protesters had been taken up by us earlier. We had a Chhatron Ki Goonj thing, where Rahul Gandhi was addressing students about the paper leaks, about the things.
15: And that didn't resonate, sorry to interrupt, but that didn't resonate as much as this did.
14: Correct. And that's why we need to ask ourselves, what did we fail to do? Did we fail to listen? Did we fail to tap into, you know, the old cliche of having a finger on the pulse of the people? Was our finger missing from the pulse of Gen Z? And that's something we really need to interrogate and solve it.
2: The political war of words is intensifying, with Rahul Gandhi training his guns on the Modi government over the July 20th crackdown on the students in the national capital. Leader of the opposition in the Lok Sabha has sought accountability from Home Minister Amit Shah and Prime Minister Narendra Modi. Targeting the Home Minister, Rahul Gandhi has said that 13 days have gone by, but Amit Shah has not spoken a single word about the crackdown. He's also hit out at Prime Minister Modi, saying that instead of apologizing to the students, he's busy forgiving them. But Uttar Pradesh Chief Minister, meanwhile, Yogi Adityanath, has hit back at the opposition, accusing the Congress and the Samajwadi Party of wrecking the economy, betraying the youth time and again, and dividing people for political gains. Listen in to what was said.
16: Us kalakhand mein baatne ka kaam us kalakhand mein un logon ne kiya tha jiske karan desh gulam hua tha. वही पाप आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता समाज को जाति के नाम पर बांटने का पाप फिर से कर रहे हैं। बहन और भाइयों,
2: द पॉलिटिकल वॉर ऑफ वर्ड्स इज इंटेंसिफाइंग विद राहुल गांधी ट्रेनिंग हिज गन्स ऑन द मोदी गवर्नमेंट ओवर द जुलाई 20th क्रैकडाउन ऑन स्टूडेंट्स इन द नेशनल कैपिटल। The leader of opposition in the Lok Sabha has sought accountability from Home Minister Amit Shah and Prime Minister Narendra Modi. targeting the Home Minister. Rahul Gandhi has said the 13 days have gone by, but Amit Shah has not spoken a single word about the crackdown. He's also hit out at Prime Minister Modi, saying that instead of apologizing to the students, he's busy forgiving them. But Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has hit back at the opposition and hard, accusing the Congress and the Samajwadi Party of wrecking the economy, betraying the youth's time and again, and dividing people for political gains. In fact, listen in to what he has to say.
16: उस कालखंड में बांटने का काम उस कालखंड में उन लोगों ने किया था जिसके कारण देश गुलाम हुआ था, वही पाप आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता समाज को जाति के नाम पर बांटने का पाप फिर से कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, इनके बांटने का परिणाम क्या है, कोई पूछे तो इन लोगों से। किसी ने पूछने का प्रयास किया कभी कि देश के अंदर और प्रदेश के अंदर सर्वाधिक समय तक कांग्रेस ने शासन किया, सर्वाधिक समय तक शासन किया, लेकिन इन्होंने अपने समय में इन्होंने क्या किया था युवाओं के लिए, क्या किया था किसानों के लिए, क्या किया था गरीबों के लिए, क्या किया था इन्होंने महिलाओं के लिए। इस समाजवादी पार्टी ने तो हर जिले में एक माफिया पाल दिया था, हर जिले में माफिया, हर थाने में माफिया का कब्जा, हर तहसील में माफिया का कब्जा, गरीब की जमीन पर कब्जा होता था, लैंड माफिया, केन माफिया, सैंड माफिया, कैटल माफिया और पेशेवर अपराध के लिए कुख्यात माफियाओं की समानांतर सत्ता एक प्रदेश की पहचान थी।
2: मैसिव ट्विस्ट surfaced in the Air India Flight 2379 turbulence saga. One of the two pilots of the flight that encountered severe turbulence while flying from Phuket to New Delhi on August 4th failed a dope test after the incident. The government has now confirmed India Today's news break earlier on the pilot's dope test, and the DGCA has stated that both pilots underwent screening with a pilot in command requiring a confirmatory test. The final lab report is awaited while the AAIB will probe the very incident. Both pilots have been taken off roster pending further action. Air India Flight 2379 had a sudden loss of an altitude of 300 feet after encountering turbulence, and as many as 10 passengers, 4 crew members were hospitalized as a result. And in fact, total 17 people were injured. Earlier, Air India told India Today that it was in no position to comment as findings of the post-flight drug screening had not been shared with them.
17: वो इतने इरिस्पॉन्सिबली आकर के कुछ नशा करके, या तो अल्कोहल हो या तो कोई और ड्रग्स हो, वो लेकर के आके फ्लाइट में इतने लोगों का जान अपने हाथ में रखते हैं, बहुत इरिस्पॉन्सिबल है। और इससे भी ज़्यादा जो मेरे को क्या लगता है कि सिस्टम की गलती है। यहाँ पे जो DGCA हैं या एयरपोर्ट अथॉरिटी हैं या एयरलाइंस हैं, इनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, इनको इम्प्रूवमेंट्स करने चाहिए अपने प्रोसेस में, ताकि हमारे जैसे लोग, हम तो चलो बचे, लेकिन बहुत जो नहीं बच पाए हैं आज तक और आगे, उनका लाइफ खतरे में नहीं जाए।
18: जब फ्लाइट नीचे जा रही थी तो मेरे को सबसे ज्यादा चिंता हुई बच्चों की। ये हमारे पास में जो बैठा हुआ था, मेरा दोहेता बैठा हुआ था, मैंने जोर से उसको पकड़ के बेल्ट लगाई, उसमें वो हैंडल मेरे यहाँ पे घुस के रिब्स में दो में थोड़ी चोट आई है, और मेरे हस्बैंड तो एकदम हवा में ही चले गए वहाँ उसमें, तो हम जोर जोर से मैं चिल्ला रही थी उनका नाम, तो फिर उनको एकदम से होश आया, उठ के सीट पे बैठे। पर ये बहुत बड़ा खिलवाड़ है, इतना मतलब फैमिलीज, इतने लोग बैठे हुए, 3 साल की बच्ची उछल के इतना पीछे तक चली गई, ये कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं यार। छोटे छोटे इंस्टेंसेस होते हैं जो जिंदगी भर के लिए, हमारे बच्चे अब कह रहे हैं कि हमको बैठना ही नहीं कभी फ्लाइट में, इट्स नॉट अ गुड थिंग।
2: Now, here is an AI reconstruction showing how the turbulence may have unfolded inside and around flight Air India 2379 on August 4th. The flight took off from Phuket, bound for New Delhi, but when it neared the Indian airspace, just minutes into the journey, the flight encountered severe turbulence. The aircraft suddenly shakes violently, force strong enough to send overhead baggage all falling from the cabin compartments. Passengers and crew thrown around, with at least 17 of them suffering serious injuries. And then comes the most harrowing and alarming moment. The aircraft suddenly plunges around 300 feet. And for those on board, it's a terrifying drop before the aircraft stabilizes and continues its journey. The flight eventually makes it safely to New Delhi from takeoff in Phuket with a sudden turbulence, falling baggage, injuries and the reported 300 feet plunge before the very final landing in Delhi. It was nothing short of a nightmare for the flyers. The Air India 2379 turbulence scare has taken a fresh turn, with aviation watchdog DGCA stepping in and ordering an AAIB probe as questions mount over what happened on board. Take a look at this report for more. The Air India flight AI2379 turbulence scare has taken a dramatic new turn. The government has now confirmed India Today's news break on the pilot's dope test. DGCA stated that both pilots underwent screening, with the pilot in command requiring a confirmatory test. The final lab report is awaited, while the AAIB will probe the very incident. The flight, an Airbus A320, encountered severe mid-air turbulence near airspace above Odisha on August 4, with the aircraft suddenly dropping around 300 feet in altitude. The incident left at least 17 people injured, including 13 passengers and 4 cabin crew, with some sustaining serious spinal and neck injuries. The aggrieved passengers are understandably furious.
18: जब फ्लाइट नीचे जा रही थी तो मेरे को सबसे ज़्यादा चिंता हुई बच्चों की. ये हमारे पास में जो बैठा हुआ था, मेरा दोहेता बैठा हुआ था, मैंने ज़ोर से उसको पकड़ के बेल्ट लगाई, उसमें वो हैंडल मेरे यहाँ पे घुस के रिब्स में दो में थोड़ी चोट आई है. और मेरे हस्बैंड तो एकदम हवा में ही चले गए वहाँ उसमें, तो हम जोर जोर से मैं चिल्ला रही थी उनका नाम, तो फिर उनको एकदम से होश आया, उठ के सीट पर बैठे. पर ये बहुत बड़ा खिलवाड़ है.
2: Now, the doping report has added a fresh layer of intrigue to an already troubling episode. Both pilots have been de-rostered and removed from flying duties while the investigation continues.
19: No amount of alcohol trace or the drug trace can actually cause the aircraft to get into turbulence. The turbulence is what is already existing by the natural forces. And if it is a clear air turbulence, then there is nothing in the aircraft or the weather radar that can warn the pilot, and the pilot will get into the turbulent air pocket without having known. And that is a risk that all the passengers and the aviation takes on.
2: But here's the catch. A positive dope test alone cannot be read as conclusive proof of a pilot being intoxicated at the controls. These screenings detect the presence of psychoactive substances, not necessarily impairment at the exact moment of the incident. Whether the narcotic substance played any role on the sudden altitude drop, or whether the turbulent encounter and the test result are not connected, remains unclear. Only a fully transparent probe can establish what truly happened aboard AI2379 and why. With Amit Bhardwaj, Bureau Report, India Today. Amid widespread rumours that the UPI payments could soon attract charges, the centre has now issued a clarification, saying consumers will not be charged for making UPI payments. The government has made it clear that all person-to-person transactions will continue to remain free, and even for merchants, there is no blanket charge that's being imposed or introduced. If and when a merchant discount rate, or what we know as an MDR, is announced, it will apply only to a limited set of merchant transactions and above a certain threshold, and that too at a nominal rate significantly lower than debit or credit card MDRs. The clarification, in fact, comes amid the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026, which proposes changes to the Payment and Settlement Systems Act 2007. So why amend the payment law at all? The government says UPI's rapid growth requires continued investment in cybersecurity, fraud prevention and infrastructure, while the ecosystem might also expand and attract more companies. The larger aim is to make UPI self-sustainable and future-ready, with subsidies alone not being enough to support its next phase of growth. Remember, UPI has become the backbone of India's digital payment ecosystem, transforming the very way the country has been paying since 2016-17. Today, it's in fact the world's largest real-time payment system, processing billions of transactions every month. In July alone, if we look at UPI, clocked 2,366 crore transactions worth nearly 29.9 lakh crore rupees. With UPI now living live in 11 countries, India's homegrown payment system has emerged as a global digital benchmark. But the next phase is about taking that success a step further, expanding UPI deeper into rural and semi-urban India and ensuring the ecosystem can sustain this growth. The focus now is on making UPI self-sustainable, affordable, while keeping it secure and strengthening its position as a globally recognized payment platform. And the wait is finally over for Bharat and the Commonwealth Games champions. Prime Minister Narendra Modi met India's medalists from the 2026 Commonwealth Games in Glasgow and congratulated them on their impressive campaign, where India won 39 medals, including 13 gold. And Prime Minister Modi hosted these athletes at his residence at 7 Lok Kalyan Marg and later shared pictures and a video of the interaction on social media. In the video, Prime Minister Modi was heard saying, "Jo khelega, wo khelega." In one of the pictures, Mirabai Chanu is seen gifting Prime Minister Modi India's biggest supporter medal. Prime Minister Modi said he was delighted to host the champions, adding that they had made the nation proud and would inspire many youngsters. We're leaving you with these very inspiring and heartwarming visuals. Thank you for watching.
20: Here for Bharat.
21: Hello friends, this is Sakshi Chaudhary. Aaj hum sab Commonwealth Games medalist ko hamare honorable PM sir ne bulaya hai aur hame bahut hi proud feel ho raha hai is baat par. Hame inse milke bahut hi acha laga. Ye bahut hi humble hai sir, aap kuch bole.
20: Jo khelega wo khelega. Always cheer for Bharat. Bharat Mata ki.
22: Jai.
20: Bharat Mata ki.
22: Jai.
20: Bharat Mata ki.
22: Jai.
1: You are watching India Today.

0: are watching India Today.
1: It's a deadlock, viewers, that continues in Jharkhand. Talks between the protesting students, the Jharkhand government, have ended without a resolution on the 16th day of the protest after a meeting that lasted over 5 long hours. The government proposed a probe headed by a retired judge, but students remain firm on their demand for a CBI probe and cancellation of all tainted examinations. The government has offered to cancel the 14th JPSC preliminary examination, but said that the CGL examination cannot be cancelled as it was conducted under court orders. Jharkhand Minister Sudivya Kumar Sonu has said that the government accepted 98% of the students' demands, but differences remained on key issues. Students have said that they will continue their agitation and ghirao the Vidhan Sabha tomorrow. And that remains to be quite a major episode that will be unfolding. How it unfolds is something we'll keep a watch on. Meanwhile, Jharkhand Chief Minister Hemant Soren has claimed his government's actions gave the students the courage to come forward and raise their demands. He's assured that the youth will get justice and those responsible for irregularities will face the severest punishment, adding there is no need to make the issue political at all.
2: रिफॉर्म्स का ज़्यादातर मांग जो है सर ने सहमति दी है कि उसके लिए हम कंसिडर करेंगे और कुछ चीज़ों में जो है सहमति नहीं बन पाई है उसके पीछे का कारण भी सर की तरफ से जो है वाजिब है मेरा मानना है वाजिब है लेकिन 14वीं जेपीएससी पे सर के सहमति है कि 14वीं जेपीएससी का परीक्षा रद्द हम लोग कर रहे हैं साथ ही साथ बैकलॉग का 2 एग्जाम है उसको भी हम लोग रद्द कर रहे हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन पे भी सर की सहमति है जो सबसे मेन बोन ऑफ कंटेंशन है वो जेएसएससी सीजीएल और कुछ पीजीटी वगैरह और मुझे लगता है आंसू लिपिक का भी जो हमारी एक बहन आई थी हमारे साथ में सर ने उसको भी सहमति दी है कि हम लोग उस पर जो है विचार करेंगे और उसको हम लोग कंसिडर करेंगे अब जो सबसे बड़ा हम लोग का बोन ऑफ कंटेंशन है जेएसएससी सीजीएल का साथ ही साथ टीडीपीएल ने जितनी परीक्षाएं कराई हैं टीडीपीएल से जो भी परीक्षा हुई हमारी डिमांड है कि सारी परीक्षाओं को रद्द किया जाना चाहिए उसके लिए हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के जो उदाहरण भी कुछ कोर्ट्स किए हैं सर चाहते हैं कि उसमें उनको कुछ समय दें न्यायिक जांच की प्रक्रिया है सर का कहना है कि हम लोग जो है कुछ समय लेंगे पर हमारी मांग है कि चूंकि यह परीक्षा प्रक्रिया दूषित है टीडीपीएल के द्वारा तो टीडीपीएल के द्वारा जितनी भी परीक्षा है वो समस्त परीक्षाओं को रद्द किया जाना चाहिए
3: छात्र प्रतिनिधियों का यह मांग था कि सीजीएल की परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए सरकार का स्पष्ट कथन यह था कि यह परीक्षा ऑनरेबल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर हुई है इसलिए इस परीक्षा को रद्द करने में सरकार सक्षम नहीं है यह परीक्षा ऑनरेबल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में चल रही है सरकार यही कर सकती है कि एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाकर इस जांच की मॉनिटरिंग कर दे जिस पर छात्रों का मानने से इनकार हुआ और हम ये समझते हैं कि 98% बिंदुओं पर सरकार ने सहमति प्रदान की 2% बिंदु पूरे में मसले में जो बचे जो सिर्फ और सिर्फ सीजीएल की परीक्षा के रद्द करने के थे और सरकार का स्पष्ट कहना है कि जो माननीय न्यायालय के आदेश पर परीक्षा कंडक्ट की गई है जिसका परीक्षा का प्रकाशन है जिसके अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं उनको सरकार अपने तरफ से रद्द नहीं कर सकती है आज तीसरे दिनों की वार्ता और तमाम कंसल्टेशन के बाद हेमंत सोरेन जी के निर्देश पर सरकार ने यह निर्णय किया कि 14वीं जीपीएससी और 23-25 के बैकलॉग में हुई अनियमितताओं को दो तरीके से देखा जाएगा आपराधिक मामलों की जांच सीआईडी करेगी और चूंकि इसमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस भी हैं पैसे का अवैध लेन देन हुआ है इसलिए इसकी जांच के लिए ईडी से अनुरोध किया जाएगा इसके उपरांत फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा 90 दिनों के अंदर में इन लोगों पर चार्जशीट सबमिट की जाएगी अलावे जो रिफॉर्म्स के मामले थे उस पर सरकार का यह कहना था कि विशेषज्ञों से राय लेकर ITISM IIM रांची और एक्सलराई के विशेषज्ञों की राय के आधार पर एक कमेटी बनाकर सारा रिफॉर्म्स किया जाएगा
4: राजनीतिक दलों के लिए एक रास्ता बनता है जहां युवा पीढ़ी को दिग्भ्रमित करने का मैं विशेष रूप से नौजवानों से कहूंगा न हमारी राजनीतिक छत्र छाया की आपको आवश्यकता है न किसी और राजनीतिक दलों की छत्र छाया की आपको आवश्यकता है आप छात्र हैं आपका अधिकार है और आपका अधिकार आपको मिले, आपको न्याय मिले, ये काम करने की जिम्मेवारी सरकार की है जो पूरा होगा।
5: हमारे बच्चे जो आंदोलन कर रहे हैं, अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसके बारे में कुछ विस्तार से बताया। मेरा आग्रह है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी कहा है उस पर भरोसा करें और हम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते। आप बात करके इसका समाधान करें और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत चिंतित हैं इसके लिए और वो लगातार हमसे बात कर रहे हैं कि बच्चों की समस्याओं को कैसे समाधान किया जाए। तो मेरा आप सभी बच्चों से आग्रह है कि बजाय लड़ाई इसके स्थान पर हमसे जब भी मिलेंगे आपको एक पॉजिटिव सकारात्मक रिस्पांस मिलेगा।
1: Shifting focus to West Bengal now. Former West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee's convoy allegedly attacked in North 24 Parganas today with stones, bricks, slippers all thrown at her vehicle during the protest. Mamata Banerjee, who was on her way to meet the family of the Trinamool worker Birju Keot, who allegedly died in police custody. She claimed that the attack could have been fatal had her car windows been open. She accused the police of failing to protect her, alleging they were instead providing protection to the BJP leaders. Now, West Bengal Chief Minister Shuvendu Adhikari has countered Mamata Banerjee's claims, saying cops provided proper support with no BJP faces or flags seen. He's also said that her Z Plus security was never withdrawn and the former Chief Minister deserves full security and respect. Earlier, West Bengal BJP chief Shomik Bhattacharya had also condemned the attack while denying any involvement of the party. He stated that the clash was between the public and Mamata Banerjee.
6: मेरे को गाड़ी में बड़े बड़े पत्थर मारा गया बाहर से एंट्री पोस्ट पुलिस का सामने इतना गाड़ी को अटक किया। अगर हम गाड़ी का कांच शीशा खुला रखता तो हमारा माथा फट जाता, हम लोग सब मर जाता। ऐसा पुलिस का सामने में हुआ, हम कभी ऐसा हमला नहीं
7: देखा।
6: पुलिस बीजेपी को प्रोटेक्शन दे रहा है।
8: पुलिस और बीजेपी की गूंज वो इकट्ठा होके इतने सारे ईट फेंका, ब्रिक्स फेंका, पत्थर फेंका, सोचा नहीं जाता। हम चार थे, एक छोटी सी लड़की और दीदी कोलंद और हम। ये 163 BNS भी तोड़े नहीं हम। अगर उधर नहीं है 163, उधर 144 जो हम बोलते थे वो नहीं है, फिर भी हम बोल रहे हैं हम तोड़े नहीं। एक गाड़ी जा रहा था, दूसरा कोई गाड़ी भी नहीं था, फिर भी ये हालत। दीदी तो पीपल्स लीडर है, मास्ट लीडर है, हमारी पार्टी की वर्कर कस्टोडियल डेथ हुआ, दीदी जाएंगे नहीं उसकी विक्टिम फैमिली को मिलने? ये हालत होगा लॉ एंड ऑर्डर की?
9: वी ममता बनर्जी वेंट टू दैट प्लेस एंड बिफोर व्हेन वी आर गोइंग इन ऑन द रोड ऑन नियरली 1 hour वी आर स्ट्रक बाय क्रिएटिंग ए आर्टिफिशियल ट्रैफिक जैम। एनीवे व्हेन वी रीच देयर That point of time, the BJP peoples were throwing big stones to the into the car itself, and continuously these stones were thrown, and Didi was about to be very.
10: Uni Z Plus category pan, amra withdraw korini. ডাইরেক্টর অফ সিকিউরিটির সিনিয়র অফিসার এখানে আছেন, আমার সিকিউরিটির জন্যই আছেন। দেখুন, আমি ওনাকে নেমেই জিজ্ঞেস করেছিলাম, জি ইজ দেয়ার এনি কমিউনিকেশন? তারা বলেছেন কমিউনিকেশন আমাদের কাছে ছিল না। তবুও আমি টিভি ছবিতে যেটুকু দেখেছি, সিনিয়র পুলিশ ডিসির নেতৃত্বে পুলিশরা তাকে প্রপারলি সাপোর্ট দিয়েছে এবং আমি বিজেপির কোনো পরিচিত মুখকেও দেখিনি, ঝান্ডাকেও দেখিনি।
9: মমতা ব্যানার্জী গাড়ি কে উপর কিচড় ফেঁকনা, পত্থর ফেঁকনা, চপ্পল ফেঁকনে কাজ দূর দূর তক ভারতীয় জনতা পার্টি কাজ সম্পর্ক নেই আর তৃণমূল হামলোক শিখানে মত আয়ে ক্যা হো রা হে তৃণমূল আর তৃণমূল কাজ লড়াই হ্যাঁ জনতা আর তৃণমূল কাজ লড়াই হ্যাঁ কিসি মুখ্যমন্ত্রী তো বহু দূর কী বাত হ্যাঁ কিসি মহিলা নেত্রী কাজ গাড়ি কে উপর किसी नेता का गाड़ी के ऊपर पत्थर फेंका जाए। भारतीय जनता पार्टी इसका समर्थक नहीं है। हम इस घटना की निंदा करते हैं, ऐसा हुआ तो पुलिस है, उसका जो कार्रवाई करना है पुलिस करेगी।
7: मारना, पकड़ना, कादा फेंकना, काली फेंकना, जूता का चप्पल फेंकना, ये हमारा संस्कृति नहीं हो सकता है, ये भाजपा का संस्कृति नहीं है। हो सकता है ममता बनर्जी बहुत कुछ किया है, बहुत दोष किया है, लेकिन हम तो ये समर्थन कभी नहीं कर सकते, वो भी एक महिला और वो भी इतना उम्र के महिला, हम इसको समर्थन नहीं करते हैं। हम बार बार बोलते हैं, हमारा माननीय मुख्यमंत्री नहीं समर्थन करते, हमारा माननीय राज्यसभापति समर्थन नहीं करता, जो भी कर रहे हैं, अगर भाजपा का स्टैंप लगाकर अगर करना आप ये ले रहे तो आप गलत।
1: Even as the political war of words speaks, the brother of the deceased TMC worker has claimed that he did not want to meet the former chief minister or the TMC leaders. Listen into what's been said.
11: हमको उनसे कुछ बात नहीं की है, हमको बात नहीं करना है उनसे, क्या करेंगे हम बात करके। अभी हमको चाहिए मेरे भाई का विचार, बस और कुछ नहीं चाहिए हमको, तो हम किसी से बात करके क्या करेंगे।
1: We are shifting our focus. The Congress versus Shashi Tharoor debate has reignited over Rahul Gandhi's Gen Z outreach. After Congress MP Shashi Tharoor said Rahul's Chhatro Ki Goonj campaign had failed to resonate with the youth, it was Congress General Secretary K.C. Venugopal who urged the party leaders to exercise caution, warning against making statements that could please the BJP. He, however, said he did not believe Tharoor made the remarks intentionally. Tharoor said that the party needs to examine where it failed to connect, while Venugopal is defending Rahul Gandhi's outrage, pointing to the participation of the young people in his programs and protests. As we speak, let's also listen in to what is it that exactly Shashi Tharoor had said before which instigated this fallout, or rather these reactions from other Congress members.
12: The established parties will cease to be relevant unless they can listen to the new voices that they haven't heard so far. And I think, frankly, we should have started hearing them already with this. Interestingly enough, the issues taken up by the CJP and the Jantar Mantar protesters had been taken up by us earlier. We had a Chhatro Ki Goonj thing, where Rahul Gandhi was addressing students about the paper leaks, about the things.
13: And that didn't resonate, sorry to interrupt, but that didn't resonate as much as this did.
12: Correct. And that's why we need to ask ourselves, what did we fail to do? Did we fail to listen? Did we fail to tap into, you know, the old cliche of having a finger on the pulse of the people? Was our finger missing from the pulse of Gen Z? And that's something we really need to interrogate and solve it.
1: The political war of words is intensifying, with Rahul Gandhi training his guns on the Modi government over the July 20th crackdown on the students in the national capital. Leader of the opposition in the Lok Sabha has sought accountability from Home Minister Amit Shah and Prime Minister Narendra Modi. Targeting the Home Minister, Rahul Gandhi has said that 13 days have gone by, but Amit Shah has not spoken a single word about the crackdown. He's also hit out at Prime Minister Modi, saying that instead of apologising to the students, he's busy forgiving them. But Uttar Pradesh Chief Minister, meanwhile, Yogi Adityanath, has hit back at the opposition, accusing the Congress and the Samajwadi Party of wrecking the economy, betraying the youth time and again, and dividing people for political gains. Listen in to what was said.
14: Us kalakhand mein baatne ka kaam us kalakhand mein un logon ne kiya tha jiske karan desh gulam hua tha. वही पाप आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता समाज को जाति के नाम पर बांटने का पाप फिर से कर रहे हैं। बहनों और भाइयों,
1: The political war of words is intensifying, with Rahul Gandhi training his guns on the Modi government over the July 20th crackdown on students in the national capital. The leader of opposition in the Lok Sabha has sought accountability from Home Minister Amit Shah and Prime Minister Narendra Modi. Targeting the Home Minister, Rahul Gandhi has said that 13 days have gone by, but Amit Shah has not spoken a single word about the crackdown. He's also hit out at Prime Minister Modi, saying that instead of apologising to the students, he's busy forgiving them. But Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has hit back at the opposition and hard. accusing the Congress and the Samajwadi Party of wrecking the economy, betraying the youth's time and again, and dividing people for political gains. In fact, listen in to what he has to say.
14: उस कालखंड में बांटने का काम उस कालखंड में उन लोगों ने किया था जिसके कारण देश गुलाम हुआ था, वही पाप आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता समाज को जाति के नाम पर बांटने का पाप फिर से कर रहे हैं। बहन और भाइयों, इनके बांटने का परिणाम क्या है, कोई पूछे तो इन लोगों से। किसी ने पूछने का प्रयास किया कभी कि देश के अंदर और प्रदेश के अंदर सर्वाधिक समय तक कांग्रेस ने शासन किया, सर्वाधिक समय तक शासन किया, लेकिन इन्होंने अपने समय में इन्होंने क्या किया था युवाओं के लिए, क्या किया था किसानों के लिए, क्या किया था गरीबों के लिए, क्या किया था इन्होंने महिलाओं के लिए। इस समाजवादी पार्टी ने तो हर जिले में एक माफिया पाल दिया था, हर जिले में माफिया, हर थाने में माफिया का कब्जा, हर तहसील में माफिया का कब्जा, गरीब की जमीन पर कब्जा होता था, लैंड माफिया, केन माफिया, सैंड माफिया, कैटल माफिया और पेशेवर अपराध के लिए कुख्यात माफियाओं की समानांतर सत्ता एक प्रदेश की पहचान थी।
1: मैसिव ट्विस्ट surfaced in the Air India Flight 2379 turbulence saga. One of the two pilots of the flight that encountered severe turbulence while flying from Phuket to New Delhi on August 4th failed a dope test after the incident. The government has now confirmed India Today's news break earlier on the pilot's dope test, and the DGCA has stated that both pilots underwent screening with a pilot in command requiring a confirmatory test. The final lab report is awaited while the AAIB will probe the very incident. Both pilots have been taken off roster pending further action. Air India Flight 2379 had a sudden loss of an altitude of 300 feet after encountering turbulence, and as many as 10 passengers, 4 crew members were hospitalized as a result. And in fact, total 17 people were injured. Earlier, Air India told India Today that it was in no position to comment as findings of the post-flight drug screening had not been shared with them.
15: वो इतने इरेस्पॉन्सिबली आकर के कुछ नशा करके, या तो अल्कोहल हो या तो कोई और ड्रग्स हो, वो लेकर के आके फ्लाइट में इतने लोगों का जान अपने हाथ में रखते हैं, बहुत इरेस्पॉन्सिबल है। और इससे भी ज़्यादा जो मेरे को क्या लगता है कि सिस्टम की गलती है। यहाँ पे जो DGCA हैं या एयरपोर्ट अथॉरिटी हैं या एयरलाइंस हैं, इनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, इनको इम्प्रूवमेंट्स करने चाहिए अपने प्रोसेस में, ताकि हमारे जैसे लोग, हम तो चलो बचे, लेकिन बहुत जो नहीं बच पाए हैं आज तक और आगे, उनका लाइफ खतरे में नहीं जाए।
16: जब फ्लाइट नीचे जा रही थी तो मेरे को सबसे ज़्यादा चिंता हुई बच्चों की। ये हमारे पास में जो बैठा हुआ था, मेरा दोहेता बैठा हुआ था, मैंने ज़ोर से उसको पकड़ के बेल्ट लगाई, उसमें वो हैंडल मेरे यहाँ पे घुस के रिब्स में दो में थोड़े चोट आई है, और मेरे हस्बैंड तो एकदम हवा में ही चले गए वहाँ उसमें, तो हम जोर जोर से मैं चिल्ला रही थी उनका नाम, तो फिर उनको एकदम से होश आया, उठ के सीट पे बैठे। पर ये बहुत बड़ा खिलवाड़ है, इतना मतलब फैमिलीज, इतने लोग बैठे हुए, 3 साल की बच्ची उछल के इतना पीछे तक चली गई, ये कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं यार। छोटे छोटे इंस्टेंसेस होते हैं जो जिंदगी भर के लिए

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: And we're now getting some breaking news. This is regarding the Jharkhand students' protest. Now, ahead of the assembly march, there has been an appeal by the student protesters for it to be a peaceful protest. So this the students in Ranchi have appealed for unity and peaceful protest. It's a big appeal for the protest to be peaceful, the march to be peaceful. So the call for all students to come together, appeal for a united march to the Jharkhand Assembly, that will be beginning at 10 a.m. today. And the students are saying that the protesters must not cause traffic snarl. And there's an appeal to carry banners, posters and slogans. And the students have asked the protesters not to clash with the police and for it to be a peaceful one. And the students have urged the government to hear their demands. So a call has been made for peaceful and democratic protest, not to hit the cops, not to clash with the police. And the students have appealed to the protesters that ignore rumors. So meanwhile, Jharkhand student leader Mahato has appealed to the students, saying that we want students to peacefully protest and for this march to be a success. So at 10 a.m. today, the student protesters will be marching from the old assembly to the new assembly. And meanwhile, just ahead of the march, an appeal has been made by the student protesters to the other protesters for it to be a peaceful one. They've called for the unity of the protesters and not to clash with the cops.
1: 10 August 2026, हम लोग का इस लड़ाई का निर्णायक दिन आप लोगों को पहले ही आग्रह कर चुका हूँ मैं आग्रह करता हूँ कि कल का विधानसभा चुनाव को ऐतिहासिक सफल बनाने हेतु संपूर्ण झारखंड प्रदेश के सभी छात्र अभिभावक सुबह 10:30 बजे पुराना विधानसभा मैदान पहुंचे और वहां से विधानसभा द्वारा शुरू करेंगे.
0: So at 10 a.m. today, the students' march will be starting. They will be marching from the old assembly in Ranchi to the new assembly. And just ahead of that, the student leaders have appealed to the protesters that make it a peaceful one and don't clash with the police, carry banners, posters, don't believe the rumors, if any. And that is the appeal that has been made by the student leaders who are fasting, who are sitting on a protest. And today, remember, is the 17th day of the student stir in Ranchi. And at 10 a.m., they will be marching from the old assembly to the new assembly. And there have been three round of talks with the government delegation. The student delegation met the government delegation. In fact, yesterday it was the third round of talks. But still, there has been no breakthrough, although some demands the government has agreed to some of the demands of the student protesters. But what the student protesters are saying, that the key demands still remain unfulfilled, which includes a CBI probe and the cancellation of all examination. So those are some of the demands, key demands that still remain unfulfilled. And that is why the plan to march from the assembly, the old assembly to the new assembly, is still on, and that will be taking place today. And meanwhile, if we talk about the government says that we have agreed to 98% of the demands of the student protesters. Meanwhile, the students claim that the key demands still remain unfulfilled. So those are the contradictory versions coming to the fore from the student protesters, the student delegation that met the government, and the government after meeting the student delegation. My colleague Satyajit is now joining us with more details on this. Satyajit, tell us more about the third round of talks which were held yesterday between the student delegation and the government. And what we're learning is that at 10 a.m. the march will be beginning, and peaceful protest calls and appeals have already been made by the student leaders. Satyajit. All right, we'll try to fix that connection with Satyajit, but that is the latest. Just ahead of the march to the assembly, the student leaders have made this appeal to the protesters that it should be a peaceful protest. The protesters should not clash with the cops, and they should carry banners and posters with them. They should not believe rumors, and they need to make this march a success. So that is the appeal by the student leaders. In fact, Mahato has made this appeal, who's on an indefinite hunger strike. So this appeal has been made just hours before the march. Remember, the march to the assembly will be beginning at 10 a.m. at around 10 a.m. today in Ranchi, where the student protesters will be marching from the old assembly to the new assembly. It's already the 17th day of the protest, and there have been 3 rounds of talks with the government so far, but still there has been no resolution. There has been no breakthrough. And in fact, yesterday also the student delegation met the government, but still no breakthrough, and hence the assembly march is still on. The plan to march to the assembly is still on. Now, what the government is saying, that we have agreed to most of the demands of the student protesters, while the student protesters say that only 50% of the demands have been fulfilled, have been agreed to by the government, whereas the key demands still remain. No assurances given on the key demands, which includes a CBI probe and the cancellation of all exams, not just the JPSC exams. Let's take a look at this ground report by my colleague Ashutosh Mishra.
2: It's a big showdown day in Jharkhand. The students have announced to march to assembly. The students are heading in a huge number to old Vidhan Sabha. And these autos are ferrying the students to Vidhan Sabha. The students, after the deadlock continues over the JSSC and the CGL, the meetings, 2 rounds of meeting for last 3 days have been inconclusive, and finally the deadlock continues. The students have announced to march Vidhan Sabha. In the meanwhile, BNS 163 have been imposed, massive security apparatus in place. However, the peaceful protest for 16 days enters on 17th, and this is the march the student with set code to maintain discipline, no violence. The students have announced to show of strength marching towards assembly. In Ranchi with Lokendra, I'm Ashutosh Mishra for India Today.
0: And we're now being joined by MOS Defence and Ranchi MP Sanjay Seth on the broadcast. Sanjay Seth ji, aapne kal jo protest site hai usko visit kiya, aap bachchon se mile, jo students wahan dharne pe baithe hain, 17th din hai aaj, kya demands ke bare mein bataya un bachchon ne aapko, un student protesters ne aapko, aur unki kya aage ki strategy rahegi?
3: Dekho, aaj 17 din ho gaye is protest ke, aur is 17 dinon mein sarkar kuch hi kadam chal pai hai. Ab students ki demand hai CBI jaanch. हमको ये नहीं लग रहा है, आपत्ति क्यों है सरकार को सीबीआई जांच कराने में. दूसरा, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करो. ये दो ही डिमांड है मेजर. और कल तो अभय तिवारी, जो टीडीपीएल का कर्मचारी है, उसने कल बताया सीआईडी को कि 2 करोड़ रुपया देकर ख्यांगते जी, जो मुख्य सचिव थे, जो फिर बाद में अध्यक्ष बन गए जेएसपीएल के, उनको 2 करोड़ रुपए देके टीडीपीएल को, एजेंसी को परीक्षा लेने के लिए अधिकृत कर दिया. और 20% हर एग्जाम में 20% कमीशन. ये कल सीआईडी को अभय तिवारी ने बताया है. अब बताओ, इतना बड़ा खेल, इतना बड़ा घोटाला, छात्रों की यही डिमांड है कि रोजाना कुछ ना कुछ घोटाला सामने आ रहा है, और एक एक सीट बेची गई है, इसीलिए सीबीआई की जांच स्टूडेंट मांग कर रहे हैं.
0: जी संजय सेठ जी, जो सरकार ने आश्वासन दिया है कि सीआईडी का प्रोब होगा, 90 दिन में ये प्रोब खत्म होगा, रिटायर्ड जज विल मॉनिटर दिस प्रोब, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि सीबीआई की जांच इसके बावजूद जरूरी है? क्या सीआईडी वो जांच नहीं कर सकती है? क्या सीआईडी पे भरोसा नहीं है?
3: नहीं, इसमें देखो, इसमें पैसे का बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, और उसके बाद जमीन के कागजात भी लिए गए बच्चों से. बट हमको सरकार को क्या आपत्ति है? सरकार अगर स्टूडेंट के साथ खड़ा होना चाहती है तो आपत्ति क्या है सीबीआई जांच कराने? हमसे ही पूछ रहे हैं. और जैसे एसीएफ परीक्षा रद्द हो, एफआरओ की परीक्षा रद्द हो, पीजीटी जो माध्यमिक आचार्य है उसकी परीक्षा रद्द हो, सरकार उस पर भी तैयार नहीं है. कहीं ना कहीं नियत में खोट है. और तभी उन्होंने अंग्रेजों का एक फार्मूला अपनाया, डिवाइड एंड रूल. अलग अलग संगठनों को खुद बुलाकर, जो धरने पे नहीं बैठे हैं, जो इस आंदोलन नहीं है, उन संगठनों को बुला के वार्ता कर रही है. ये क्या है? 17 दिन हो गए, हमारे हजारों बच्चे बैठे हैं, भारी बारिश में बैठे हैं, कोई सुविधा नहीं है, तो सरकार इतनी क्यों असंवेदनशील, हमको आज तक समझ में नहीं आया।
0: संजय सेठ जी, जैसा आपने कहा कि 17 दिन हो गए हैं, आप स्ट्रांगली बैक भी कर रहे हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए इस पूरे मामले में, तो क्या आप इस मांग को, स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स की इस मांग को सेंटर तक ले जाने की मदद करेंगे?
3: बिल्कुल, इसीलिए मैं कल धरना स्थल पे मैं गया और परसों मैं हॉस्पिटल भी गया जहां क्रांति एक बच्चा आईसीयू में एडमिट है, वहां दो हमारी बेटियां हैं वो भी कल उनकी भी हालत खराब थी। तो सरकार इंतजार 17 दिन तो क्यों कर रही है? जहां पर धरना हो रहा है, जयपाल सिंह स्टेडियम से मुख्यमंत्री आवास 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर के आवाज में सरकार कई बार वार्ता पे वार्ता वार्ता डेलीगेशन को बुला रही है, वह क्यों, हमको आज तक समझ में नहीं आया। ये हमारे बच्चे हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारे बच्चे हैं ये, इनको तो विद इन 24 आवर्स आपको बुलाकर बात कर लेनी चाहिए थे। सरकार क्यों डर रही है?
0: संजय सेठ जी, अभी 17 दिन हुए हैं जी,
3: क्योंकि बड़ी मछलियां फंसने का डर है। और कल तो खुद मुख्य सचिव रहे छांगते जी पे आरोप आ गया, सीआईडी के सामने अभय तिवारी ने ये कबूल किया कि 2 करोड़ रुपया हमने टीडीपीएल एजेंसी को परीक्षा लेने के लिए हमने छांगते जी को दिया, और उसपे हर परीक्षा पे जो वसूली होगी पैसे की छात्रों से उसका 20% कमीशन जाएगा, और उसने परसों ये कबूल किया था। हाँ, एक परीक्षा में 80-80 लाख रुपए लेते हैं और 80 लाख जो लेते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होता है
0: जी।
3: किसको डिस्ट्रीब्यूट होता है, कहाँ तक पैसा जाता है, तो सीबीआई बात बताएगी ना
0: जी। संजय सेठ जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये हमारे बच्चे हैं जो कि धरने पे बैठे हैं, 17 दिन हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी ने जेएमएम पे, कांग्रेस पे निशाना साधा है कि वो बच्चों की डिमांड्स को इग्नोर करे, लेकिन जो बातचीत है वो लगातार चल रही है, 3 राउंड ऑफ टॉक्स कंप्लीट हो चुके हैं, 3रा राउंड कल था, सहमति सारी चीजों पे नहीं बन पाई है, लेकिन अगर हम उसको कंपेयर करें जो हमने जंतर मंतर पे देखा, 25 दिन तक प्रोटेस्ट होता रहा, एक डायलॉग नहीं हुआ सरकार की तरफ से बच्चों के साथ, तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स है इसको भी ऑपोजिशन हाईलाइट कर रही है कि कैसे ऑपोजिशन स्टिल बातचीत कर रही है बच्चों से।
3: सिर्फ 10% ही डिमांड पूरी हुई है, मेरा ये एकदम स्पष्ट मानना है कि ये पूरी तरह नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट है, पूरी तरह। हाँ, हम छात्रों के साथ खड़े हैं, इसीलिए हम सभी सांसद मकर गेट पे संसद के सामने हम लोगों ने प्रदर्शन किया, उसके बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के आगे संसद में अनशन बैठे और हम सब छात्रों के साथ खड़े हैं, लेकिन सरकार को अपने बच्चों के साथ तुरंत ही वार्ता करनी चाहिए थी, और वार्ता करके जो डिमांड्स है कि सारी परीक्षा जो टीडीपीएल ने की ली थी उन परीक्षाओं को आप रद्द करो, आपत्ति क्या है
0: जी। संजय सेठ जी, चूंकि आपने मकर द्वार की बात की, तो मकर द्वार पे ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं वो कंटिन्यूअसली प्रोटेस्ट कर रही हैं, वो एक स्टेटमेंट डिमांड कर रहे हैं होम मिनिस्टर अमित शाह का, जो भी 20 जुलाई को हुआ, पैलेट गन्स यूज हुए, AK-47 यूज हुए, तो होम मिनिस्टर की तरफ से चुप्पी क्यों है, अभी तक कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया गया है पार्लियामेंट में इस पूरे मामले के ऊपर?
3: अरे, हम तो चर्चा को तैयार है, हाउस चलने दे रहे हैं क्या, ये हमेशा प्रदर्शन, हमेशा हाउस एडजॉर्न हो रहा है, क्यों कर रहे हैं हमेशा? आप देखो, कई कई सेशन से इनका एक ही कार्य रहा है, सेशन को बाधित करो, सांसदों को बोलने मत दो, कोई विधायी कार्य नहीं हो, हमेशा यह सेशन ही, अभी मानसून सेशन छोड़ दो, पिछला सेशन भी देखो, बजट सेशन देखो, बजट सेशन से पहले विंटर सेशन देखो, इनका एक ही डिमांड रहती है कि किसी तरह सरकार के काम में, संसद में चर्चा नहीं हो, यही एक एजेंडा है
0: जी। संजय सेठ जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि आपको क्या लगता है कि अभी क्या सेफगार्ड्स होने चाहिए जिससे कि जो स्टूडेंट्स का भरोसा है वो वापस आ सकता है, क्या गारंटीज देनी चाहिए सरकार को जिससे कि ये पूरा भरोसा वापस आ सकता है और ये जो प्रोटेस्ट है इसको एंड किया जा सकता है?
3: सीबीआई जांच और छांगते जी को गिरफ्तार किया जाए, ACF, FRO, PGT, इन परीक्षाओं को रद्द किया जाए, JSSC की, CGL की परीक्षा, ACF की परीक्षा, FRO की परीक्षा, PGT जो माध्यमिक आचार्य जिसकी परीक्षा है, उन सभी परीक्षाओं को रद्द किया जाए, यही तो है। क्या है, सरकार इतनी डिस्परेट क्यों है, असहज क्यों है, आज तक हमको समझ में नहीं आया। ये अपने बच्चे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको बहुत संजीदा होना चाहिए, आप खुद, आप अपने मंत्रियों को भेजो, आप अपने बच्चों को बुलाओ, बुलाकर बात करके, हाँ बोले बच्चे आप मेरे बच्चे हो, चलो हम सीबीआई जांच करा दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हर्जा क्या है, मेरे आज तक ये समझ में नहीं आया इन 17 दिनों में।
0: जी संजय सेठ जी, यही चीज ऑपोजिशन को भी नहीं समझ में आ रही थी जब दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहे थे, उनका भी यही कहना था कि सिर्फ बच्चों से बात ही तो करनी है, बात हुई लेकिन काफी देर बाद हुई, जब बात हाथ से निकल गई थी। यहाँ पे बातचीत 3 राउंड की हो चुकी है अभी तक प्रोटेस्ट से पहले।
3: हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष देश के स्वास्थ्य मंत्री लगातार बैठक कर रहे थे, लगातार देश के इतने बड़े नेता लगातार बैठक कर रहे थे।
0: और पहली बैठक जो हुई थी सीजेपी के साथ वो 20 जुलाई को हुई थी, जब मार्च जंतर मंतर वाला मार्च जब पार्लियामेंट की तरफ गया, यहाँ पे जो मार्च है असेंबली वाला उससे पहले 3 राउंड खत्म हो चुके हैं।
3: मैं कह रहा हूँ ना, मुख्यमंत्री जी को इतना संजीदा होना चाहिए था, अपने बच्चों को बुलाकर बात कर लेनी चाहिए। इतना है क्या है, आज लाखों बच्चे सड़क पर उतर चुके हैं और आप देखना किस कदर पूरी संस्कारी तरीके से, पूरी डिसिप्लिन से इन 17 दिनों के अंदर एक भी गलत नारा नहीं लगा, किसी के खिलाफ नारा नहीं लगा, देश कभी देश के खिलाफ नारा नहीं लगा, किसी जाति सूचक पे नारा नहीं लगा, किसी पुलिस वाले पे गंदी हरकत नहीं की गई, किसी पुलिस पे पत्थर नहीं फेंका गया, किसी बेटी के द्वारा अभद्र व्यवहार नहीं हुआ।
0: जी तो संजय सेठ जी, वो तो बच्चों का कॉल है, बच्चों ने वो डिसाइड किया है कि उनको पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं चाहिए, पर इससे क्या आप ये कहना चाहते हैं कि कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जंतर मंतर प्रोटेस्ट में था? क्या आप दोनों में कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं?
3: मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन मैं एकदम स्पष्ट कह दूं कि झारखंड के बच्चों ने पूरे देश को एक मैसेज दिया है कि डेमोक्रेटिक वे में पूरी संस्कार के साथ, पूरे अनुशासन के साथ कैसे हम अपने डिमांड के लिए प्रोटेस्ट कर सकते हैं। एक मैसेज है। आप देखो, एक भी इंस्टेंट बता दो कि कहीं से वहां पर कोई किसी के खिलाफ मुर्दाबाद का नारा लगा हुआ, किसी के खिलाफ गंदी हरकत की होगी, नहीं। एक मैसेज है
0: जी। जी संजय सिंह जी,
3: करना चाहूंगा ऐसे झारखंड के बच्चों को जिन्होंने अद्भुत इस भारतीय लोकतंत्र के लिए एक माइलस्टोन प्रोटेस्ट किया है।
0: जी बिल्कुल, एक एग्जाम्पल सेट किया है कि किस तरीके से पीसफुली प्रोटेस्ट किया जा सकता है बिना किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के और बिना किसी कंट्रोवर्शियल नारों के। संजय सेठ जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो दैट वाज एमओएस डिफेंस एंड रांची एमपी संजय सेठ, जस्ट अहेड ऑफ द मेगा मार्च टू द असेंबली दैट इज स्लेटेड फॉर टुडे एट 10 AM। द स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स इन रांची विल बी मार्चिंग फ्रॉम द ओल्ड असेंबली टू द न्यू असेंबली, डिमांडिंग अ सीबीआई प्रोब इन द अलेजेड इररेगुलरिटीज इन द examination and cancellation of all the tainted examination. Let's now take a look at what are the 7 demands that are keeping this stir, the Ranchi stir, alive. So the first one is the JSSC and the CGL exam cancellation. So students are demanding that these two examinations must be the JSSL and CGL exam must be cancelled due to the alleged irregularities and concerns over its fairness. What the government has promised is the cancellation of the JPSC examination, but not this one. The next demand is the CBI probe into the CGL exam irregularity. So they want an independent CBI investigation into the alleged irregularities and not just a CID probe, which has been assured by the government. Then the recruitment system must be reformed. So the government is being urged to make the recruitment process more transparent, fair and accountable. Private agencies in exam scams must be ousted. So that's another demand, because the private agencies allegedly linked to the exam irregularities should be removed from the recruitment related work. This is what the student protesters are demanding. The government must follow a fixed recruitment calendar. So the government should announce and strictly follow a fixed schedule for all the recruitment exams. Time-bound conduct of the pending recruitment exam, that's also one of the key demands, that all delayed recruitment exams should be conducted within clearly defined deadlines. 100% fulfillment of charter of demands. So protesters want the government to implement all the demands listed in their charter without partial measures. So as of now, the student delegation claims that only 50% of the demands have been assured by the government, have been agreed to by the government, whereas the government claims that almost 98% of the demands we have agreed to. And but those are the contradictory versions, because the student delegation is saying that our key demands, the central demands, which includes the CBI investigation, the cancellation of all tainted examination, has still not been given an assurance for. So there is no breakthrough in the Jharkhand talks. The protesters are demanding the cancellation of all tainted exams, and the government has offered cancellation of 14th JPSC prelims only. The protesters are demanding fresh, fair and transparent examination. The government has offered 2023-2025 backlog seats won't be filled. Now, the protesters are also demanding CBI probe into the irregularities, whereas the government is offering retired judge-led panel to monitor the CID probe, which will be completed within 90 days. The protesters are demanding that there should be strict punishment for guilty, whereas the government has offered that charge sheets will be filed against accused within 90 days. One of the demands is also that there should be reforms in the recruitment agencies, whereas the government has offered expert committee for the reforms.

0: CBU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: यू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

प्रदेश पूरे उत्साह के साथ सहभागी बन रहा है। 9 से 17 अगस्त तक तिरंगा यात्राएं, प्रभात फेरियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्वच्छता अभियान तथा शहीद स्मारकों पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 14 एवं 15 अगस्त को 5 करोड़ घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य है। तो आइए हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़ कर अपनी सहभागिता सुनिश्चित करिए। अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा पोर्टल पर अपलोड करिए। सर्वप्रथम देश है भाव ये लाएं, हर घर तिरंगा फहराएं।

0: A very good morning to all our viewers. You're watching India's Agenda on India Today with me, Anjali Pandey. And right now we're getting some breaking news. Prime Minister Narendra Modi met India's medal winners from the 2026 Commonwealth Games at his official residence, 7 Lokkalyan Marg in the national capital on Sunday, congratulating them for their outstanding performance in Glasgow. And India finished fourth overall, returning with an impressive haul of 39 medals, 13 gold, 17 silver and 9 bronze. And during the interaction, Prime Minister Modi congratulated the athletes and heard about their experiences at the Games. Gold medalist boxer Sakshi Chaudhary was among the prominent champions who interacted with the Prime Minister. And encouraging the athletes and young Indians to take up sports, Prime Minister Modi delivered a simple message.
1: इतने आंसू टपक रहे थे मुझे लगता है कि आंसू के हर बूंद से जैसे गोल्ड मेडल टपक रहा है. क्या हुआ, वो रेस्टोरेंट वाले से झगड़ा कर रही थी? उस मैप पर नजर जाना, मैं सच बताता हूँ, लंबे समय तक लोगों को याद.
2: 2015 वर्ल्ड मिलिट्री गेम थे और मेरी पाकिस्तान के साथ पहली फाइट आ गई थी. वो फाइट तो मैं जीत गया और फिर वो मेरे को बोला कि मतलब भाईजान, आपका नाम नरेंद्र है, आपके कोच का नाम नरेंद्र है, आपके प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र है, तो मुझे नरेंद्र नाम से नफरत हो गई है.
1: मेरे यहाँ मुझे यहाँ लगभग 12-13 साल हो गए इसी मकान में. अगर मैंने रेगुलरली और हर बार किसी को रिसीव किया है, किसी को मैं मिला हूं, तो खिलाड़ी है. पिछले 10-12 सालों के आप लोगों के पुरुषार्थ के कारण, भारत को लगातार विजय दिलाने के आपके प्रयासों के कारण और उत्तरोत्तर सफलता में नई ऊंचाइयां पार करने की परंपरा के कारण, जो काम शायद हम स्कूलों में जाके कहें कि नहीं नहीं भाई खेलना चाहिए, ये करना चाहिए, वो काम स्कूलों में जाकर के हम कर सकते थे, उससे ज्यादा आपका मेडल उनको इंस्पायर करता है. तुमने मुझे वादा किया था पिछली बार कि तुम्हारी दोनों बेटियां खिलाड़ी बन जाएगी.
3: हाँ जी, अभी वे उम्र की छोटी है, अगले कॉमनवेल्थ में एक घर में 3 मेडल ला के दिखाई.
1: पक्का?
4: जब मैं दौड़ रहा था, जब मेरा इवेंट था 29 को, तो उस दिन गुरु पूर्णिमा थी, तो उस दिन मेरे गुरु को मैंने गिफ्ट दे दिया.
1: बड़ी शान बढ़ाई आपने. इतने आंसू टपक रहे थे मुझे लगता है कि आंसू के हर बूंद से जैसे गोल्ड मेडल टपक रहा है.
5: मैं बहुत ज्यादा खुशी थी, इमोशनल भी थे उसी दिन, खुशी ज्यादा था. और मैं इसलिए रोई थी कि मेरा पेरिस ओलंपिक में मेरे 1 kg में मेडल रह गई थी. और एक प्लेयर्स की लाइफ में क्या क्या हमको फेस करना पड़ते हैं, तो ये 4 साल के अंदर मैं कितना क्या क्या कुछ मैंने फेस किया था. हर टाइम इंजरी ही चल रहे थे और फैमिली प्रॉब्लम वो सब हो रहा था, तो बहुत मुश्किल से मैं ये 4 साल फेस किया था. तो वो सब जब पोडियम में जब मैं खड़ी थी सर, और हमारी जो फ्लैग ऊपर जाते हैं और हमारे नेशनल एंथम जब बजते हैं, तो सर हम रुक नहीं सकते सर, अपना आप आंसू निकलते हैं. वो
1: बहुत बहुत बढ़िया. आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है.
6: सब डर रहे थे हमसे कि इंडिया के साथ फाइट आ गई, अब तो हम पहली फाइट ही हार जाएंगे, हमारा मेडल भी नहीं आएगा.
1: यानी मान के चलते हैं.
6: हाँ सर.
1: क्या हुआ, वो रेस्टोरेंट वाले से झगड़ा कर रही थी?
7: हम लोगों का तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस था, लास्ट डे था और सब जीत के गए थे और पूरा इंडिया के लोग थे, तो थोड़ा सा मुझे बुरा लग रहा है ना. तो मैंने उनको अच्छे से बोला, रिक्वेस्ट किया था सर, फिर उन्होंने मान भी लिया, अभी चेंज भी हो गया सर.
1: इस विजय की परिस्थिति, खुशी, आनंद अपने साथियों के साथ और गेम पूरे हो चुके हैं, तो हंसी मजाक मस्ती का मूड, ऐसे समय उस मैप पर नजर जाना और उसको रजिस्टर करना और तुरंत सिर्फ मेडल लेते समय देश खड़ा हो जाता है, ऐसा नहीं, भीतर से देश का भाव. मैं सच बताता हूं, ये वीडियो सामान्य नहीं है आपका, लंबे समय तक लोगों को याद रहे। ये बॉक्सिंग वालों से भी दुनिया के खिलाड़ी अब डरने लगे हैं।
7: जरूर सर, पूरे सभी डरे हुए थे, एक के बाद एक गोल्ड मेडल आ रहे थे, और मतलब पूरा लास्ट में ऐसे धमाका जैसा हो गया बिल्कुल। जिस तरीके से हम लोगों को सपोर्ट मिल रहा है, हमें बैक टू बैक कंपटीशन मिल रहा है, वो एक बहुत बड़ी बात है। और हमारे जितने भी यंग एथलीट है, वो लोग सभी जैसे खेलो इंडिया स्कीम से आए हुए हैं, और ये एक बहुत बड़ा चेंजेस ला रहा है पूरे स्पोर्ट्स में ही।
1: अगर आप लोग खेलो इंडिया को की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा विद्यार्थी, एक छोटा नौजवान, छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करेगा। क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है, बहुत मेडल लाने हैं। कारगिल विजय दिवस पर किसकी विजय हुई थी?
8: उस दिन कारगिल डे था वैसे, और जिस दिन मैंने पाकिस्तान के साथ फाइट किया था सर, वो उस दिन का था। तो मैं एक इंडियन आर्मी से हूँ, तो मैंने उस दिन मैं पहले से बहुत वो था कि सर पाकिस्तान को हराना है, तो मैंने वो काम पाकिस्तान को एक तरफा मैंने 5-0 से हराया। तो मैंने हमारा इंडियन आर्मी का कारगिल हीरोज को मैंने डेडिकेट किया था सर।
1: आपको ये याद रहना, और आप स्वयं फौज से हैं, तो मैं जरूर मानता हूं कि देश के वीर जवानों को आपने जो भाव प्रकट किया ना कि मैं कारगिल के विजेताओं को मेरा मेडल समर्पित करता हूं, उसने उस विजय पर 4 चांद लगा दिए, और जिसको पराजित करना था उसी को किया आपने।
2: वो पाकिस्तान की बात चल रही, मुझे किस्सा याद आ गया सर। 2015 वर्ल्ड मिलिट्री गेम थे, और मेरी पाकिस्तान के साथ पहली फाइट आ गई थी, और वर्ल्ड मिलिट्री गेम था तो मिलिट्री वाले को फोन आया कि भी पाकिस्तान से नहीं आना है। तो फिर मैं फर्स्ट राउंड 4-1 से जीत गया, सेकंड राउंड 3-2 से जीत गया, पर दोनों के सर लग गए आपस में, तो दोनों के लग गए कट, वो फाइट तो मैं जीत गया। उसके बाद फिर दोनों चले गए हॉस्पिटल में टाके लगवाने के लिए। फिर 2014 में आप फर्स्ट टाइम प्रधानमंत्री जी मिले थे, और जो हमारे साथ आर्मी का कोच गया हुआ था उसका नाम नरेंद्र राणा था, और फिर वो कई देर तक सोच के मेरे को बोला कि भाईजान एक बात बोलो। वहाँ बोलो, मतलब भाईजान आपका नाम नरेंद्र है, आपके कोच का नाम नरेंद्र है, आपके प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र है, तो मुझे नरेंद्र नाम से नफरत हो गई है।
1: सिर्फ आपने मेडल की संख्या बढ़ाई ऐसा नहीं है, आपने एक पीढ़ी को तैयार किया।
9: मेरे मन में भी धक धक धक धक हो रहा है।
1: आप चिंता मत कीजिए।
9: पर
1: आप आपको बोलने में भी मेडल मिलने वाला है।
9: मेरे फ्रेंड सर्कल में किसी ने बोला था कि मैं उनको कुछ बोलती थी, भाई ये तुम्हारे अच्छे के लिए तुम करो, तो अक्सर मुझे वो बोलते थे कि तू के मोदी से मिल रही है। हरियाणवी में बोल देते हैं सर कि क्या तुम मोदी से मिली हुई है कि तेरी बात माने। तो आज मैं आपसे मिली हूँ सर, मैं उनको बोल पाऊंगी कि हाँ मैं मोदी जी से मिली हूँ।
10: कॉमन गेम्स में मेडल, सिल्वर मेडल जीता, फिर मैंने क्रेडिट साहब को दिया। सपना तो था एक बार मेडल जीत के लेके आने के लिए, बट ट्रेनिंग का सेंटर नहीं था। मैंने साई आने के बाद मैं बहुत ट्रेनिंग करके मेडल जीत पा रहा, इसलिए बहुत खुश हूँ जी। मैंने सर को क्रेडिट दिया था क्योंकि बहुत इम्प्रूव हुआ।
1: मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान का विषय है, मेहनत आपने की और मुझे याद किया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ दोस्त। वाराणसी में खेल तुम प्रैक्टिस कर रही थी ना?
11: जी सर। बहुत
1: कैसा बना है स्टेडियम?
11: सर अच्छा बना है। वहाँ पे मैं 10-12 दिन के लिए ट्रेनिंग करने गई थी, क्योंकि मैं मंदिर गई थी तो वहाँ पे ही ट्रेनिंग करके आई थी, और मैं वहाँ पे मतलब सेटल भी होना चाहती हूँ क्योंकि मुझे काशी विश्वनाथ बहुत अच्छा लगता है सर।
1: भोपाल में ट्रेनिंग कर रही थी
11: जी सर। 2000
1: उज्जैन जाते थे कि नहीं?
11: जी सर उज्जैन भी गई थी सर।
1: अच्छा महाकाल के पास भी गई?
11: जी सर।
1: काशी विश्वनाथ के पास हुआ ही एक बार? ये सावन महीना तो भी है,
11: वहाँ घर जाके फिर उसके बाद जाऊंगी सर।
1: ठीक है।
11: साई ने भी सर बहुत सपोर्ट किया है मुझे, इसके कारण ही मैं यहाँ तक पहुंची। मैं खेलो इंडिया स्कीम में भी थी। 2018 में जो फर्स्ट खेलो इंडिया हुआ था उसमें मेरा सिल्वर मेडल था, वहाँ पे भी मैंने आपको देखा था ओपनिंग सेरेमनी में, तो उसमें मेरा मेडल था, तो मेरे को स्कीम भी मिल गया और मैं यहाँ तक पहुंची हूँ सर।
1: स्पोर्ट्स व्यवस्था एक बात है, लेकिन देश मेडल तब प्राप्त करता है जब देश में स्पोर्ट्स कल्चर बनता है। दोस्तों आपने बहुत बड़ा काम किया है, देश का नाम रोशन किया है, आपको मैं बहुत बधाई देता हूं और आप विश्वास कीजिए आगे भी आप विजयी होंगे और फिर से एक बार यहीं पर हम मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
12: ये लगातार तीसरी बार देश को मेडल दिलवाया है, बहुत आशीर्वाद बेटा।
13: और थैंक यू सो मच, मैं सर के हाथ से बर्थडे था तो आज कर दिया।
12: बहुत बधाई, वाह।
13: एक ही
12: बेटा।

0: तक अपने भाषण में छात्रों का साथ देने की बात उन्होंने कहा है, और हमारे जो माननीय मंत्रीगण गए थे छात्रों से वार्ता करने, उसमें छात्र और वो दोनों, उन दोनों ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो ये बात सामने आई, आप देख सकते हैं मीडिया में भी है, कि 98% मांगों को मान लिया गया है। छात्रों की जो मांगे थी 98% मांगों को मान लिया गया है सरकार द्वारा, और जो 2% बचा हुआ वो इसलिए बचा हुआ है कि एक ऐसा एग्जाम है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार वो एग्जाम लिया गया था, उसके बाद रिजल्ट आउट हुआ, कुछ लोगों को नौकरी भी मिल गई है। तो सरकार ये कह रही है कि जो कार्य माननीय न्यायालय के निर्देश के बाद हुआ है और उसके बाद लोग नौकरी भी में भी लग गए हैं, उसे रद्द करने का पावर सरकार के पास नहीं है।
1: 98% की जो बात कही जा रही वो अभी नहीं हुआ है। सीजीएल की जिस परीक्षा को लेकर के वो कह रहे थे कि इसको रद्द किया जाना चाहिए, उस पर कोई बात ही नहीं।
0: नहीं, सीजीएल के बारे में ही सरकार ने ये बात कही, जो मैं मीडिया से ही आपको बता रही हूँ, आप मीडिया में देख सकते हैं कि मंत्री जी ने ये बात कही कि सीजीएल की जो परीक्षा है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्देश पर वो एग्जाम हुआ था, उसका रिजल्ट आउट हुआ और उसके बाद कई लोगों को नौकरी लग चुकी है। तो ये कहना है कि उसको बिना माने अपनी मर्जी से बिना कोर्ट के आदेश के अगर सरकार रद्द कर देगी तो उन हजारों युवाओं के साथ अन्याय होगा जो उसके बाद नौकरी में लग चुके हैं, फिर उनकी नौकरी भी चली जाएगी।
2: All right, so as the march to the assembly is underway in Ranchi, JMM MP Mahua Manji claims that the political forces are provoking the students and there's political influence in these protests and in these march, and the political forces are in fact inciting and provoking the student protesters. With that, it's a wrap on this bulletin. Thank you for watching India Today, but we'll keep a close eye on the developments happening in Ranchi, and we'll get you all the updates right from the ground from Ranchi. Stay with us.

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: हम कैसे अपनी प्यास बुझाएं पीकर कचड़ा पानी, तुम पियोगे कोको कोला बिस्लेरी का पानी। हम कैसे अपनी प्यास बुझाएं पीकर कचड़ा पानी, जिले गांव छोड़ब नहीं, हम जंगल छोड़ब नहीं, माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। जय झारखंड।
1: यू कैन सी दे आर इन अ बेलिग्रेंट मूड। They are saying that they are not going to leave their right. They'll fight it out till the last, until their demands are conceded. This is the visuals that really shows their resolve, that they are firm in their belief that they are going to pursue their demands, and they believe that their demands are genuine, that they are demanding the cancellation of CGL examination. However, the government has expressed its inability, that they cannot intervene in that because it was the initiative of High Court and Supreme Court. On the insistence and direction of High Court and Supreme Court, the exams were conducted. And now, if some cases come up, if there is some specific case, they can set up or constitute a committee under the supervision of retired judge, and it could be proved. And if there is any money trail involved in that, if there are allegations that seats were sold out, TDP.
2: Well, Satyajit, we seem to have lost the connection with Satyajit right now, but we are keeping a very close eye on what is happening in Jharkhand, viewers. Remember, this protest is underway. The students are now climbing the barricades. This has been a remarkably peaceful protest so far. But let's look at what is happening on the streets in Jharkhand as our reporters bring you the ground coverage. This is thousands of students outside the Vidhan Sabha in Ranchi, and we're showing you visuals from various sides of this protest. The students have been there. They're trying to enter the Rajya Sabha. This is the march to the Rajya Sabha. March to the Vidhan Sabha today. Water cannons have been used as students try to breach barricades near the assembly. Remember the students have been asking.
3: So finish line पे खड़ा है, एक line है starting line पे, एक बंदा खड़ा है और दोनों में race होता है, तो obviously है कि कौन जीतेगा, जो finish line पे खड़ा है वो व्यक्ति जीत जाएगा। तो भाई ऐसे कैसे चलेगा? और अगर हम अधिकार ना मांगे तो कौन मांगेगा?
4: देखिए तो हम लोग protest में आए हो गया यार लंबा
2: protests, and you can see here students also trying to break barricades. Water cannons have been used. Petition also has been filed in the Supreme Court over the demanding CBI probe and cancellation of the JPSC exam. That is also one of the demands that the students on the ground have been making. Just yesterday, the Jharkhand government had agreed to cancel some of the exams. They had agreed to cancel some of the exams. But the students are not happy with the government's response so far. Let's listen into Devendranath Mahato, who's been on a hunger strike for the last 15 odd days.
5: मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है और मैं नहीं चाहता हूं कि जन्मदिन के मौके पर छात्र को कुछ ऐसा करे कि दिल्ली का जंतर मंतर की तरह कुछ अनहोनी हो, ऐसा गिफ्ट छात्र को ना दे जिसके बदन पे खून निकले, जिसके माथा पे चोट आए और ये भीड़ और उग्र हो जाए।
6: कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
5: गिरफ्तारी ठीक है, वो कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन आज हेमंत जी का जन्मदिन है, जन्मदिन के मौके पर ऐसा तोहफा न दे जो जिसे खून बहे, जिससे अराजकता फैले, जिससे आक्रोश, ये शांति है, इनको शांतिपूर्ण रहने दिया जाए। सरकार अराजकता को न्योता दिया है। मैं हॉस्पिटल में होने की स्थिति में 9 दिनों से बुखार के बावजूद मैं खुद को नहीं रोक पाया। देखिए, ये तो लोगों का प्यार है, उस पर हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं। और मैं सब नहीं चाहता हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, ना ही कोई मसीहा हूँ, मैं एक साधारण लड़का हूँ, माड़ भात खाता हूँ, सूखा रोटी खाता हूँ और ये प्रोटेस्ट के बाद भी मैं वही खाऊंगा। मेरा निजी जिंदगी में कुछ बदलाव होने वाला नहीं है, लेकिन मेरे दिल में सबसे ज्यादा अगर दर्द हुआ, तकलीफ हुआ, तो मेरा भूख हड़ताल से ज्यादा दर्द हुआ उस कांटेदार तार का जाली से। इसलिए तो मैं आया हूँ, एक आते आते टूट गया। ये 3 लेयर का ब्रेकेटिंग था, ये 3 लेयर का ब्रेकेटिंग आते आते ये छात्र लोग, इससे हम लोग निकल जा रहे हैं। लेकिन बात है कि सरकार क्यों अराजकता चाहती है।
2: We saw the statement coming in from Devendranath Mahato, the student leader who's been on a hunger strike for the past several days as students continue to march toward the Vidhan Sabha. Remember, I beg your pardon, we're going back right.
5: टूटा है, विधान सभा तक पहुंच गया है छात्र, आगे अब कुर्सी हिलेगी और विधानसभा के अंदर भी पहुंच जाएंगे।
7: एक बार लगता है कि सरकार के साथ फिर बैठना पड़ सकता है, क्योंकि आप बहुत दिनों से फास्टिंग पे हैं, 16-17वां दिन है, तो हम ज्यादा सवाल नहीं करना चाहते हैं 16वां, तो मतलब लगता है कि एक बार फिर वार्ता टेबल पे आ सकते हैं।
5: वार्ता की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मांग पूरा करिए,
7: मांग पूरा किया जाए।
5: वार्ता का क्या जरूरत है, यहाँ कोई पक्ष विपक्ष का मामला नहीं है, कोई पक्ष विपक्ष का यहाँ मामला है नहीं, सीधे तौर पर यहाँ छात्र का मामला है। छात्र नाखुश है, छात्र असंतुष्ट है, छात्र को संतुष्ट करिए, सरकार की जिम्मेदारी बनती है संतुष्ट करना छात्र को। ये छात्र सभी आपके छात्र हैं।
7: चलिए, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत जो शारीरिक परिस्थितियां होती हैं इतने दिनों के अनशन के बाद, उसको समझना पड़ता है और जो उसको फेस करता है वही जानता है। देवेंद्र महतो हमसे बात कर रहे थे आज तक से, इंडिया टुडे से, और उन्होंने सीधे कहा कि अब वार्ता की जरूरत नहीं है, अब तो मांग पूरी होनी चाहिए। हमारी मांग है जिस परीक्षा को रद्द करने की, जिस नियुक्ति बहाली को रद्द करने की, उसको रद्द किया जाए। अब सरकार पक्ष और पक्ष ये कोई मायने नहीं रखता है। छात्रों की इतनी बड़ी ताकत जो पहुंची है यहाँ पर विधानसभा तक पहुंच गए, जैसा देवेंद्र महतो खुद बता रहे थे नेहा, तो ये अपने आप में बड़ा मैसेज है सरकार को सरकार के सामने, और सरकार को सीधे अब मांगों पर अमल करना चाहिए। यानी अब सीधी बात ये जो देवेंद्र महतो कह रहे थे हमसे बातचीत में कि अब कोई वार्ता नहीं होगी सरकार के साथ, सीधे सीधे जो मांग है उसको पूरा करे सरकार, हेमंत सरकार जी।
2: All right. Heard from Devendra Mahato and our reporter who is on the ground at this protest. Signal, of course, I have to say, viewers, signal is a little bit of an issue there. So we are going to get that connection back with our reporter who's on the ground right now. But let's talk about what these students have been asking for. It is now day 17 of this protest and the students on the Chief Minister, Chief Minister's birthday, walking towards the assembly. They are saying they will go to the assembly because the government is not listening to them. What do the students want, really? They want cancellation of the exam where the paper leak allegations had been raised. JSSC CGL examination cancellation, JPSC exam cancellation. My colleague Shashi Bhushan is joining us from the spot. Let's listen in to Shashi.
7: हम विधानसभा मार्च कर रहे हैं, ये मैसेज देने के लिए कर रहे हैं, ये बताने के लिए कर रहे हैं, युवा शक्ति शांतिपूर्ण तरीके से झारखंड की निकली है और हम अगर विधानसभा तक पहुंचते हैं तो सरकार को समझना चाहिए, वरना सरकार को कुर्सी से जाना होगा। और मैं ये बता दूं, अब तक कभी भी देवेंद्र महतो ने, और देखिये ये लाठीचार्ज, ये देखिए ये देखिए ये भगदड़ यहाँ पे हुई है, ये भगदड़ यहाँ पे हुई है, और ये देखिए ये यहाँ पे ये पहली दफे छात्रों को खदेड़ा गया है और पहली दफे बैकफुट पर छात्र आए हैं। और ये लाइव विजुअल्स जो हम दिखा रहे हैं, आप देखिए जो छात्र हैं वो पहली दफे बैकफुट पे आए हैं। संभव है पुलिस वालों ने उधर से कोई बल प्रयोग किया हो, कोई ऐसी स्थिति बनी हो जिसको लेकर के अब यहाँ से क्या ये पूरा एजिटेशन, क्या ये पूरा मार्च बना रहेगा शांतिपूर्ण, ये देखना दिलचस्प होगा। तो हम ये देखिए फिर छात्र आगे बढ़े हैं और अब यहाँ पे ये पहली दफे जो प्रतिवाद है, प्रतिरोध है, वो थोड़ा सा दिखता हुआ दिख रहा है। हालांकि अभी भी बहुत अनियंत्रित स्थिति नहीं है, छात्रों ने अपना वो संबल बनाकर रखा है जो शांतिपूर्ण है वो, लेकिन पुलिस की तरफ से जरूर ऐसा एक्ट किया गया जिसकी वजह से जब हम बातचीत कर रहे थे आपसे, दर्शकों को बता रहे थे कि स्थिति क्या है, तो भागदड़ की स्थिति बनी है और छात्र पहले पीछे आए, अब फिर छात्र तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। जी
2: can see there my colleague Shashi Bhushan bringing you the live update from the spot. It looks like the cops are now cracking down on the student protesters. They seem, according to Shashi Bhushan who's on the spot, it seems that there may have been some lathi charge up ahead where the students are trying to get to the assembly. We are bringing you the visuals of the students running back from the front of the protest. Now it seems as at least at the spot where my reporter Shashi Bhushan is standing, whatever was happening happened, and now the students are going right back, pushing towards the assembly. Remember viewers, we are bringing you live updates from the spot, from where the protest is happening outside the Jharkhand Vidhan Sabha. Our reporters are on the ground bringing you all the visuals, speaking to the protesters. But it seems that after the water cannon usage just a short while ago, now it seems that there was some lathi charge. We've got Shashi Bhushan back on the line. Let's listen into what he's, the report that he just filed.
7: कुछ चप्पल उछले थे, वो इसलिए कि पुलिस वाले जो हैं वो उधर से बल प्रयोग कर रहे थे संभव हो, जिसकी वजह से छात्र पीछे आए, लेकिन फिर से छात्र जो है वो एक बार आगे आए हैं और अब देखना होगा कि आगे की स्थिति क्या होती है। नया ये झारखंड के इतिहास में सबसे बड़ा आंदोलन है, हमने अलग पृथक झारखंड राज्य के आंदोलन को अपने स्टडी पीरियड में देखा है, उसको मतलब हमने उसको उस घटनाक्रम के हम विद्यार्थी के तौर पे, स्टूडेंट के तौर पे गवा रहे हैं, जब शिबू सोरेन, स्टीफन मरांडी, बाकी कई नेता होते थे, बाबूला जो सूरज मंडल, और वो दौर जब निकला, जब झारखंड बना, तो इतने दिनों का जो झारखंड का इतिहास है उसमें पहली दफे इस तरह का कोई छात्र आंदोलन हम देख रहे हैं जो आज रांची की सड़कें जिसकी गवाह बन रही हैं। नेहा,
2: All right there, my colleague Shashi Bhushan talking about the fact that this is the first time in the history of the state of Jharkhand that so many students have now come out on the ground for a protest. And as my colleague Shashi Bhushan was just talking about, there seems to have been some lathi charge on the students up ahead from where he is standing. We are trying to bring you the latest visuals from the protest site itself. My colleagues are at the protest site, and you can see on your screens right now, viewers, students are trying to climb on top of the barricades, are trying to climb on top of whatever barriers are there. The police had used water cannons just a short while ago, And just a short while ago, my colleague Shashi Bhushan talking about possible use of lathi charge also against the student protesters. Let's talk about what these students are doing there. Why are so many students on the ground? Why are so many students angry? They want the cancellation of the JPSC combined civil services exams, as well as some other exams where the paper leak had happened, where even the government has admitted that exam papers have leaked. This is a question of thousands of students and their futures. They are saying that there has to be some response by the government, whether it is the JPSC Bachelor of Examination, the Jharkhand Public Service Examination, preliminary examination. They also want a CBI probe, because remember, so far the government has initiated a CID probe of this Jharkhand police itself. Students have been saying there should be a CBI probe. We're bringing you fresh visuals from the site of the protest. It seems that there was some use of force by the police. We can see in your visuals right now on your screens the police personnel there using lathis on some of the protesters running back. We are trying to bring you the latest visuals from my colleagues who are at the spot at Ranchi. But you can see here thousands of students have reached outside the Jharkhand Assembly. My colleague Ashutosh Mishra is also in Ranchi and he's been there for the last few days. Ashutosh, if you can hear me. Ashutosh, if you can hear me, what can you see around you? What can you tell us about the situation at the spot right now?
8: Escalating situation. Dozens of the protesters also managed to reach to the new Vidhan Sabha premises. Just nearly 160 strong.
2: There seems to be some problem with the phone line there. We're trying to get the connection back with Ashutosh, but on your screens right now, on the left of your screen right now, viewers, is the live visual that Ashutosh is bringing to us from Ranchi, from the protest site. And you can see thousands of students there just outside the Jharkhand Assembly. Shashi Bhushan is speaking to one of the protesters. Let's listen into what Shashi's...
9: Daroga ka exam nahi hua hai. झारखंड पुलिस का एग्जाम नहीं है, फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम नहीं हुआ है. छात्र बहुत परेशान है, जो भी एग्जाम हो रही है उसमें धांधली हो रहा है. सीजीएल हो चाहे पीजीटी हो या जितने भी एजेंसी,
7: धैर्य नहीं टूटना चाहिए. मतलब जो पेशेंस है वो बना रहे, आंदोलन चलता रहे इसी तरीके से.
10: हाँ सर, इसी तरह का आंदोलन चलता रहे और हमारी बात सरकार तक पहुंचे और हमारा जो समाधान उनको चाहिए वो निकाल के हमें दे. जो 98% बोल रहे सरकार के हम कर लिए है, हमें सीजीएल का रिजल्ट चाहिए. सीजीएल में बहुत बड़ा धांधली हुआ है और इस सीबीआई जांच हो.
7: मूल मुद्दा सीजीएल है.
11: बिल्कुल सर, मेन मुद्दा सीजीएल है. सीजीएल में क्योंकि इन लोग का झारखंड का सेकंड लार्जेस्ट पोस्ट है सीजीएल का, ठीक है. इसमें क्या हुआ, इन लोग का करप्शन है. उस सीजीएल 2-3 बार ऑलरेडी क्वेश्चन लीक हो चुका था, फिर अबर एग्जाम हुआ, अबर में धांधली हुआ है. सोचिए एक स्कूल से 12-13 बच्चा नंबर वाइज से उन लोग का सिलेक्शन होता है और यहाँ तक जो अच्छे नंबर लाते हैं, जिनके पास फुल एविडेंस है कि मैं अच्छा नंबर लाया, जो कार्बन कॉपी हम लोग को मिलता है ओएमआर सीट का, उसका सबूत है. लेकिन क्या हुआ, जब इवन जब मैं भी जब एग्जाम देने गया था सीजीएल का, मैं भी दिया एग्जाम दिया था देने गया था, तो जो क्वेश्चन पेपर का जो सील था वो ब्रोकन था. तो जब मैं बोला, जब मैं अपोज किया कि नहीं मैं एग्जाम नहीं दूंगा, मेरा वो मेरा एग्जाम सेंटर पड़ा था इधर, क्या नाम है, खुट्टी जिला, खुट्टी डिस्ट्रिक्ट मिला था. तो हम गए तो हम जो एसडीएम को कंप्लेन किया एग्जाम नहीं देंगे, तो एसडीएम बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ह्यूमन एरर है. तो दैट इज नॉट फॉर ह्यूमन एरर, इट्स अ बिग एरर.
7: बड़ी बात आप बता रहे हैं स्टूडेंट. देखिए ये कह रहे हैं कि जब सीजीएल की परीक्षा हुई इसमें किस स्तर पे धांधली हुई, जो क्वेश्चन पेपर लीक था आप बता रहे हैं और आपने कंप्लेन भी किया उसको लेकर के, ये और बाद में ओएमआर का जो कार्बन सीट मिलता है उसमें आपने टैली कराया तो आपको डिफरेंस नजर
11: आया, बहुत डिफरेंस मिला सर.
7: ये बात, ये बड़ी बात है. तो अभी भी देखिए स्थिति क्या है, यहाँ छात्र बने हुए हैं सड़क पे, उसी सड़क पे जिससे विधानसभा मार्च आगे बढ़ रहा था, लेकिन अभी ये मार्च रुका हुआ है। कुछ छात्र आगे गए हैं, इंतजार है कि क्या पुलिस पीछे हटती है या फिर छात्र पीछे हटते हैं। जी
2: All right there, my colleague Shashi Bhushan talking to the protesters, talking about how the CGL exam paper itself had so many issues. Even the students who had given the exam had raised concerns on that very day. Remember, the CGL exam is the technical recruitment exam in Jharkhand, the state. Combined recruitment examination that is there, and the students want that exam to be result to be cancelled, a fresh exam to be held, because they are saying that the paper itself was not done properly, that the paper was leaked. In fact, that
12: डंटा मारा है इस सरकार को हम बताना चाहते हैं, ये सरकार कभी किसी की सरकार बपोती नहीं होती है, ये सरकार बदलेगी, ये छात्र बदलेंगे और पूरा का पूरा झारखंड की जो सरकार है उसे छात्र अपने हाथों में लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।
7: कैनन का इस्तेमाल हुआ, बेअसर हुआ। छात्रों पे हल्की लाठियां भाजी गई, वो भी बेअसर है। छात्र वहाँ पे खड़े हैं, विधानसभा का सत्र चल रहा है। छात्र चाहेंगे कि विधानसभा में आज की जो कार्यवाही है उस कार्यवाही के बीच वो वहाँ तक पहुँच जाएं, वही मैसेजिंग होगा। और अपने आप मैं बोलता हूँ, मैं यही बता रहा हूँ नेहा, कि पूरा खेल मैसेजिंग का है। ऐसा नहीं है कि सरकार के पास आप प्रोटेस्ट करते हुए विधानसभा पहुँच जाए तो सरकार कोई आदेश पारित कर दे, लेकिन हाँ सरकार को ये मैसेज जरूर जाएगा कि आप समझिए कि किन परिस्थितियों में खड़े हैं, कि इतने लाखों छात्र आते हैं राज्य के अलग अलग कोने से और वो रात को भूखे हैं। थोड़ा खाना मिलता है, हमने देखा है वो 2-3 पूड़ियां और थोड़ी सी सब्जी खा रहे थे। हम भी सुबह से भूखे हैं, हम भी इस प्रोटेस्ट को कवर कर रहे हैं, लेकिन इन तमाम परिस्थितियों के बीच बड़ा सवाल ये है कि क्या CGL पे जो जिच है वो CGL की जिच खत्म होगी। सवाल ये है कि क्या जो CBI की जांच की मांग हो रही है, सरकार एक कदम पीछे आई, ED पर तैयार हो गई, 3 मंत्री आए, कहा CBI का ट्रैक रिकॉर्ड इस इतिहास बहुत अच्छा नहीं रहा है राज्य में, लेकिन वो तर्क नहीं मानते हैं छात्र। मैं थोड़ी देर पहले जब देवेंद्र महतो से बात कर रहा था, उन्होंने ये कहा कि अब वार्ता की कोई जगह नहीं बची है, अब आपको कुर्सी से हट जाना होगा अगर ये छात्र विधानसभा तक पहुंच जाते हैं। तो मैं यही बता रहा था कि पूरा जो मामला है वो कहीं ना कहीं मैसेजिंग का है। आप युवा शक्ति हैं, आप जेंजी हैं, जंतर मंतर में आपका कुछ भी संगतियों के साथ, नैरेटिव्स के साथ आपको लोगों ने देखा होगा, लेकिन झारखंड के युवाओं ने जो प्राकृतिक वादियों के बीच रहते हैं, जहां संथाल की संस्कृति है, उसके बीच के युवा जो मैसेज दे गए हैं पूरे देश में, ये वाकई मैं सुबह से कवर कर रहा हूं। आप देखिए जो वॉलंटियर्स हैं वो अपने छात्रों को खुद कंट्रोल करते हैं। मैंने नहीं देखा कि रांची पुलिस, झारखंड पुलिस, RAF पुलिस के जवान अधिकारी वो उतना एफर्ट कर रहे हों जितना वॉलंटियर्स एफर्ट कर रहे हैं कि स्थिति ना बिगड़े। मैंने कई लोगों से बात कर दी। आप कुछ बोल रहे हैं?
13: जी बोल रहे हैं, सखुआ का पत्ता अच्छा है, झारखंड का बच्चा सच्चा है। और हम देख रहे हैं मीडिया में बार बार बोल रहे हैं कि 2 बैरिकेडिंग तोड़ के विधानसभा की ओर बढ़ रहे हैं। हम लोग बैरिकेडिंग नहीं तोड़ रहे हैं,
7: पुलिस पीछे,
13: जनता को जनता के मंदिर में जोड़ने के लिए जा रहे हैं। जब प्रशासन के लोग और सिंहासन पर बैठे लोग, देखिए वहाँ जैसे मीडिया उतना ऊंचा चढ़ा है, उससे ऊपर चढ़ गए हैं, उनको सुनाई नहीं दे रहा है। शांति से क्रांति करने जा रहे हैं झारखंड के लोग।
7: दिनकर की लाइनें हमें याद आती हैं, और सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, तो अब लड़ाई वहां तक जाती हुई दिख रही है। जो लड़ाई हमने देखी भूख हड़ताल से, आमरण अनशन से, देवेंद्र महतो ने पहले जल ग्रहण नहीं किया, सोनम वांगचू से बात हुई, फिर वो उसके लिए तैयार हुए। मैं जब बात कर रहा था उनसे, आप उनकी जब होंठों को देखिएगा, उनके चेहरों को देखिएगा, जिस व्यक्ति का 10 किलो वजन गिर गया हो इतने दिनों में, जो अभी खुद बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि उनका शुगर लेवल 53 पे आ गया है, आप समझिए, दर्शक समझें, लोग समझें कि किस तरह की परिस्थितियों में किस चीज के लिए लड़ाई हो रही है। और ये एक सीधा मैसेज है सरकार के लिए, शायद उनको ऐसा लगता है कि हमने जो कदम उठाया ईडी से जांच का, उससे सब कुछ हो जाएगा। सीबीआई का बैकग्राउंड उतना अच्छा रहा नहीं है। आपके अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन जैसे एक युवा मेरे साथ अभी बता रहे थे कि जब बहुत ऊंचाई पर आप बैठ जाते हैं तो कई बार कानों तक आपकी आवाज़ जनता की नहीं पहुंचती है, तो लेकिन छात्रों की आवाज़ सुनने की जो परिपाटी परंपरा हमने जंतर मंतर से देखी, वो आज यहाँ रांची में क्या सफल होती है, क्या उस पर सफलता मिलती है, इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हम सुबह से आज सड़क पे हैं, जमीन पर हैं। नेहा,
2: and you can hear that the statements coming in from the protesters, my colleague Shashi Bhushan on the ground there speaking to the protesters, talking about how the students have maintained discipline. They are not indulging in any violence, they are not attacking the police, they are trying to ensure that the protest remains completely non-violent, that the protesters' voice goes to the people in power. And why are these students so angry? Because this is a question of recruitment of thousands of people, thousands of government jobs, thousands of students. A huge scam that has come out in the open. And what they want is not just for this year, but 2023, 2024, 2025, backlog recruitments, which means several thousand posts that are to be filled in the Jharkhand public, through the Jharkhand public service examinations. In the state recruitment, there has been a lot of dhandli. That is what they are saying, that there should be criminal investigation by the CBI. The students do not trust the local police. They are saying very clearly that even the examination for police recruitment was leaked, and now they do not trust the local police. Let's listen into what Shashi Bhushan is saying there.
7: के शुरुआती दौर में जेपीएससी को लेकर सरकार भी ये समझ गई कि यहाँ पर शायद वो समझा पाने में सफल न हो छात्रों को, इसीलिए जो कार्रवाई हो रही है जांच एजेंसियों की तरफ से वो तो अलग से हो रही है। जो तीन अलग अलग सदस्य रहे उसके, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अंततः उसको भंग करना पड़ गया। लेकिन जो दूसरी नियुक्ति प्रक्रिया है, सबसे अधिक सवाल उसको लेकर के है, और वो सबसे बड़ी मास रिक्वायरमेंट पॉलिसी है। और देखिए एक बार फिर से, एक बार सहयोगी नदीम से कहेंगे दिखाएं, रारा करके ये आवाज उठती है, ये हुंकार उठती है। तो ये जो लगातार छात्र हैं वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि जो राज्य सरकार की तरफ से जो नियुक्ति प्रक्रिया होती है, चुनिंदा नियुक्ति प्रक्रिया है, तो यहाँ जो छात्र लड़ते हैं ना, उनके लिए ये मुद्दा उनका अपना मुद्दा है। ऐसा नहीं है कि कोई बाहरी इसमें एंटर कर सकता है, और इसीलिए वो सचेत भी हैं, सचेस्ट भी हैं, वो इसके लिए फाइट करते हैं। और झारखंड में युवाओं के लिए रोजगार एक बड़ी समस्या रहेगी। युवा हैं, यहाँ से कहाँ से आए आप, थोड़ा बताइए।
14: तो गिरिडीह कैसर रांची में ही रहते हैं, 8-10 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी जेपीसी का जो मुद्दा है तो ये तो अभी खुला, लेकिन सीजीएल जो है, सीजीएल में भी धांधली हुआ, ऐसा नहीं है उसमें भी, उसमें
7: सभी छात्र
14: सब हुआ है सर, वो तो खुद कोर्ट भी किया है। अभी अभी जो जवानी लेटर दिया सुप्रीम कोर्ट, उसमें कंडीशन डाला हुआ कि अगर कोर्ट होगा, अगर निष्पक्ष जांच होगी तो उसमें भी कैंसिल किया जा सकता।
7: सरकार के कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, आपका नाम क्या हुआ?
15: मेरे सराफिन
7: नाम। सरकार के लिए कुछ लोग कह रहे हैं कि मतलब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसमें हम बहुत फैसला लेने की स्थिति में नहीं है, ऐसी भी बातें आ रही हैं। तो ऐसा लगता है कि शायद वो
14: ये बताइए सर, यहाँ का जो भी है नियमावली से लेकर कोर्ट कर रही है, आप क्या कर रहे हैं? जितना भी है, नियमावली हो चाहे वैकेंसी हो, जो भी आता है सब कोर्ट जाता है, चाहे कोर्ट जाए चाहे सुप्रीम कोर्ट।
7: आगे के लिए तो रिफॉर्म्स जरूरी है,
14: आगे के लिए चलिए हम लोग भी सेफ रहेंगे जो भी है कोर्ट से दे, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? हर डिसीजन तो कोर्ट दे रहा, तो आपका क्या आप सर आप क्यों आए?
7: कितने साल से आप प्रतियोगी परीक्षा
14: के? 2018 में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट है हम, एमसीए किए हुए रांची में,
7: 2018 में ग्रेजुएशन किया,
14: 2018 हुआ उसके साथ,
7: और अभी 2026 है, मतलब आप समझिए कि 8 साल में ये पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके हैं, और नौकरी, रोजगार, घर में दबाव और कितनी समस्याएं होती हैं, कितनी चुनौतियां होती हैं, हर कोई इस दौर से गुजरता है, हर कोई इस दौर से गुजरता है। और यही वजह है कि ये छात्र कह रहे हैं कि सीजीएल में जो गड़बड़ियां हुई हैं उन पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, उन पे कोई हम बातचीत नहीं चाहते हैं, आपको उस परीक्षा को रद्द करना होगा, उस पर आप रिफॉर्म करिए। जो सरकार है वो अपने तर्क चाहे जो भी दे दे, लेकिन पेच यही फंसा हुआ है, और सीबीआई जांच की मांग तो है ही। नेहा,
2: alright, and you can see there what the students are saying. They are saying that they've been preparing for years to clear those examinations, and when there is a paper leak or when there is sale of papers, when there are questions and concerns about how secure that exam really was, that puts a big question mark on their futures and on the years that they've already spent trying to prepare for these exams. And right now you can see on your screens, viewers, the visuals of a possible lathi charge that the police has also done. Shashi is back with us on the line. Over to Shashi.
15: CGL pariksha ke dauran koi sim dega mein de raha tha kisi ke sath aisa hua ki paper ka jo seal tha wo pehle se khula hua tha. कई दूसरे तरह की जो OMR अपडेट की जाती है उस OMR की कार्बन कॉपी में उनको ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन करने की का कॉन्फिडेंस है उनके पास. कई छात्र हैं, एक और छात्र यहाँ पे जुड़े हैं. आप कुछ कहना चाह रहे थे बहुत देर से. कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से
16: जो है हजारीबाग से आए हुए हैं. और CGL के बारे में सरकार कह रही है कि हम CID से फिर से जांच करवाएंगे. ये CID एक बार जांच का रिपोर्ट दे चुकी है कोर्ट में और उस समय जो है अपना जांच का रिपोर्ट जो है छुपा दिया गया. शुरुआत में जब उसका जज को सारा चेंज कर दिया गया, पूरा सिस्टम को चेंज कर दिया गया और ये फिर से कह रहा है कि उसी को देंगे जांच करने के लिए, तो हम लोग कैसे विश्वास करें कि वो फिर से सही रिपोर्ट देगा? इसमें गवर्नमेंट इसलिए फंस चुकी है कि वो जान चुका है कि CID एक बार गलत रिपोर्ट दे चुकी है.
15: इसलिए आप लोग CBI जांच की,
16: इसलिए हम लोग CBI की जांच की मांग करें क्योंकि CID गलत रिपोर्ट पेश कर चुकी है और इस आधार पर कोर्ट ने फैसला दे दिया कि इसको ज्वाइनिंग करवा दीजिए. अब अगर फिर से अगर वो देगा तो फिर गलत ही रिपोर्ट देगा क्योंकि उसमें सरकार फंस सकती है.
15: ये बहुत मार्के की बात है कि राज्य सरकार की एजेंसी को एक बार जांच का जिम्मा दिया गया जिस पर कुछ ऐसी विसंगतियां रही जिस पर छात्रों को भरोसा नहीं है. ये एक छात्र नहीं है, ऐसे असंख्य छात्र हैं जो इसी तरह की बात बोलते हैं. तो आप फिर उसी एजेंसी से जांच क्यों? कुछ इसीलिए CBI से
2: conducting a lathi charge now on the protesters at the Jharkhand Assembly. And you can see there people also trying to move back, trying to ask the police personnel to stop there. So we can see the visuals, but the students are running back now as the police continues their lathi charge at the spot. These are live visuals coming in, viewers, from outside the Jharkhand Assembly. You can see there students running back as the police in full riot gear is conducting the short lathi charge. Batons being twirled and you can see media persons there as well videographing the entire situation. We are bringing you these live visuals. My colleagues are on the spot right there at the protest site as the students are now being pushed back. The protesters themselves also making sure that there is no violence. Remember, as my colleague Shashi Bhushan has been saying, the members of this protest itself, the volunteers in the protest itself saying that there should not be any violence. They are moving the police personnel back. They're trying to make sure that nobody gets into a clash with them. And you can see there in the visuals on your screen right now, sir, bottles being thrown and at the police personnel. Shoes and chappals also possibly being thrown as the police starts their lathi charge at the site. These are visuals that we're bringing you from outside the Jharkhand Assembly. But you can also see the volunteers and the protesters themselves pushing those people back, saying that there should not be any violence against the police. Remember, Devendra Mehta just a few minutes ago on our cameras had said very clearly that these students are very clear in their goals. They will try to ensure that there is no violence whatsoever. They do not want a repeat of what happened in Delhi's Jantar Mantar. They want the government, they want the powers that be to listen to them. So here you saw a short lathi charge by the police. The students had moved back from the barricade themselves. And now the lathi charge has stopped. The students back at the barricading outside the assembly. They are shouting slogans. They are standing there in protest. But the lathi charge now seems to have stopped. We're getting some breaking news that's coming in. Home Minister Amit Shah to respond in Parliament. Remember, for the last few days, the Sansad showdown had been continuing as the opposition was refusing to allow the parliament to function properly. Now, the government seems to have accepted the opposition demand to end the ongoing logjam. As Jharkhand students go on the warpath, center now pushes for debate on students issued. Kiran Rijiju is speaking to the media. Let's listen in.
17: But our condition is... ऐसा है। इसमें गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट का सवाल नहीं, हम तो बहुत व्यापक कह रहे हैं। स्टेटमेंट ही क्यों, पूरा डिटेल चर्चा होना चाहिए और जवाब सरकार का जवाब जब देंगे तो उसमें कोई ऑपोजिशन पार्टी ऐसा हरकत नहीं करना चाहिए जवाब को डिस्टर्ब करने के लिए। पूरी तरह से सुनना पड़ेगा।
18: गृहमंत्री जवाब देने के लिए तैयार है?
17: पूरी तरह तैयार है। एक एक बात का जवाब दिया जाएगा, देश को जानने का पूरा अधिकार है। लेकिन विपक्ष जवाब को रोकने के लिए हंगामा नहीं करना है, ये भी सुनिश्चित करना होगा। और हमने कह दिया एक समय एक चर्चा हमने मंजूर किया है और अब बहाना करके फिर सदन को स्थगित करने का जो बार बार कोशिश कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। द ऑफर मेड बाय द गवर्नमेंट इज वेरी क्लियर। आई हैव स्टेटेड गवर्नमेंट इज रेडी टू हैव ए फुल एंड डिटेल डिस्कशन अबाउट द स्टूडेंट मूवमेंट्स एंड द एक्टिविटीज रिलेटेड टू दैट। माई ओनली पॉइंट very clearly made to the opposition is, while the discussion and the reply is being made, they should not create any disturbances to distract the house or to prevent the statement of the Honorable Home Minister. They must listen to the reply of the Home Minister and the government. Once discussion begins, we must have threadbare discussion. ओपोजिशन तो हर मुद्दे को लेकर कह रहे, राम मंदिर के मुद्दे पर मैं इतना कहना चाहता हूँ, उसका एक SIT के माध्यम से यूपी स्टेट गवर्नमेंट का एक्शंस और बाकी कई चीजें राज्य सरकार का स्तर पे हो रहे हैं, तो इसलिए अब मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं अभी सिर्फ एक साफ सरकार का जो स्टैंड है उसको बताने के लिए आया हूं कि छात्र का विषय, छात्र का आंदोलन से जुड़े हुए जो भी गतिविधि हुए हैं उस पे चर्चा के लिए सरकार तैयार
2: है। जस्ट हर्ड फ्रॉम किरण रिजिजू द मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स सेइंग दैट द होम मिनिस्टर इज रेडी टू स्पीक इन पार्लियामेंट। द सेंटर इज नाउ कॉलिंग फॉर डिबेट on the issues raised by the students, but Rijiju at the same time saying that the debate needs to be on the government's terms, that the opposition should not create any noise or disrupt the parliament when this discussion is happening. Remember, this is this statement from Kiran Rijiju coming in while in Jharkhand, the police is lathi charging the student protesters. We've seen now the day 17 of the protest in Ranchi coming in days after the massive protests in Delhi, and the question of students, the question of paper leaks, the question of investigation into paper leaks has been one that is rapidly becoming a big headache for the government. On your screens right now, viewers, is the visuals from the protest in Ranchi right now, where the students are continuing to protest, the students are continuing to march toward the Jharkhand Assembly. But now the government saying that we are ready to discuss this issue in the parliament. Remember, for the last several days, the parliament has been in a logjam. The opposition party is clearly conducting a protest of their own at the Makar Dwar, calling for the Home Minister to respond on the question of paper leaks. We have Babulal Marandi, who is a MLA, on the phone line with us. Sir, इस वक्त इतने सारे students assembly के बाहर खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी बात सुनी जाए, exam paper जो leak हुआ है उस पर कुछ कदम उठाए जाए, क्या कह रही है सरकार, क्यों नहीं सुन रही सरकार?
19: बात तो मैं ये कहूंगा कि 12-14-15 दिन से लड़के धरना पर उपवास पर बैठे हुए, अनशन पर बैठे हुए, सरकार बच्चों को सिर्फ इधर से उधर टहला रहे हैं, और यहाँ पेपर लीक का मामला नहीं है, यहाँ बच्चों की जॉब को बेचा गया है। जेसीसी ने भी बेचा है, जेपीएससी ने भी बेचा है। जेसीसी ने आचार्यों की नियुक्ति को बेचा है। जेसीसी ने सीजीएल के परीक्षा में वहां गड़बड़ धांधली वहां किया है, वहां नौकरी को बेचा है। जेसीसी ने एक्साइज विभाग के सिपाहियों की बहाली में गड़बड़ घोटाला किया है। जेसीसी ने माध्यमिक पीजीटी के शिक्षकों की नियुक्ति में घोटाला किया है। जीपीएससी ने 11, 12, 13वां जीपीएससी में भी गड़बड़ किया है, 14वां जीपीएससी में भी गड़बड़ किया है। इसलिए छात्रों की यही मांग है, उसको रद्द करे और पूरे मामले को सीबीआई से जांच कराओ। यही तो यहाँ के नौजवान मांग कर रहे, यहाँ के छात्र मांग कर रहे हैं, और झारखंड की जनता यही मांग कर रही है। इसलिए यहाँ पेपर लीक का मामला नहीं है, यह मामला है नौकरी को सरकार ने बेचा है।
2: मरांडी साहब, आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, आप और आपके साथी एमएलए भी प्रोटेस्ट में शामिल हुए, लेकिन मुझे ये बताइए, आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, आप एक पद पर हैं, ये जो सवाल बच्चे बाहर उठा रहे हैं, ये जो सवाल नौकरी बेचने का जो ये सवाल है, ये असेंबली में इस पर क्या डिस्कशन हो रहा है, सरकार से आप लोग क्या मांग कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं, आप भी तो पोजिशन में है बच्चों की बात रखने की,
19: आंदोलन कर रहे हैं। आज तो हम लोग सीएम के आवास में गए थे मिलने के लिए कि भाई हमारी बात को सुने, सदन में वो कुछ भी नहीं सुनने को तैयार है, और बच्चों को वर्षों से ठग रहे हैं, बार बार बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, कभी जेसीसी का ऑफिस में डंडा खा रहे हैं बच्चे, कभी जेपीएससी के दफ्तर में डंडा खा रहे हैं, तो आखिर बहस कब तक। इसलिए एक ही मांग है बच्चों की कि भाई आप इसको रद्द करें, आप सीबीआई से जांच कराओ ताकि बच्चों को न्याय मिल सके।
2: जी, आप लोग आज हेमंत सोरेन के चीफ मिनिस्टर के घर के बाहर गए थे, आपको भी डिटेन किया गया था कुछ देर के लिए, क्या लेकिन क्या चीफ मिनिस्टर ने आप लोगों से कुछ बातचीत की, क्या सरकार ने आप लोगों को कुछ कहा है कि क्या करने वाले हैं वो?
19: अभी भी हम लोग डिटेन ही किए हुए, वहां से गिरफ्तार करके खेल गांव में ला करके बिठाए हुए हम लोगों को अंदर में।
2: जी,
19: हम लोग विधानसभा हम लोगों को नहीं जाने दिया, हम लोग तो विधानसभा जाने के पहले हम लोग समझ रहे थे कि 10 बजे चल करके हेमंत सोरेन से हम लोग मिल ले और उनको बतावे कि भाई हर धर्म ये छोड़िए, अब इसको जांच कराइए सीबीआई से।
2: जी,
19: लेकिन हम लोगों को अंदर भी नहीं घुसने दिया, मिलने भी नहीं दिया, ना हेमंत सोरेन बाहर आए, बल्कि पुलिस फोर्स को भेजा और वहां से सबको उठा करके यहाँ ला करके रख दिया है हम सभी विधायकों को।
2: तो आप ये कह रहे हैं कि ऑपोजिशन विधायकों को डिटेन करके दूर कहीं डिटेन करके रखा हुआ है, बात भी नहीं कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर और सरकार का कोई भी, आप लोगों से भी बात नहीं कर रहा है,
19: खेल गांव में रखे हुए। हम लोग तो बार बार कह रहे हैं कि भाई हम लोग तो विधानसभा जाने दीजिए।
2: जी,
19: लेकिन कोई अधिकृत कोई अफसर है नहीं, जो यहाँ मजिस्ट्रेट रिपोर्ट है वो भी कह रहा है कि मेरा ऊपर बात ही नहीं हो पा रहा है।
2: जी, और मरांडी साहब एक बात बताइएगा, ये तो आज की बात है कि आप लोगों को डिटेन किया, बच्चे पिछले 14-15 दिनों से बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या आप लोगों ने ये मुद्दा चीफ मिनिस्टर से कोई आपस में बातचीत करने की कोशिश की, किस कुछ उनका रिस्पांस रहा, क्या कहा उन्होंने?
19: सर्वदलीय मीटिंग में भी मैंने इस बात को रखा है, विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति में भी बैठक हुई, वहां भी मैंने कहा है कि भाई आप इसको रद्द करें और सीबीआई से जांच कराइए इस मामले को, हमने सब जगह रखा इस बात को।
2: जी, और मरांडी साहब एक बात बताइए, आप बीजेपी के नेता हैं, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, जब सीबीआई इंक्वायरी का सवाल उठता है, क्या आपने सेंटर में किस बात करने की कोशिश की कि भाई हमारे स्टेट में क्या हो रहा है, ये सीबीआई देखे, कोई एफआईआर जो है उसके बारे में कुछ बात की गई? कोई
19: नहीं जांच के लिए दे सकते जब तक राज्य सरकार अथवा हाईकोर्ट जब तक परमिशन नहीं देती है तब तक सीबीआई जांच नहीं कर सकती है, ये तो आप सब लोगों को पता ही है नियम। तो इसलिए केंद्र से इसमें कोई, केंद्र के हमारे सारे नेता को पता है झारखंड की क्या परेशानी है, क्या परिस्थिति है, लेकिन झारखंड की तो झारखंड की जनता और यहाँ के नौजवान ही उसको हल करेंगे, यहाँ की सरकार हल करेगी, यहाँ की सरकार यही तो मांग हो रही है कि आप सीबीआई जांच के लिए आप इसको रेफर कर दीजिए, सीबीआई जांच करेगा, अदालत में निगरानी में जांच करेगी, तब फिर मामला सब ठीक हो जाएगी।
2: जी बहुत बहुत धन्यवाद बाबूलाल मरांडी हमसे बात करने के लिए. दिस वॉज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन झारखंड स्पीकिंग टू अस अबाउट हाउ द गवर्नमेंट इज नॉट listening either to the students or to the opposition. But let's go back to the Parliament of India, where the Home Minister is now going to be responding. He has agreed to speak in the Parliament on the student protest. We just heard from the Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju a few minutes ago that the centre is now ready to have this debate on the students' protests, on what has happened in Delhi and now in Jharkhand. Piyush Mishra is joining me live on the story. Piyush, Kiran Rijiju says the centre is ready to talk, but the opposition should not disrupt the parliamentary proceedings. What more can you tell us? What's happening in Parliament?
20: Well, that's right, Anisha. Big offer coming in from the government to opposition. We are ready to discuss each and every issue, each and every point that has been raised by opposition as far as the students' protest is concerned. The government will respond. Mr. Amit Shah himself will respond to the concerns, to the queries of opposition. At the same time, government is saying that, okay, we are ready for discussion, but opposition should not create disruption. And if they create a disruption, the discussions cannot happen. And this, what we are told, is that could be a special discussion only and only on students' movement, the kind of protest which happened there at Jantar Mantar, also the protests that are happening in Jharkhand and the anti-paper and also the paper leak which happened in the state of Punjab. So across the country, various incidents have been reported where students have protested, and that is the point which the government has agreed upon. The government is saying that we are ready to discuss on each and every point, on each and every movement, every protest which was done by students related to the educational reforms, and we will respond. The government will respond. Kiran Rijiju has now made this official. Minister Amit Shah is going to speak on this, and he will also respond to what the opposition has been requesting for. Remember that opposition every day comes in Parliament, protest and demands that Minister Amit Shah must respond. Amit Shah Jawab Do is a slogan which they raise every time. But now what we are told is that government has accepted the demands of opposition, given the fact that opposition should not create any kind of disruption and let the parliament function. When we asked this question from Gaurav Gogoi, who is deputy leader of Congress in Lok Sabha, about the offer of government, Gaurav Gogoi is now saying that we not only demand a specific statement from Minister Amit Shah, but also a proper discussion on the issue of Chanda Chori in Ram Temple, to which the government is saying that it is a state subject. SIT is already investigating this entire matter. But yes, government is very much ready to speak, to respond on the concerns that will be raised by the opposition. The excessive use of pellets, use of forces is the point which opposition has been raising since day one. Now, government has accepted the demand of opposition. Remains to be seen if the discussion happens and if opposition agrees to what the government is now saying.
2: Piyush, when the government says, when Kiran Rijiju says we are ready to have the discussion in Parliament, that the Home Minister is going to speak in Parliament, is there any timeline? Have they said when this is going to happen? As you just said, we'll have to see if this happens. Has the government made any indication about when or how, or whether it is going to be in the next few days, when it's going to happen?
20: Well, what will happen, Alisha, we need to understand that there will be a meeting from both these sides. There will be MPs from the government side and also from opposition side. They will go and meet with Lok Sabha Speaker, and then Lok Sabha Speaker is going to decide how many hours the discussions will happen. And after the allotment of times, both these sides will agree upon the discussion, and then only things will get clear. But one thing is clear, that government has offered to have a detailed discussion on the students' movement, on the students' protest. Everything lies on opposition. If they agree, then Lok Sabha Speaker will decide on the number of hours the discussion will happen. And also, he is going to take a decision when will this discussion happen.
2: All right. Thank you very much for that, Piyush Mishra. We're likely to now see a discussion in the Parliament once the government and opposition come to an agreement on when that discussion is going to happen. But after such a long disruption, we are now going to see possibly a discussion in the Parliament on the student protest, on the violence against the students, on the use of force by the police. But for now, it's time for us to take a very short break. More news and updates will continue on the other side of this very short break. Keep watching India Today.

इतने इरिस्पॉन्सिबली आकर के कुछ नशा करके, या तो अल्कोहल हो या तो कोई और ड्रग्स हो, वो लेकर के आके फ्लाइट में इतने लोगों का जान अपने हाथ में रखते हैं, बहुत इरिस्पॉन्सिबल है। और इससे भी ज़्यादा जो मेरे को क्या लगता है कि सिस्टम की गलती है। यहाँ पे जो DGCA हैं या एयरपोर्ट अथॉरिटी हैं या एयरलाइंस हैं, इनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, इनको इम्प्रूवमेंट्स करने चाहिए अपने प्रोसेस में, ताकि हमारे जैसे लोग, हम तो चलो बचे, लेकिन बहुत जो नहीं बच पाए हैं आज तक और आगे, उनका लाइफ खतरे में नहीं जाए।

0: Air India flight AI2379 turbulent scare has taken a dramatic new turn. The government has now confirmed India Today's news break on the pilot's dope test. DGCA stated that both pilots underwent screening, with the pilot in command requiring a confirmatory test. The final lab report is awaited, while the AAIB will probe the very incident. The flight, an Airbus A320, encountered severe mid-air turbulence near airspace above Odisha on August 4, with the aircraft suddenly dropping around 300 feet in altitude. The incident left at least 17 people injured, including 13 passengers and 4 cabin crew, with some sustaining serious spinal and neck injuries. The aggrieved passengers are understandably furious.
1: जब फ्लाइट नीचे जा रही थी तो मेरे को सबसे ज्यादा चिंता हुई बच्चों की.
2: Existing by the natural forces, and if it is a clear air turbulence, then there is nothing in the aircraft or the weather radar that can warn the pilot, and the pilot will get into the turbulent air pocket without having known, and that is a risk that all the passengers and the aviation takes on.
0: But here's the catch: a positive dope test alone cannot be read as conclusive proof of a pilot being intoxicated at the controls. These screenings detect the presence of psychoactive substances, not necessarily impairment at the exact moment of the incident. Whether the narcotic substance played any role on the sudden altitude drop, or whether the turbulent encounter and the test...
3: Good afternoon and welcome. You're watching India Today and I'm Anisha Mathuran. Here are the headlines at this hour. Amid massive student stir in Jharkhand, Home Minister Amit Shah to respond in Parliament on student protests. Union Parliamentary Affairs Minister Rijiju lays down conditions before opposition not to disrupt Home Minister during his speech. Fireworks expected in Parliament during debate. With no breakthrough in sight, protesting students in Jharkhand's Ranchi march to Vidhan Sabha. Protesters break barricades, march toward assembly. BJP ghiraos Chief Minister Soren's house, protesters lathi charged by cops. Jharkhand student leader Devendra Mehto stopped by cops from marching toward assembly on an ambulance. Mehto appeals for peaceful protest. Showdown over Tamil anthem continues. Tamil Nadu Chief Minister Vijay Seth moves special resolution seeking to mandate state song be sung first at government events. DMK, AIADMK back resolution.
4: सरकार पूरा छात्र का मामले को लेकर के चर्चा के लिए तैयार है और स्टेपनी नहीं छात्र का मामला को लेकर के पूरा चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है गृह मंत्री जी विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार है मैं अनुरोध करता हूं कांग्रेस पार्टी और इनको कह दिया है कि सरकार छात्र को लेकर के पूर्ण रूप से विस्तार से चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है
5: माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने आप लोग जो लगातार मांग कर रहे थे, आप लगातार मांग कर, अखिलेश यादव जी सुन लीजिए, अखिलेश जी सुन लीजिए, इधर सभी शांत पूर्वक बैठे हुए हैं, आप सुन लीजिए, अगर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं कि माननीय गृह मंत्री जी इस सदन में चर्चा का उत्तर देने के लिए तैयार हैं, तो कृपया मैं अनुरोध करूंगा, आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया सदन को व्यवस्थित करें, सदन की कार्रवाई को चलाने दें, प्लीज काइंडली। मैं सभी, टैगोर मलक्कम साहब, यू आर ए चीफ विप ऑफ द पार्टी, अगर पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, ही हैज एक्सप्रेस हिज फीलिंग कि नाउ होम मिनिस्टर इज रेडी टू रिप्लाई ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, लेकिन अब हाउस को व्यवस्थित करिए। अखिलेश जी इधर से व्यवस्थित है, चाहे संजय जायसवाल जी हो, निशिकांत जी हो, सभी पूरा सत्ता पक्ष बैठा है। अगर अगर गृह मंत्री जी के लिए संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया है कि वो चर्चा का उत्तर देने के लिए तैयार हैं, देखिए आप अखिलेश जी, मैं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, डीएमके सभी मेंबर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि आई थिंक सो दिस इज द लास्ट वीक ऑफ द मानसून सेशन, इन लास्ट थ्री वीक द इंटायर मानसून सेशन वॉज वॉश आउट, हु इज रिस्पॉन्सिबल, हु इज अकाउंटेबल, यू हैव बीन इलेक्टेड, यू हैव बीन इलेक्टेड, यू आर फॉर्चुनेट लकी कि ओनली जस्ट टू बियर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर इलेक्टोरल कॉलेज, बट हियर यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन डिबेट, इवन यू आर डिमांडिंग दैट होम मिनिस्टर शुड रिप्लाई। अब पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कह दिया है, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ने कह दिया, तो अगर आप जवाब चाहते हैं तो सदन को व्यवस्थित करें। आप सदन में चाहते हैं कि माननीय गृह मंत्री जी जवाब दें, तो सदन को व्यवस्थित करिए। माननीय गृह मंत्री जी का जो आप मांग रहे थे कि माननीय गृह मंत्री जी सदन में हमको जवाब दें, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कह दिया कि हम गृह मंत्री जी जवाब देने के लिए तैयार हैं, और गृह मंत्री जी चाहते हैं कि चर्चा हो, तो आप सदन को व्यवस्थित करें। आइटम नंबर 20, ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म बिल 2026, ऑनरेबल मिनिस्टर,
6: ऑनरेबल चेयरपर्सन सर, विथ योर काइंड परमिशन आई वांट टू मूव दैट द बिल टू इंप्रूव द एफिशिएंसी,
5: मेरी रिक्वेस्ट है
6: योर इंडिपेंडेंट,
5: नीचे करिए
6: ट्रांसपेरेंसी,
5: ये डिस्प्ले इस तरह से प्ले कार्ड डिस्प्ले करना,
6: क्वालिफिकेशन
5: ये इस तरह से प्ले कार्ड डिस्प्ले, ये न नियम परमिट करता है न चेयर करता है। अगर आप इस तरह से प्ले कार्ड डिस्प्ले करेंगे
6: सर,
5: बिल्कुल नहीं ठीक
6: सर।
5: माननीय मंत्री जी
6: सर, विथ योर काइंड परमिशन आई वांट टू मूव दैट द बिल टू इंप्रूव द एफिशिएंसी, एंश्योर इंडिपेंडेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड यूनिफॉर्मिटी इन द क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ द वेरियस ट्रिब्यूनल्स, द एडमिनिस्ट्रेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द ट्रिब्यूनल्स, टू एस्टेब्लिश ए नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन एंड टू मेक कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट इन रिलेटेड इनेक्टमेंट एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विथ और इंसिडेंटल देयर टू बी टेकन इन टू कंसिडरेशन। अध्यक्ष जी, आज ये बहुत महत्वपूर्ण बिल सदन के समक्ष आया है। ये जो रिफॉर्म एक्सप्रेस देश में चल रही है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसी का ही एक ये पार्ट है, और आपने अनुमति प्रदान की है इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। हमारे संविधान के आर्टिकल 323A और 323B में ये उपबंधित किया गया है, और बाद में एक स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत संविधान में शामिल किया गया ट्रिब्यूनल की व्यवस्था, ये मैं बताना चाहता हूँ। और इससे देश आज़ादी से पहले भी एक हमारे यहाँ ट्रिब्यूनल था, ITAT, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, तो वो 1941 का था, लेकिन ये 76 में फिर ये ट्रिब्यूनल की व्यवस्था की गई। ट्रिब्यूनल का उद्देश्य कोर्ट्स का अल्टरनेट बनना नहीं होकर मॉडर्न गवर्नेंस में टैक्सेशन, कंपनी लॉ, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी की मार्केट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और अन्य स्पेशलाइज रेगुलेटरी मैटर से जुड़े मामले सुलझाने हेतु एक कॉम्प्लीमेंट्री संस्था के रूप में भूमिका निभाता है, जिससे स्पीडी एंड इफेक्टिव जस्टिस डिलीवरी के अल्टीमेट गोल प्राप्त किया जा सके। ये ट्रिब्यूनल की व्यवस्था है। माननीय अध्यक्ष महोदय, समय के साथ ट्रिब्यूनल की संख्या बढ़ी, अलग अलग मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के अंतर्गत इसके लिए अलग अलग सिस्टम विकसित हुए। इससे ट्रिब्यूनल इकोसिस्टम में फ्रेगमेंटेशन, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द प्रोसीजर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वेरिएशन जैसी चुनौतियां सामने आई, चुनौतियां। इसलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने वर्ष 2015 में 15 से ही ट्रिब्यूनल के रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया प्रारंभ की, जिसके तहत फाइनेंस एक्ट 2017 द्वारा समान प्रकृति वाले ट्रिब्यूनल्स का मर्जर कर उनकी संख्या 26 से घटाकर 19 की गई। इसके उपरांत ट्रिब्यूनल रूल्स 2017 एवं ट्रिब्यूनल रूल्स 2020 अधिसूचित किए गए, किंतु इनके अपॉइंटमेंट, टेन्योर, सर्विस कंडीशन एवं जुडिशियल इंडिपेंडेंस संबंधी प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। रोजर मैथ्यू 2019 तथा मद्रास बार एसोसिएशन 2020 मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कई प्रावधानों को असंवैधानिक ठहराते हुए एक स्वतंत्र नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन की स्थापना का निर्देश दिया। इसी के लिए मैं आज आपके समक्ष बिल लेकर आया हूँ। इसके पश्चात ट्रिब्यूनल रिफॉर्म ऑर्डिनेंस 2021 तथा बाद में ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 लागू किए गए। इसके पश्चात ट्रिब्यूनल की संख्या 19 से घटाकर 16 किया गया। इस एक्ट के कई प्रावधानों को भी सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल इंडिपेंडेंस एवं सेपरेशन ऑफ पावर सबूत मानते हुए असंवैधानिक घोषित कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 19 नवंबर 2025 के जजमेंट में पुनः स्पष्ट किया कि ट्रिब्यूनल मेंबर की अपॉइंटमेंट, टेन्योर, सर्विस कंडीशन न्यायपालिका की स्वतंत्रता के अनुरूप होनी चाहिए तथा एग्जीक्यूटिव कंट्रोल से मुक्त, ट्रांसपेरेंट और इंडिपेंडेंट नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन की स्थापना आवश्यक है, एनटीसी की स्थापना आवश्यक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो इसी के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हीं न्यायिक निर्देशों को ध्यान में रखकर तथा कॉन्स्टिट्यूशनल तथा जुडिशियल फ्रेमवर्क को देखते हुए एक मॉडर्न इंडिपेंडेंट एंड यूनिफॉर्म ट्रिब्यूनल इकोसिस्टम बनाने हेतु ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल 2026 लाया गया है इस मान सदन के समक्ष। मैं सदन के माध्यम से एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह बिल ट्रिब्यूनल की सब्सटेंटिव जुरिस्डिक्शन में कोई परिवर्तन नहीं करता। प्रत्येक ट्रिब्यूनल की जुरिस्डिक्शन वही रहेगी जो उसके संबंधित पेरेंट एक्ट में निर्धारित है, अर्थात जुरिस्डिक्शन बदलने का बिल नहीं है। ये गवर्नेंस, अपॉइंटमेंट, इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस, ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी को मजबूत करने का बिल है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल के प्रमुख प्रोविजन इस प्रकार है। नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन की यानी एनटीसी की स्थापना, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज तथा हाई कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस करेंगे। एनटीसी में 2 जुडिशियल, 2 टेक्निकल मेंबर होंगे ताकि न्यायिक व तकनीकी विशेषज्ञता समन्वय हो। ट्रिब्यूनल अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया एनटीसी के माध्यम।
3: All right, you can see here the parliament is now set to hear this issue. Here the home minister, the government is saying that they are ready for the home minister to speak, but major uproar in parliament, the opposition MPs creating a huge ruckus even as the speaker asks them to ensure that there should be a proper discussion in parliament. Centre now saying there can be a debate on the students issue, but asking the opposition not to interfere, not to create a ruckus while the home minister speaks. Let's listen to what Kiran Rijiju, the parliamentary affairs minister, just said.
7: Rahul Gandhi ji ne mang kiya tha ki home minister Amit Shah ji ko parliament mein statement dena chahiye chhatra andolan ko lekar ke. हमने बहुत साफ कहा, सिर्फ स्टेटमेंट ही नहीं, होम मिनिस्टर अमित शाह जी पूरा डिबेट डिस्कशन का जवाब भी देंगे। और हमने अभी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का बैठक में कह दिया है कि छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार पूरी तरह फुल फ्लेज डिस्कशन के लिए तैयार है और एक एक पॉइंट को जवाब देने के लिए तैयार है और विपक्ष हंगामा करके डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो हमने अपना ऑफर दे दिया है। अब कांग्रेस और समाजवादी अपोजिशन पार्टी में कुछ मतभेद है, आपस में कुछ मतभेद है, वो सुलझा ले। हम तो चर्चा के लिए, छात्र का मामले हैं, हम चर्चा के लिए तैयार है।
4: मैंने पिछले एडवाइजरी में भी सर सार्वजनिक वहां सबके सामने में कह दिया है कि सरकार छात्र को लेकर के पूर्ण रूप से विस्तार से चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है।
3: Himanshu Mishra is joining me from the parliament. Himanshu, the government now saying we are ready to talk, but the opposition is creating a ruckus in parliament. We also just heard the speaker of the Lok Sabha admonishing the MPs. क्या लग रहा है आपको BSE की मीटिंग में क्या हुआ है, क्या पता चला है हिमांशु आपको एंड क्या होने की उम्मीद है अब?
8: देखिए BSE के अंदर जो है साफ साफ जो है अगर आप देखा जाए तो सरकार की तरफ से एश्योरेंस की गया है कि सरकार जो है छात्र आंदोलन पर चर्चा के लिए तैयार है और गृह मंत्री इस पर जवाब देंगे। लेकिन विपक्ष ने ये कहा कि राम मंदिर पे चंदा चोरी के मामले पर भी जो है वो चर्चा हो, तो सरकार की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि एक विषय पे सरकार जो है वो डिस्कशन के लिए तैयार है, क्योंकि सरकार को और भी अपने कई लेजिस्लेचर्स जो है वो हाउस में लाके पास कराने हैं और सरकार के पास टाइम कम है। लेकिन विपक्ष इस चीज को लेकर अड़ा हुआ है और कई विपक्षी दल जो है वो ये चाहते हैं कि सरकार जो चर्चा कराना चाहती है छात्र आंदोलन पे स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर वो चर्चा हो जाए। लेकिन पूरी तरीके से विपक्ष जो है अभी ये कह सकते हैं कि कंफ्यूजन में है कि वो इस विषय पे चर्चा हो या ना हो। लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि वो राम मंदिर पे भी चर्चा चाहते हैं, यानी चंदा चोरी के मामले पे। अब देखना ये है कि क्या होगा आने वाले दिनों में, क्योंकि सरकार ने अपना मोटिव साफ कर दिया है कि वो चर्चा कराने के लिए तैयार है। विपक्ष इस चीज को लेकर अड़ गया है कि वो दोनों ही विषयों पे चर्चा चाहते हैं और सरकार ने बता दिया कि दो विषयों पे चर्चा जो है वो नहीं हो सकती है।
3: जी बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु मिश्रा स्पीकिंग टू अस अबाउट व्हाट्स हैपनिंग। वी आर आल्सो बीइंग जॉइंड बाय पीयूष हु हैज बीन फॉलोइंग दिस इशू। पीयूष, एज हिमांशु जस्ट सेड, सरकार ने अपना पक्ष रख दिया है, सरकार हैज सेड व्हाट दे वांट, दैट दे ओनली वांट द डिबेट नाउ ऑन द स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट। द ऑपोजिशन सेइंग देयर इज अ सेकंड पॉइंट दैट दे वांट अ डिबेट ऑन एंड वी हैव सीन द लास्ट सेवरल डेज ऑफ कॉन्स्टेंट पार्लियामेंट्री डिस्ट्रप्शन। व्हाट आर यू पिकिंग अप फ्रॉम द ऑपोजिशन पार्टीज, पीयूष?
9: Well, one thing is clear that the government has made a big offer to opposition. Okay, we are ready to have a discussion and Home Minister Amit Shah will respond. In the last few days, in fact, since the second week of council session, Amit Shah, we have seen opposition coming out every day at 10:30, they stage a protest and demand answer from Home Minister Amit Shah. Now, the government is ready to respond. Home Minister Amit Shah is going to respond if discussion happens. The government has made it very, very clear that we will hold discussion on all the strange movements that are taking place, not only in Delhi, but also in Punjab, also in Jharkhand, also in other parts of the country. And the opposition can put forth their views and we will respond to their queries and we'll address all their concerns. Minister Amit Shah will himself come on the phone and will reply to the points that will be raised by opposition political parties. But now what is happening here is that Gaurav Gogoi, who is a deputy leader of the Congress party in Lok Sabha, is making it very, very clear that we specifically demand answers from Minister Amit Shah. Okay, on which, on this government has agreed. But we also want discussion on Ram Mandir Chanda Chori, to which the government is saying that it is a state subject. SIT is already investigating the entire matter. How can we have a discussion of something which is already being investigated by a state government in a parliament? So now, what will happen? That opposition will continue to raise their voice, they will continue to create a disruption, seeking answers from the government over the issue of Chanda Chori in Ayodhya, in Ram Temple. So we will not see any kind of a solution coming to the fore because Lok Jan continues to be there. The opposition is still demanding answers from the government over Chanda Chori.
3: And we are seeing the kind of ruckus that is being created in the Lok Sabha right now. Piyush, the opposition MP is shouting slogans very, very loudly. Let's listen into what's happening in the Lok Sabha right now.
10: Honorable Chairperson, sir, with your permission, I move that the bill be passed.
5: माननीय मंत्री जी ने विधेयक को पास करने के लिए प्रस्तुत किया है। आप में से किसी लोगों को अगर विधेयक पे कुछ कहना हो तो कहिए, तो सदन में आप हंगामा कर रहे हैं। प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। अब तो आपने इस विधेयक में हिस्सा नहीं लिया। मैं सबसे बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सभी को अवसर दूंगा, आप सदन में चले जाएं। आपको मैं अवसर देना चाहता हूं। मैं आप दिल तो आप मैं पूरा देश देख रहा है, अखिल इंटायर नेशन इज वॉचिंग यू कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्टर्बेंस ऑफ द हाउस। इस सदन को में जहां चर्चा होनी चाहिए वहां लगातार मानसून सत्र के पहले दिन से आप लगातार व्यवधान कर रहे हैं। क्वेश्चन आवर माननीय सदस्यों का है, जीरो आवर माननीय सदस्यगण का है। ये सब माननीय सदस्यगण बैठे हैं सतीश गौतम जी, और उसके बाद इनको चर्चा करने की इनको सदन विषय उठाने को नहीं मिल रहा है। गणेश जी आप हैं, अजय भट्ट जी हैं, इनके विषय आए हैं, तो आप क्वेश्चन आवर में दे नहीं रहे। जयप्रकाश जी, औजला जी, आपका भी नाम ले रहा हूँ, आप सदन को व्यवस्थित करें। इससे साफ है कि आप केवल प्ले कार्ड लाएंगे। इस सदन में देश के जनता की जो जवाबदेही है आपकी अकाउंटेबिलिटी है, जनता के नहीं। जब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने आपकी मांग
3: Seems that the parliamentary deadlock is now deepening as the Congress seeks the Chanda Chori debate in addition to the debate on the student protest. Congress has said very categorically that Amit Shah speaking is not enough. Both demands must be met. Opposition seems to be digging in over the two key demands, the Home Minister's statement on the student protest and the Ram Temple. Both topics on the opposition's radar as the Congress says government is not agreeing to temple debate. And the deadlock continues between the government and opposition. And we just heard what is happening in the parliament, in the Lok Sabha right now. The opposition MPs continue to raise a ruckus. And the tribunals reforms bill passed by voice vote with zero debate amid this ruckus. Gaurav Gogoi has given a statement that 4 days are remaining for the discussion. The opposition wants there are both topics to be raised, no business till the government relents. That's a statement coming in from Gaurav Gogoi. Let's listen into what he had to say.
11: I have not seen what he has said, but what the information I'm getting and what we have discussed in our different meetings is specifically the Home Minister's statement on the police action and brutality against students. We have not got any specific reply on that whether the Home Minister will speak on police action, police brutality against students or not. That clarification has not come. And government has not given any specific reply whether they are ready to take up the debate on the corruption and mismanagement of the Ayodhya Ram Mandir Trust.
3: Mausmi Singh is joining me on this story. Mausmi, the deadlock in Parliament continuing. The government says Home Minister is ready to speak on the student protest issue. The opposition now saying, well, we want him not just to speak on the use of force against the students. We also want a debate on the Ayodhya issue. Meanwhile, disruption continuing constantly from the opposition MPs, and Parliament is passing bills by voice vote and zero debate. Mausmi.
12: So clearly, you know, the deadlock is continuing, because here you can hear Mr. Akhilesh Yadav coming out and saying that Ram Mandir is a non-negotiable issue. Let's hear what he has to say.
13: Sarkar aur Vipaksh. Aur Vipaksh is baat pe pehle din se ki Home Minister ka statement aa jaye, Sarkar ka statement aa jaye. Bhi Sarkar tayar nahi hai. Jab
3: All right, there. Mausmi seems to be speaking to Akhilesh Yadav. We'll get you the visuals at that particular bite from Akhilesh Yadav as soon as we get the signal back with Mausmi there. But the opposition clearly saying this is not enough that Amit Shah has agreed to speak on the student protest issue. They want him to answer on the use of force against the students and on the question of the Ayodhya Ram Mandir Chanda Chori. They are digging in over both key demands. We just heard Gaurav Gogoi now speak.
11: लेकिन अब समय कम है, इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार ये दोनों विषयों को तवज्जो दे और एक भी विषय को दूसरे विषय की तुलना में इसको कमजोर ना समझे। दोनों विषय महत्वपूर्ण है, जनहित में है और दोनों विषयों पर सरकार की जवाबदेही बनती है।
14: गौरव जी, गौरव जी, एक बार में एक ही विषय पर चर्चा हो सकती है। पेपर लीक पे चर्चा हुई, विस्तृत बिल आया, उस पर बिल पारित हुआ। अब जब अमित शाह के बयान के लिए और छात्रों पर कार्रवाई पर चर्चा के लिए सरकार राजी हो गई है, तब आप लोग इस पर चर्चा के लिए आप लोग राजी क्यों नहीं हो रहे?
11: देखिए, एक समय पे एक ही विषय पे चर्चा हो सकती है, लेकिन दिन तो चार रह गए हैं, तो दोनों विषयों पर वो क्यों राजी नहीं है? जो इतने समय से हम मांग कर रहे हैं, जो पहले दिन से हम कह रहे हैं, ये हम जो सेशन की शुरुआत हुई जुलाई 20 को, उससे पहले हम कह रहे हैं और आज हम सेशन के आखिरी सत्र में, आज भी राम मंदिर में घोटाले को लेकर वो चर्चा में भाग नहीं लेना चाहते, क्यों? छात्रों के विषय पे हम इतने दिन से बोल रहे हैं कि गृह मंत्री सदन में आए, ये जो समय क्यों खराब कर रहे हैं, समय क्यों व्यर्थ कर रहे हैं? तो इसीलिए आज भी विपक्ष में का जो पार्लियामेंट में हमारे पास क्या तरीके होते हैं, तंत्र होते हैं अपने बात उठाने के लिए, 193 होता है, कॉलिंग अटेंशन होता है, उसमें एक भी विपक्ष के जो उसके पास जो सदन के जो नियम प्रक्रिया है, एक का भी तो इस्तेमाल नहीं हुआ। जो भी चर्चा हुआ बिल के द्वारा हुआ। इतने दिन से हम गृह मंत्री की मांग कर रहे हैं, इतने दिन से हम चंदा चोरी की मांग कर रहे हैं।
15: सर, अभी तक तो क्लैरिटी नहीं हो पाया ना, फिर दो विषय आ गए, क्लैरिटी कैसे होगी? मतलब डिस्कशन होगा तो दोनों होगा।
11: मैडम, हम तो पहले दिन से ही दोनों का मांग उठा रहे हैं, इसके साथ और भी विषय उठा रहे हैं, पर ये दोनों मुद्दे तो पहले से उठा रहे है कि
14: सर, आइदर बोथ और नन, या तो दोनों या कोई नहीं।
11: दोनों विषय महत्वपूर्ण हैं, दोनों विषय महत्वपूर्ण हैं। सरकार के पास अब धीरे धीरे अब सरकार एक पे मान गई है, मैं सरकार से दरखास्त करूंगा कि समय व्यर्थ न करे, दोनों पे मान जाए।
14: तो एक जिस पे मान गई उस पे
3: More breaking news coming in now. The BJP is slamming Rahul Gandhi for selective silence. BJP questions, why is Rahul Gandhi silent on Ranchi? They're saying he roared in Kota and Prayagraj, but silence on Ranchi. Rahul is not looking at student welfare. In fact, BJP says, for Rahul Gandhi, student welfare is just a mask. Opposition is using students for politics. In fact, Rahul Gandhi is under attack by the BJP, as BJP says that the Ranchi-Delhi contrast exposes the hypocrisy of the Congress party and Rahul Gandhi. The BJP is questioning where is Rahul Gandhi as the students in Ranchi are protesting, and political interest seems to be driving the opposition. That is the allegation coming in from the BJP. Let's listen in to Sudhanshu Trivedi of the BJP, who's raised all of these allegations against Rahul Gandhi.
16: मगर इतनी गंभीर बात के ऊपर भी राहुल गांधी को झारखंड रांची के छात्रों की गूंज सुनाई नहीं पड़ रही है। बताइए, जो जाके दहाड़ते और चिंगाड़ते थे कोटा से लेके और प्रयागराज तक, वो रांची पे मिमियाते हुए भी नजर नहीं आ रहे हैं। यह दर्शाता है कि उनका उद्देश्य छात्र हितों की बात करना नहीं, अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति करना है। मगर इतनी गंभीर बात के ऊपर भी राहुल गांधी को झारखंड रांची के छात्रों की गूंज सुनाई नहीं पड़ रही है। बताइए, जो जाके दहाड़ते और चिंगाड़ते थे कोटा से लेके और प्रयागराज तक, वो रांची पे मिमियाते हुए भी नजर नहीं आ रहे हैं। यह दर्शाता है कि उनका उद्देश्य छात्र हितों की बात करना नहीं, अपने
17: राजनीति Jharkhand where the protests are going on. BJP is also asking that the student welfare is just a mask of the Rahul Gandhi and the opposition is just using students for politics. That's what the BJP is now saying. Remember that this attack has been leveled after the press conference which has been done by the Bharatiya Janata Party when asking to President Sudhanshu Trivedi. So a couple of days back we had seen how Rahul Gandhi raised this matter and he has said that he is standing with friends from across the country. But now the BJP is saying that why he has maintained silence, why he is not going to Ranchi. And this statement of BJP is coming at a time when massive protests are undergoing the state of Jharkhand where students are demanding CBI approval in the entire matter.
3: All right, Piyush, stay on with me. We're getting some more breaking news coming in. I'll just come back to you on that. BJP now also targets CJP's bhagodas over Sansad Chalo March. BJP says, the BJP spokesperson, in, while talking to the media, contrasts Dipke and company with the Ranchi students. BJP says Dipke, Ranka, Saurav Das, Vijeta Dahia, all the CJP leaders, they're targeting all of these CJP leaders, saying that the real students are standing their ground.

0: visuals coming in from Jharkhand, where hundreds of protesters have gathered. The cops have resorted to mild force as well. We'll try and understand what exactly is unfolding on the ground. First, the barricading. Then, all right, look at that. It appears that the man who's taken off his shirt appearing to show that he's been targeted by the Jharkhand police. Tear gas was also used. First, water cannons, then tear gas, and then lathi charge. If I'm correct, it appears that the man who has taken off his shirt is trying to show that he was hit by the police as well. I want to immediately bring in Ashutosh Mishra. Ashutosh, go ahead. What's happening with the baton charge?
1: जिले इन सीधी तस्वीरों को देख करके हाथों में तिरंगा है, बाबा अंबेडकर की तस्वीर है, संविधान की प्रतिलिपि हाथ में है और वो चाहते हैं कि वो रास्ता दें। पुलिस वहां रोकने की कोशिश कर रहे, बार बार आह्वान किया जाता है, चार से पांच जितनी बैरिकेड्स हैं, छात्र ऐसे उसको लेकर के भागे, उनके लिए एक आंदोलन की हमने तस्वीर देखी। उन्हें तो ये देखे, पुलिस फोर्स के पीछे भी छात्रों की जो टोली चली गई थी वो भी वहां नारे लगा रही है। यानी अब किसी हिस्से में लोग बचे नहीं है, पुलिस के पीछे भी लोग, इस पार भी लोग हैं। अगर ये कुछ करना चाहेंगे तो इनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इनकी कोशिश थी कि बड़ी से बड़ी संख्या में ज्यादा से उनको भेजा जा सके। इसी के साथ साथ यहाँ पर भी जो प्रदर्शनकारी है, जो नहीं पहुंच पाए थे या झारखंड के दूर दराज के इलाकों से जिनका आना रह गया था, वो भी धीरे धीरे पहुंचे हैं। और अब इस इलाके में आपको अगर कुछ दिखाई देगा तो वो है सिर्फ छात्रों का, युवाओं का, प्रदर्शनकारियों का रेला जो इस इलाके पर अब डटा हुआ है। और यहाँ पर एक बार फिर देखिए आह्वान किया जा रहा है, छात्र फिर जो किनारे खड़े सबको मोबिलाइज कर रहे हैं, आइए आगे चलेंगे। अब यही मुश्किल हो जाती है पुलिस को। जी राजीव, राजीव बोले, आप बोले, आप कुछ कह रहे हैं।
0: Telling us about what precisely happened in this case, and we'll try and get more clarity. You can see that baton charge was resorted to after water cannon, after barricades were broken, then tear gas was used, and eventually the baton charge. But it seemed, at least till the water cannons, that the situation could be controlled, even though they could not be dispersed. But then with lathi charge, now the protesters are turning angry as well. Ashutosh, if you can hear me. Yes, go ahead. I can see tear gas also was used that did disperse the crowd of the student protesters for a bit, but they returned after which lathi charge was done. Action there at the moment, and this, remember, is a situation that the police is not able to control anymore. The numbers are also increasing. Water bottles, plastic bottles basically, were thrown at cops from the agitators' side. For the longest time, the volunteers of the student protest have been successfully keeping it peaceful and democratic. The police also did not resort to force, but also understand that they have been marching toward the assembly. Even if the protests are genuine and their demands are genuine, they cannot be permitted into the assembly premises. That's a VVIP security zone. That's where the police has been resorting to force. A crackdown is happening by the Jharkhand police on the student protesters. This is not going to look good, remember, because the students can always claim now that they have been peaceful for the longest time. There were no abuses, no stone pelting, no violence from the student side, from the protester side. What was the need of the force then from the Jharkhand police or the CRPF deployed? If Ashutosh Mishra can hear me, Ashutosh, you also please stay safe. And if you can help understand what's happening. We are also joined by Satyajit and Shashi Bhushan from different camera locations. Remember that Satyajit earlier was showing us about how a handful of protesters had entered inside
1: the... दर्जनों से कहीं ज्यादा इस तरह के प्रदर्शन देखे हैं और समय के साथ वो कैसे बदलते हैं उनको भी देखा है। अभी भी कह रहा हूं कि छात्र अनुशासन में है, रेस्ट्रेन पुलिस जो कहते हैं ना, कि झारखंड पुलिस ने मिसाल कायम की है कि हजारों की संख्या में जो छात्र आए हैं उनसे कैसे निपटना है, उन्होंने फिर भी बहुत एक मिसाल कायम की है। उन्हीं पुलिसकर्मियों के लिए देखे वहां ताली भी बज रही है, तो बैनर पोस्ट, ये देखिए, ये आप देखा आपने कैसे बीच में जूते चप्पल भी, तो कई सारे ऐसे तत्व भी हैं। ये देखिए, कोई पानी की बोतल भर के भेज रहा है, कोई चप्पल भेज रहा है, कोई लकड़ियां फेंक रहा है। और जब ये प्रशासन पुलिस बलों की ओर जाते हैं तो वहां से भी जवाबी, ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये जूते चप्पल यहां से फेंके जा रहा है। अब ये कुछ छात्रों की भीड़ में कौन से तत्व जब आ जाते हैं, ये अपने आप में एक समस्या जरूर खड़ी हो जाती है। लेकिन बाकी अगर 180 डिग्री में देखेंगे तो ज्यादातर छात्र हैं, बैनर पोस्टर लेकर के वो नारेबाजी कर रहे हैं, नाच गा भी रहे हैं। जेन जी का जो प्रदर्शन होता है वो प्रदर्शन के रंग दिखाई दे रहे हैं, स्पाइडरमैन बैटमैन से लेकर के पूरी की पूरी मार्वल सीरीज यहां दिखाई दे जाएगी। लेकिन डेडलॉक बना है इस कन्फ्रंटेशन पॉइंट पर कि क्या पुलिस यहां से अब छात्रों को आगे जाने देगी। ऐसा भी नहीं है कि गए नहीं है, मैं पुलिसकर्मियों के पीछे सैकड़ों छात्रों को देख रहा हूं, जो पहले ही पहुंच चुके हैं, उस रेस्ट्रेन की बदौलत, क्योंकि चार्ज नहीं हुआ, लेकिन जो हल्का बल प्रयोग किया कि वो पीछे रखें। देखिए फिर एक बार आह्वान किया जा रहा है। दरअसल यही होता है, जैसे अचानक वो जोश में आते आह्वान करते हैं, छात्र आगे बढ़ते हैं, दबाव बढ़ता और फिर यहां से रोक टोक की जाती है। छात्र कहां तक जाएंगे, और दरअसल ये कि अब वो लीडरशिप नहीं है, वॉलंटियर्स भी कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो संख्या बहुत ज्यादा है, और जब इस तरह की संख्या बल बढ़ रही है तब इस प्रदर्शन को कैसे नियंत्रित करेंगे, ये अब छात्र संगठनों के लिए भी चिंता का विषय होना चाहिए। और प्रशासन तो खैर अपने आप में उसके हाथ पैर तो मैं फूले हुए दिखाई दे रहे, देखिए पानी की बोतलें, चप्पल, जूते, डंडे सब हवा में उड़ते हुए अब दिखाई दे रहे हैं। अब उसके बाद भी वहां पर महिला पुलिसकर्मी, आईआरबी और जो पुलिस है उनके जवान डटे हुए हैं जस के तस। फिर एक बार वो आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर ये डेडलॉक बना हुआ है। एक डेडलॉक उस फैसले को लेकर के है, मांगों को रहे, और एक डेडलॉक विधानसभा से सिर्फ 100 मीटर की दूरी, विधानसभा का द्वार समझ लीजिए कि 100 मीटर की दूरी पर जहां पर ये छात्र, और ऐसा भी नहीं है, करीबन सैकड़ों छात्रों को मैं देख रहा हूं जो दूसरी तरफ पहुंच चुके हैं, आगे भी बैरिकेडिंग पर रुका है, लेकिन यहां पर अब जो भीड़ बढ़ रही है इसे आगे शाम होते होते कैसे संभाला जाएगा, ये अब अपने आप में चिंता का विषय है।
0: Bringing us the visual, look at that. The numbers are only increasing on the ground. Ashutosh, however, is maintaining that the police for now, to a certain extent, despite the crowd number, has shown restraint, but force was used. The question is, why isn't Hemant Soren government reaching out to the student protesters? To the credit of these students, hundreds in number could have gone out of control. They've still managed to restrain it. If they have genuine demands, and it's primarily about their future, their employment, irregularities in the exam, why shouldn't the Jharkhand government reach out to this Gen Z of the state? If the central government ministers could reach out with multiple rounds of talks and negotiations to the students, even the protests turning violent in Delhi, why shouldn't these student protesters deserve as much justice and at least an ear from the government? The Chief Minister has done round one with the delegation. What is it that the second round cannot take place? Satyajit is joining me about the student protest. Satyajit, you brought us that exclusive visual of the students who had entered into the premises. What is the situation like? Are there some protesters still inside the premises?
2: They are still here and they are just outside this barricade. You can see they are carrying a tricolor, and the number of students, their numbers have gone up, and more students are taking the routes. They are coming here, so they want to enter this barricade because we are just 100 meters away from gate number one that is being used by the Chief Minister when he enters the Vidhan Sabha premises. And this route is used by the MLAs and other ministers. One road is exclusively reserved for the CM, and this route is taken by the MLAs, the legislatures and others and other ministers to reach the assembly, and they have blocked this road completely. None is being allowed to go outside. None of the MLAs have taken this route. The session is on. Perhaps this is for the first time in the history of Jharkhand that protesters have been able to reach at this point. This assembly was incepted in 2019, and after that there was a space designated for dharna, pradarshan and protest near the Jagannathpur temple. There is a field where the space was designated for dharna and pradarshans, and most of the morchas that used to come were stopped at that point. Prohibitory orders have also been promulgated in this area. Despite all this, they have been able to reach here. They scaled down the barricades, the wire barbed wire barricades, and then they take an escape route, and taking other route, they have been able to reach this point. This is the point that is used for entry into the assembly premises. The monsoon session is still on.
0: Yes.
2: The MLAs are stuck up inside the house. They are not coming outside. Though they have an alternate route,
0: but that route is used by the Hemant Soren government initiated the first round of talks. Why is the second round not happening? Do you see a second round happening of negotiations between the students and the government?
2: Three rounds of talks was held between the panel of ministers. The government had constituted a committee, a panel of four ministers comprising of Sudhir Sonu from JMM, Chamra Linda from JMM, Deepika Pandey Singh from Congress, and Sanjay Prasad Yadav from RJD. They had dialogues, they attempted to break the ice, but the students were adamant on two demands which were not conceded by the government. They wanted the cancellation of JSSC CGL also, but the government said that they don't have the authority to cancel it because that exam was conducted on the directions of High Court and Supreme Court. They cannot intervene into that. But if there are some specific cases, they can set up a probe under the supervision of retired judge, but it cannot be cancelled. And the other point was CBI probe, CBI investigation of irregularities and rigging in 14th JPSC exam. That too was not considered by the government. All the demands were considered, and government had said that they are ready to cancel the 14th JPSC. Over and above, they are also willing to cancel, as per demand of the protesters, the backlog seats. The examination would not be conducted. That will be cancelled. But they wanted a CBI probe into how TDPL, a blacklisted agency, was impaneled. After that, on the other riggings that had happened during the 14th JPSC yes. exams. So these are the two points that was the bone of contention, and that could not bring out some solution.
0: Can you tell me, Satyajit, here, just for the benefit of the viewer here, which demand, according to you, possibly has been approved by the government? And why is it that despite some assurance, the students are still on the ground and they're not convinced? What is that one demand that they continue to be here protesting so vehemently?
2: The students alleges that there was a large-scale corruption in JSSC, CGL examination, and the kingpin of all this, the man behind all this, was Abhay Tiwari, who was successful in 13 examinations conducted by JPSC and JSSC.
0: Lathi charge is being resorted to by the force. I believe that's the CRPF. We'll try and get some more clarity on this. The Jharkhand police personnel, other forces that have been deployed, are pushing the student protesters away. Till now, remember, since at least now about 20 days approximately, both the protesters, the protesting side, and the establishment side had maintained restraint. The protests were largely peaceful, but now you can see, and what we can confirm to you, look at that. I look at the plastic bottles being thrown at the cops from the protesters' side. I can hear the tear gas being fired. Let's dip into the sounds coming in. See some volunteers who are trying to ask others to restrain in any violence. But I could hear the tear gas also being fired. Let's listen in. This is Deinder Mahato.
3: का प्रयोग कर रही है जो निंदनीय है. सरकार डर गई है. कायर सरकार है. और सरकार जब-जब डरती है, ये पुलिस को आगे करती है. लाठी गोली बंदूक वाटर किरण का प्रयोग करती है. लेकिन हम लोग देखेंगे सरकार में कितना पावर है इसका टीयर गैस में. हम लोग देखेंगे कितना दम है इसका लाठी में. हम सलाम चढ़ा के आए हैं महोदय. 9 दिन
4: आगे देख के आगे देख के आगे आगे देख के रुको रुको ओए कोई
3: खबरदार भाई कोई नहीं भागेगा. एक कदम नहीं भागेगा.
5: अब आप लोग जाएंगे आगे?
3: आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे.
5: आपकी सरकार से कोई बातचीत हो पाई है दोबारा?
3: अभी सरकार से क्या बात करेंगे? और 3 राउंड बात हो गया. अब कोई बात नहीं करना है. हमारी मांग पूरी करे, नहीं तो ये छात्र सरकार के मुख्यमंत्री के कुर्सी तक पहुँच जाए.
5: 98% वो कह रहे हैं
3: अगर छात्रों की बात नहीं मानती है तो सरकार की कुर्सी में खतरा है. सरकार की कुर्सी हिल सकती है. ये आक्रोश रुकने वाला नहीं है. ये जन आंदोलन में बदल गया. कौन रोकेगा? युवा को पलटी कर दीजिएगा तो वायु को कोई रोक नहीं सकता.
6: सर अगर नहीं जाने दिया तो क्या कीजिएगा सर, अगला कॉल क्या होगा?
0: Devinder Mahato, he's basically the leader at the forefront of the student protest. And slamming Soren government, he said the government is a coward and are not listening to the protesters. Satyajit continues to be with us. Ashutosh Mishra is with us. Ashutosh and Satyajit, if I can come to you first.
7: एकदम लगभग 100-150 लोग जो है पूरा उनके ऊपर चढ़ने का वो प्रयास करने लग गए थे तुरंत उनको पीछे हटाने के लिए कि भीड़ हमारे पुलिसमैन के ऊपर से उनको चोट ना लग जाए, उनको हटाने के लिए पहले यूज किया गया था। अभी सारा बैरिकेडिंग तोड़ने के पश्चात फिर भी हमारी पुलिस डटी हुई है और फिर अगर मतलब उसके बाद थोड़ा पीछे की तरफ धकेलने का प्रयास किया गया था, पत्थर चलाए गए थे, उसके बाद थोड़ा अपने दोबारा जो अपना हमारा जो स्थान है वो रिटेन करने का प्रयास किया गया है। लेकिन एज रांची सिटी एसपी मैं अभी भी अपील करूंगा कि प्लीज प्रोटेस्ट को पीसफुल रखिए, प्लीज शांत रहिए और कोई भी वायलेंस मत करिए।
8: प्रोटेस्टर्स कितने इंजर्ड हुए?
7: प्रोटेस्टर्स जहां तक हमें सुनने में आ रहे हैं 4 से 5 प्रोटेस्टर्स को माइनर इंजरी हुई है, उनको जो है प्रशासन के द्वारा एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। धन्यवाद।
0: पुलिस पर्सनल लेट्स लिसन इन टू द
9: एग्रेशन नहीं दिखाया जाएगा। अभी हम देख रहे हैं कि आप लोग लगातार बैरिकेड्स तोड़ रहे हैं, पत्थर और तमाम चीजें बोतल हल कर रहे हैं, जिसकी वजह से पुलिस को भी लाठी यूज करना पड़ा है, क्या कहेंगे?
10: नहीं नहीं, हम लोग पीसफुल है। आप छात्र का शकल देख के देख सकते हैं कि छात्र जो है अपने मुद्दों पर अड़ग है। कुछ असामाजिक तत्व है जो से आंदोलन को दूसरी दिशा में ले जाने चाह रही है, लेकिन हम सभी छात्र जो है अपने मुद्दे पर अड़ग है, प्रशासन से ये अपील करते हैं ऐसे असामाजिक तत्व को आप चिन्हित कीजिए। हमारी वॉलंटियर्स भी उसको चिन्हित करने का काम कर रही है और अगर अभी चिन्हित नहीं हो पाती है तो वैसे का सीसीटीवी कैमरा वीडियो कैमरा खंगाली जाएगी, उस पर कार्रवाई की जाएगी। हम आपके माध्यम से ये जितने भी छात्र है अगर आपके बीच में कोई असामाजिक तत्व है तो आप जो है हमारे वॉलंटियर को बताने का काम करें। ये छात्रों का मुद्दा को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग बिल्कुल शांति और संवैधानिक तरीके से ये आंदोलन को अंतिम रूप देंगे। आपके माध्यम से हम राज्य सरकार से फिर एक नम्रता पूर्वक अपील करना चाह रहे हैं कि आज जो है सो ये आंदोलन ऐतिहासिक आंदोलन होने जा रही है। आप शाम तक देखिएगा धीरे धीरे ये भीड़
1: को जो रास्ता मिल रहे देखिए, अब इधर फिर एक बार जमावड़ा बढ़ गया। यहाँ पर जो है ना पीछे की सड़क जो खाली और थी आगे बढ़ रहे थे, ऐसा लग रहा है कि छात्रों की संख्या लगातार आते जा रही है, वो आगे भी पार कर रहे हैं इस आखिरी बैरिकेड को और उसके बाद उनकी संख्या भी आगे लगातार बढ़ रही है। तो झंडा बैनर पोस्टर की कमी नहीं है, ना छात्रों की कमी है, वो आते जा रहे हैं और जो थोड़ा बहुत बच पाए देखिए पेड़ पर बैठ गए हैं, उनको पता है यहाँ कैसे डंडा चलाओगे, यहाँ कैसे लाठी चलाओगे, टीयर गैस यहाँ कैसे काम करेगी। तो जिसको जहाँ मिला वहीं टिक गया। जितनी पुलिस प्रशासन की बसें हैं वो सब पर तो प्रदर्शनकारी और छात्र सवार हो गए हैं। अब नीचे क्या है कि अगर धक्का मुक्की होती है, आंसू गैस के गोले चलेंगे तो ये रिपोर्ट पहुंचाने में हमें, हम खुद यहाँ पर बस पर ये जो बस है इस पर सवार हो गए ताकि हम आपको वो तस्वीरें और कम से कम एक बर्ड आई व्यू दिखा सके। अभी भी डेडलॉक बना हुआ है, अब नहीं समझ में आता सरकार क्या रास्ता निकालेगी। जहां तक मैंने प्रदर्शनकार या इस तरह की चीजें देखी उसमें एक ही चीज है कि सरकार को एक ऐलान करे, खुद मुख्यमंत्री के ऐलान से कम संभवतः किसी को मंजूर नहीं होगा, और अगर वो एक वीडियो संदेश जारी करते हैं कि हाँ उनकी मांगे मान ली गई हैं, सरकार इसका रास्ता निकालेगी, कोई ठोस आश्वासन दे, तो अभी भी मुमकिन है कि ये आंदोलन यहाँ पर खत्म हो जाए, छात्र अपने घर चले जाए। राजीव
0: Ashutosh telling us, and from a bird's eye view that he's informing us about what is the protest looking like. But you can see force is being used, water cannons, bait and charge, tear gas is being used. However, consistently, and you have to appreciate the protesters also here, they're consistently maintaining they do not want to indulge in any sort of further violence or aggression. I did see some plastic bottles being thrown at the cops. It would be pertinent here that the Hemant Soren government reach out to the delegation right away because this could go out of control. And what are these protesters demanding? They have been consistently maintaining that there are strong irregularities in the public service examination at the state level of Jharkhand. Has been happening for years. If you have money, if you are rich, you pay up and get the job or even get to clear the examination. While the honest, meritorious students, especially residents of Jharkhand or from tribal communities, haven't really been able to get their way. This is something that the government must immediately reach out to. Let's dip into the sounds coming in.
1: पूरा का पूरा बैरिकेड उठा करके लेकर के भाग गए। अब यहाँ कौन संवाद करेगा और कैसे किससे बातचीत करेगा? छात्र तो अब है कि हमें तो विधानसभा पहुंचना है, उन्होंने ठान लिया, अब इनको आप कैसे रोकेंगे? अब प्रशासन शासन नहीं चाहता कि छात्रों पर बल प्रयोग हो, तो वो भी नहीं हो रहा है। अब ये ऐसा डेडलॉक है कि जो उस पार वर्दी में खड़े हैं वो भी इसी बिरसा मुंडा की जमीन के हैं, वो भी कुछ साल पहले ये छात्र रहे थे, इन्हीं परीक्षाओं से गुजरे।
0: about the grievances of the students.
1: सरकार के तौर yes, पर अगर आप पूछ रहे हैं राजीव तो नहीं, शासन के तौर पर इस तरह की बातचीत नहीं. अगर आप प्रशासन के तौर पर ये पूछ रहे हैं कि छात्रों के प्रदर्शन मार्च को कैसे नियंत्रित किया जाए, मैं यहाँ एक अधिकारी को देख रहा हूँ, ये मैं तारीफ करूंगा उनकी जिस तरह से उन्होंने अब तक इस परिस्थिति को संभाला है. वो अधिकारी थे, कहीं भी ये आदेश दिया गया डंडा नहीं चलेगा, बल प्रयोग नहीं होगा, मानने मनाने की कोशिश हुई, धक्का हुआ, वो हट गए, उन्हें जाने दिया गया. ओवर पावर किया छात्रों ने और इसलिए वो बहुत ज्यादा उन्होंने बल प्रयोग नहीं किया, वैसे नूरा कुश्ती नहीं हुई, इसलिए वो आगे चले गए. सरकार के स्तर पर बातचीत इसलिए कि आंदोलन खत्म हो, ये फैसला शासन का होता है. प्रशासन ने अपना काम किया और यहां तक हमने देखा कि वो रेस्ट्रेन जिसे कहते हैं, इस तरह के प्रदर्शन में जब विधानसभा के दरवाजे छात्र पहुंच जाए, यह भी संभवतः पहले कभी नहीं हुआ होगा क्योंकि वो युवा हैं. और इसीलिए फिर वो याद आता है वो एक फ्रेज की, कैसे उस पार जो खड़े हैं वो कुछ साल पहले के छात्र थे, इस पार जो खड़े हैं वो मौजूदा छात्र हैं, कल को ये भी उसी वर्दी में होंगे, तो एक दूसरे को वो समझते हैं. इसीलिए डंडा, बल प्रयोग, लाठीचार्ज, ये जो प्रोटोकॉल के तहत एसओपी के तहत इस्तेमाल हो रहा है, हो रहा है. और छात्र उनसे भी आप देख लीजिए लड़ नहीं रहे हैं, उनको धक्का नहीं मार रहे, वो बैरिकेड हटा रहे हैं, हिला रहे हैं, धक्का मुक्के में निकल जा रहे हैं. किसी भी पुलिसकर्मी को यहाँ पर चोट नहीं आई है, न ही पुलिसकर्मियों ने ये कोशिश की कि उनकी बर्बरता या उनका डंडा सीधा छात्रों को लगे. अब क्या होता है, एसओपी में कई बार कुछ अनफॉर्चुनेट चीजें होती हैं, लेकिन यहाँ पर भी उसकी एक मिसाल देखने को मिली है. अब आते हैं आपके सवाल पर कि सरकार अब बातचीत का वक्त चला गया है, गेंद उसके पाले में है, और अगर वो जो जेएसएससी एससीजीएल का मामला है, अगर यहाँ पर एक फैसला नहीं होता है तो इस फैसले के बाद इस आंदोलन को खत्म करना बहुत मुश्किल होगा. मुझे लगता है कि वो जो बस है वो निकल चुकी है. अब बिना एक ऐलान के और एक तरफा ऐलान के अलावा सरकार के पास कोई रास्ता बचा नहीं है.
0: Ashutosh telling us what's unfolding on the ground at the Jharkhand student protest. We can see this situation is turning worrisome. Let me just explain the visual to you. In the visual on his screen, that's Devinder Mahato, the student leader. He's about 33 years of age. He's been a student leader and has participated in many protests. This one he's leading, citing irregularities in the examinations. That's the tear gas smoke that the police and CRPF have used to disperse the crowd. On the other side, you can see some of the protesters who have even geared out a police personnel, but were immediately pushed back. There are barricades. Some of the we are looking at some of the wooden barricades that have also been taken away. All right, this, ladies and gentlemen, is where the situation turns concerning. This is the side route that we are showing you where the protesters have now entered. This directly connects the assembly premises. Now, this is where the security forces did not anticipate that some of the protesters could take this route. So this is the sidelines of the main road route where the protests have been breaking out. You can see the tear gas smoke on your screen. You can see some of the protesters coming toward the green side, which is basically the garden area, and that then connects to the new assembly premises. That's where some of the protesters have managed to enter, even though we do not hear of any violence or chaos inside the assembly yet, where the session is on, remember. That's because the forces are deployed. The protesters are not resorting to havoc or mayhem inside the premises, even if they have been able to touch base there at the gates. However, this is the side route that some of these protesters have entered into. Satyajit is showing us these visuals. Satyajit, if you can hear me.
11: यहाँ tear gas का इस्तेमाल कर रही है. जाहिर तौर पे हम कह सकते हैं कि ये अपने आप में एक ऐतिहासिक स्थिति है झारखंड के लिहाज से, छात्र आंदोलन के लिहाज से. राजीव,
0: अशीभूषण, सत्यजीत, आशुतोष आर कॉन्स्टेंटली रिपोर्टिंग फॉर अस डिफरेंट perspectives टू हेल्प यू अंडरस्टैंड. द प्रोटेस्ट इज नाउ टर्निंग आउट ऑफ कंट्रोल. सिंस मॉर्निंग, रिमेंबर, देयर वर इनफ वॉलंटियर्स हु वांटेड टू मेंटेन द डेकोरम ऑफ द प्रोटेस्ट, दैट इट्स एन ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट दैट दे आर साइटिंग अगेंस्ट the government, demanding some very basic issues. Remember, this is also Gen Z. Most of them are students who are asking. They've not been able to clear the exam because they believe that there are irregularities, that there's money involved, that paper leaks have happened. Also to tell you, ladies and gentlemen, for what the government has done, arrests have happened in the case of exams and paper leak accusations. So the Hemant Soren government believes that they have taken action here. But the students maintain that it is not enough and their future is also now at stake. Constantly these visuals that are coming in. The state CID, remember, has also arrested a former JPSC chairperson.
11: छात्र देखिए किस तरह पगडंडियों के सहारे, एक बार सहयोगी से कहेंगे थोड़ा दिखाएं, देखिए कैसे पगडंडियों के सहारे खेतों के बीच से छात्र होते हुए विधानसभा पहुंच रहे हैं. और अब सरकार जो दावे कर रही थी, जो तैयारी थी प्रशासन का अपने स्तर पे तैयारी थी कि विधानसभा मार्च या विधानसभा घेराव को सफल नहीं होने दिया जाएगा, वो चीजें अब इतिहास बन चुकी है। देखिए यह भगदड़ हुई है वहां पे, वहां पुलिस ने बल प्रयोग किया है, पुलिस वहां बल प्रयोग कर रही है, भगदड़ की स्थिति है वहां पे, छात्र नीचे की तरफ भागे हैं, लाठी चार्ज वहां पे, ये देखिए कैमरे के सामने लाठी चार्ज राजीव, तो ये अपने आप में अजीबोगरीब स्थिति है, इसके पहले हमने कभी नहीं देखा झारखंड में ऐसा। जो इस वक्त युवा शक्ति अपने आंदोलन को विधानसभा तक पहुंचाते हुए दिख रही है राजीव।
0: This is the latest visual on your screen of lathi charge of tear gas. The sound that you hear, the boom sound in the background, that's of the tear gas shells that are being fired. And that's because now the situation is turning out of control. Remember, ladies and gentlemen, that the Jharkhand assembly session is on, which means that all the senior leaders are currently inside. I want to dip into the sounds for a few minutes here near the assembly. Shashi Bhushan is on the ground and we'll dip into what he's saying and documenting for us about these student protests. Remember, the negotiations did happen and the state government maintains that they will not be able to either cancel the exam or order a CBI probe, because that's what the centre has to decide. But clearly at this point, we are told that the angry student protesters who wanted to march toward the premises with the big news that's coming in, that there has been a latest arrest. That's the big government decision that has been taken. The JPSC ex-chairperson L. Kengate has been arrested amid the protest. That's the big news that I was telling you about. This is the state CID. And he basically faced questioning over the empanelment of the blacklisted company TDPL for the 14th civil services examination. Just to give you a background, Kangit is a senior official. He's served as former chief secretary of Jharkhand as well. He had resigned from his position last month as the JPSC chairperson. So he was recently the chairperson since the controversy has erupted. He said his resignation comes in to ensure a fair investigation into the matter. He had been facing questions about why a blacklisted company, the TDPL, was empaneled to conduct the JPSC 14 civil services examination. He has now been taken in custody by the state CID. He had already gone through multiple rounds of intensive questioning by the state CID. The questioning lasted several hours. Investigators have examined the allegations linked to the examination process. And that is why more and more arrests that are taking place. Remember, the Hemant Soren government will have to show that they are taking action over this. The BJP has jumped in. Ladies and gentlemen, the opposition party, the Bharatiya Janata Party, says, and I quote it here, Soren government is silencing the student voices. Lathis are being used to silence the student voices. Peaceful protesters are being bloodied and injured. Lathis, batons can break the bodies, but not the spirit of the students. Soren government will bear the brunt of this lathi charge.
1: यहाँ पर मैं आया आपको बिल्डिंग दिखाता हूँ। ये विधानसभा का इलाका है और ये सारे खेतों के रास्ते, वो देखिए वो विधानसभा है और ये जितने छात्र हैं एक-एक करके, अब इस इलाके में क्या है, दो बैरिकेड के बीच में जहां सुरक्षा व्यवस्था है, उन्होंने कहा छोड़िए आपको, पुलिस जो है वो बैरिकेड के पास रहेगी, ये खेतों के रास्ते निकल लिए। और देखिए रेला दो दो चार चार पांच पांच दस दस करके ऐसे ही सैकड़ों में पहुंच जाएंगे। और अब वहां पर पुलिस ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, रोके तो रोके कैसे, जो बैरिकेड था वो छात्र उठा के लेके चले गए, जो कटीले तार थे उनको पता नहीं कहां फेंक दिया, थोड़ा बहुत आंसू डंडे जो चलाने की कोशिश की छात्रों को डर लगा नहीं। और अब वो सीजीएल के, मैं वही कह रहा हूं कि अब सरकार के लिए बहुत देर हो चुकी है, उनकी बस जा चुकी है, या तो मांगे माननी होंगी वरना इस आंदोलन को रोकना मुश्किल होगा। लोकेंद्र को कहूंगा जरा आइए दूसरी तरफ दिखाते, देखिए पतले रास्ते, कोई रास्ता नहीं है, ये खेतों की पगडंडी है जहां से मैं वहां पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, जहां से ये छात्र विधानसभा घेराव करने के लिए, मुझे नहीं पता भारत के आंदोलन में हाल फिलहाल में किसी पीढ़ी ने ऐसा आंदोलन किया कि संसद विधानसभा घेरने के लिए खेतों के रास्ते पुलिस को चकमा देते हुए। और ये भी नहीं याद आता कि कभी इस तरह के प्रदर्शन में पुलिस या प्रशासन की ओर से इस तरह का रेस्ट्रेन किया गया होगा कि वो डंडा नहीं चलाएंगे, बल प्रयोग नहीं करेंगे, एसओपी में भी इतनी ढिलाई। अभी सिर्फ बच्चे नहीं, महिलाएं भी हैं, सब उधर उसी तरफ जा रही हैं। तो आइए हम आपको लिए चलते हैं, जितने छात्र हैं पूरा इलाका हर ओर बैठे हुए हैं और आगे मानो रेला चल रहा है जो धीरे धीरे विधानसभा की ओर जा रहा है। और अगर विधानसभा का घेराव कर लिया, ये चारों ओर अगर बैठ गए हैं तो यहाँ पर वो देखिए, और वो सैकड़ों की संख्या है जो वहां पहुंच गए हैं, ये देखिए मुझे यहाँ से दूर से जो दिखाई दे रहा है वो एक दो दस पांच बीस नहीं है, वो सैकड़ों में है। जरा यहाँ से स्टेबल करके तो दिखाने की कोशिश करता हूँ, एक तस्वीर दिखाई लोकेंद्र। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि विधानसभा से लगभग 50 मीटर की दूर ये जो अकेले इलाके बना हुआ है ये संख्या सैकड़ों की है। बहुत ज्यादा छात्र अगर यहाँ पर आ गए, इनको हटाएंगे कैसे, बातचीत करेंगे कैसे, नेतृत्व कौन है यहाँ पर, ये भी अपने आप में प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। और इसीलिए हम जैसे जैसे आगे जा रहे हैं, लोकेंद्र कहूंगा थोड़ा सा आगे जरा इस तरफ आइए, देखिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन रास्तों से प्रदर्शनकारी विधानसभा पहुंच जाएंगे। सड़क बंद हुई तो उन्होंने सड़कों को छोड़ दिया, कच्चे रास्तों से उतर गए और उन्हीं कच्चे रास्ते, देखिए लगातार ये जो जमावड़ा है जा रहा है, ये सामने विधानसभा की बिल्डिंग मुझे दिखाई दे रही है और इसी विधानसभा के रास्ते ये जो छात्र हैं, ये आप लोगों को यहाँ का रास्ता कैसे पता चला?
12: आदमी के साथ जैसे आदमी आ रहा पीछे पीछे लोग आ रहे
1: नहीं तो वहाँ तो आप लोगों को रोकने की कोशिश थी। अब मंशा क्या है, अब छात्र कहाँ तक रुकने वाले, क्या मंशा है आगे?
12: अब तो ऐसा लग रहा है कि अब कोई नहीं रुकने वाला,
1: आप लोग जा रहे हैं विधानसभा, लेकिन वहाँ बात किससे करेंगे?
12: अब देखिए किससे बात होता है, वहाँ पर कौन बात करता है।
1: अब कोई रास्ता अब लगता है निकलेगा, अगर विधानसभा जाएंगे भी तो क्या करेंगे?
12: बैरिकेड लगा के कुछ फायदा नहीं, साइड से एरिया इतना जगह है, खेत है, खलियान है, सब अपने छात्र जो है स्टूडेंट लोग यहाँ साइड से आ जा रहे हैं।
1: तो आगे है क्या इरादा, क्या है मंशा, क्या आप लोग वहाँ पहुँच तो जाएंगे, करेंगे क्या?
12: अब देखिए आगे जाकर के पता चलेगा, यहाँ से तो बता नहीं सकते।
1: तो इन छात्रों के साथ दरअसल आगे कटीला रास्ता, तो क्या मुश्किल भरा रास्ता है, दुर्गम रास्ता है और उसके बाद भी ये जो छात्र हैं वो यहाँ से विधानसभा की ओर पहुँच रहे हैं। मार्च कहा था निकालेंगे, मार्च इन्होंने निकाला, प्रशासन की तैयारी थी, उन तैयारियों को ये जो जेंजी है ना इसे हर रास्ता बाईपास करना आता है। मैं लोकेंद्र कहूंगा थोड़ा सा यहाँ पर संभाले, कीचड़ है, थोड़ा सा यहाँ संभाल के आना होगा। और इन दुर्गम रास्तों से होते हुए छात्र सड़क बंद की तो गली मोहल्ले से निकल गए, मुख्य रास्ते बंद किए तो खेतों से निकल गए, खेतों के पास पहरा टीयर गैस और लाठी डंडे चलाए तो ये जो पगडंडियां हैं उनके रास्ते छात्र निकल गए।
0: That's Ashutosh telling us what's happening there. So these are basically farmlands on the sides, and a protester rightly pointing out what was the point of barricades when there is this area as well, this zone that connects to the assembly. But I have to credit to the protesters here. Listen to the tone and tenor, the language that they are using. Extremely respectable, putting their points
11: across. उसी रास्ते से आए हैं जिस रास्ते से ये छात्र यहाँ पहुँचे, जो आशुतोष बता रहे थे कि ये छापामार दस्ता है जेंजी का। हम तो जेंजी नहीं हैं, लेकिन दौड़ते हुए कम्पीट करने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए सामने वो विधानसभा है और ये पूरी सड़क विधानसभा की मुख्य सड़क है। इस पूरी सड़क पे इस वक्त छात्र हैं, ना कोई सुरक्षा है, ना कोई मार्शल्स हैं जो सुरक्षा में होते हैं विधानसभा के, सिर्फ यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं। और आगे एक अंतिम पॉइंट है जहाँ पे छात्र हैं, तो मतलब पुलिस के लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, लेकिन टीयर गैस इस्तेमाल रुक रुक करके किया जा रहा है। उसके बावजूद क्या ये छात्र पीछे हटेंगे? मुझे नहीं लगता है ये छात्र पीछे हटेंगे, क्योंकि छात्रों ने आज सुबह जब और 10:30 बजे से ये शुरू किया एजिटेशन और लगातार वो है यहाँ चलते रहे, कई पड़ाव आए, कई बैरिकेड्स टूटे, लाठी चार्ज, वाटर कैनन, टीयर गैस और यहाँ भी, लेकिन छात्रों ने जो अपना संकल्प था लगभग उसको पूरा किया। और सबसे बड़ी बात, उनकी तरफ से कोई प्रतिवाद नहीं, कोई अग्रेशन नहीं, कोई उस तरह की तस्वीरें देखने को नहीं मिली जो अमूमन ऐसे परिस्थितियों में दिख जाती हैं। तो ये बहुत ही दूसरे किस्म का आंदोलन कह लीजिए, प्रदर्शन कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, लेकिन हाँ छात्र यहाँ पहुँच चुके हैं। अब इसके आगे ये अंतिम बैरिकेड्स है, जहाँ मैं पहुँचा हूँ ये अंतिम बैरिकेड्स है राजीव। इसके आगे अभी छात्र नहीं गए हैं, इसके आगे विधानसभा, सामने विधानसभा, टीयर गैस यहीं पर छोड़ा गया और जो तमाम छात्र हैं वो दूसरी तरफ हैं। और इस तरफ में विधानसभा के सुरक्षा में लगे जो प्रशासनिक लोग हैं वो हैं यहाँ पे। जी राजीव,
0: happening on the ground, lathi charge, tear gas, water cannon. One wonders why did the state government or the Jharkhand police had to resort to this force, because the protesters had largely been peaceful. Let's dip into more reports coming in. Right, Raghuvar Das, former CM of Jharkhand, is joining me right now. रघुवर दास जी, किस तरह से आप ये देखते हैं सिचुएशन को, क्योंकि इतना पीसफुल तो रहा प्रोटेस्ट, फिर भी फोर्स यूज किया गया, क्या आप मानते हैं कि स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट जेन्युइन है, क्या सरकार और सुननी चाहिए इसको या सुन नहीं रही है तो क्यों?
13: देखिए, झारखंड के छात्र हाल के आंदोलन को अगर देखे तो झारखंड के छात्र एक उदाहरण पेश किए, कितना शांति प्रिय अनुशासित ढंग से विगत 15-16 दिन से रांची के रामदयाल सिंह मुंडा मैदान पे अपनी मांगों को लेकर, जो विगत 6 वर्षों से, जब से झारखंड में कांग्रेस जेएमएम आरजेडी की सरकार बनी, तब से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम ये सरकार कर रही थी। चाहे वो जेपीसी पीटी परीक्षा हो, चाहे अभी तक जो 6 वर्ष में 10 एग्जाम इस सरकार के द्वारा कंडक्ट किया गया था, GCC CGL, उनका मांग है छात्रों का कि ये सारे जो अनियमितता हुई है, जो भ्रष्टाचार हुए हैं, भर्ती घोटाले हुए हैं, इसका CID के बजाय CBI से जांच की मांग करें। क्योंकि ये मैं मानता हूं कि राज्य, देश का झारखंड राज्य में सबसे बड़ा भर्ती घोटाला है, क्योंकि जो बच्चों का एग्जामिनेशन का जिम्मेदारी TDPL, जिसको उत्तर प्रदेश सरकार ने ब्लैकलिस्ट की थी, और झारखंड सरकार के भी JCC CGL ने इसको ब्लैकलिस्ट की थी।
0: तो सर, इसी पर रघुवर दास जी, अभी जो है स्टेट CID ने, जो उनके फॉर्मर चेयरपर्सन थे हिंगियाद, उनको तो अरेस्ट कर लिया, वो कहेंगे ये क्या काफी एक्शन नहीं है?
13: नहीं, ये लीपापोती करने का काम कर रहे। जब विगत 15 दिन से हमारे छात्र इस बरसात के मौसम में, जहां सरकार ने तिरपाल बिछाने का भी परमिशन नहीं दिया, बिजली पानी नहीं दी, ऐसी स्थिति में आप लीपापोती करने का काम ना करें। क्योंकि छात्रों का कोई मंत्री और मुख्यमंत्री से इस्तीफा की मांग नहीं कर रहे, वो अपने उनके साथ हो रहे भविष्य के खिलवाड़ के साथ जो राज्य सरकार के द्वारा, चाहे जेपीसी के द्वारा, चाहे JCC CGL के द्वारा जिस तरह घटना घट रही है, अनियमितता हो रही है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा, उनको उसी मुद्दे पर वो चाहते हैं कि पूरे मामले का CBI की जांच। और इसीलिए आज घोषित कार्यक्रम के तहत 10 अगस्त को, आज ये जब आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से निकल रहे, तो किस तरह कटीले तार, उसके बाद पानी की बौछार, टीयर गैस, ये जो चाहते हैं बर्बर सरकार, निर्मम सरकार, ये चाहते हैं छात्रों के आवाज को दमनात्मक कार्रवाई करके हम दबा दें। तो लेकिन छात्र का आंदोलन दबने वाला झारखंड में नहीं है, और झारखंड के जनता और भारतीय जनता पार्टी भी विपक्षी भूमिका अदा करते हुए झारखंड के छात्रों के हित के साथ है।
0: रघुवर दास जी, मैं आपसे लेकिन ये भी सवाल पूछूं, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी से हैं, कि ऑपोजिशन इसमें और बढ़ चढ़कर इसलिए इतना बोल रही है क्योंकि आपकी पार्टी को फायदा होगा, आप ऑपोजिशन में है हेमंत सोरेन गवर्नमेंट के खिलाफ?
13: नहीं नहीं, हम छात्र के नाम पर राजनीति, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र नहीं है, लेकिन एक विपक्ष पार्टी की भूमिका अदा करते हुए, जो छात्रों का जिन-बिन मांग है, जो 6 वर्ष से छात्र न्याय के लिए भटक रहे हैं, एक विपक्ष की भूमिका लोकतंत्र में जो विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए उसकी अदा करते हुए हमको ये राजनीति नहीं करना चाह रहे। लेकिन हम तो सिर्फ सरकार से यही मांग मान रहे हैं कि इसको प्रतिष्ठा का विषय ना मानकर जो छात्र की 2-3 मांग है कि पूरे जो JPCA हो, CGL हो, इसकी पूरा CBI से जांच की अविलंब भारत सरकार को रेफर करे, ताकि ये आंदोलन समाप्त हो जाए। ये झारखंड के हित में भी है और झारखंड के छात्रों के हित में भी है।
0: एक आखिरी सवाल रघुवर दास जी, क्योंकि आप भी मुख्यमंत्री रहे हैं, आपने भी गवर्नेंस संभाला है, तो ये सवाल तो काफी स्टूडेंट्स आपसे भी पूछना चाहेंगे कि आपके टेन्योर में किस तरह से काम हुआ, उस टाइम काफी एग्जामिनेशन नहीं हुए, क्या आपने अपनी तरफ से ठीक काम किया था?
13: निश्चित रूप से मेरा ये सत्तारूढ़ दल के को चुनौती है। 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब डबल इंजन की सरकार बनी,
0: जी, जी,
13: हमें सेवा करने का मौका मिला, तो हमने 5 साल के अंदर पारदर्शी और निष्पक्ष ढंग से एग्जामिनेशन लिया। कोई भी आकर आज हमारे जो सरकारी नौकरी में है, क्योंकि हमने 5 साल के अंदर 1,33,000 सरकारी नौकरी दी थी, जिसमें 52,000 टीचर की नियुक्ति, 26,000 दरोगा की नियुक्ति, उसके बाद बदरक्षी की बहाली, स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर नर्स की बहाली, नगर विकास विभाग में सिटी मैनेजर, सात को आज का कोई भी जाके, और आज वो थाना में पोस्टिंग है, स्कूल में टीचर पढ़ा रहे, कोई भी जाके पूछ सकता बिना पैसे बिना पैरवी का।
0: जी,
13: गरीब गरीब घर का आदिवासी, 363 दरोगा आदिवासी बने थे, 5 साल कोई दाग नहीं लगा सकता।
0: रघुबर दास जी, सवाल देखिए यही उठ रहा है कि क्यों जेपीएससी एग्जाम नहीं होता टाइम पे, या जो वैकेंसीज होती है वो टाइम पर नहीं उसके एग्जाम हो रहे हैं। झारखंड के जवान जो लोग हैं वो यही तो पूछ रहे हैं कि आपकी सरकार हो या हेमंत सोरेन सरकार हो, ये एग्जाम टाइम पे क्यों नहीं होते और ट्रांसपेरेंसी से क्यों नहीं होते हैं?
13: हमारी सरकार के समय ट्रांसपेरेंसी और समयबद्ध हमने नियुक्ति, 5 साल के अंदर 1,35,000 नौकरी देना कोई छोटा काम नहीं है, और कोई दाग नहीं लगा, ना विपक्ष, कोई विपक्ष अभी के जो सत्ता पक्ष है वो विपक्ष भी दाग नहीं लगा पाए।
0: अब आप कैसे चाहेंगे इस तरह हेमंत जी?
13: कारण उसका मैडम पहले कारण समझ लीजिए, अगर परीक्षा देने वाला एजेंसी साफ सुथरा रहे, हर परीक्षा का कैलेंडर नियुक्त हो, कोई आरोप प्रदोप में लगे, लेकिन इस सरकार ने तो ब्लैकलिस्टेड कंपनी, जो परीक्षा लेने वाला ब्लैकलिस्टेड कंपनी
0: TDPL
13: किया, और आश्चर्य का विषय है कि उनके जो पदाधिकारी है अभय तिवारी, स्वयं नौकरी ले लिए, अपने भाई को नौकरी दिला दिए, अपने भाभी को नौकरी दिला दिए, और अभी आपने देखा आनंद फानंद में छात्रों को भ्रमित करने के लिए जो जेपीसी के चेयरमैन थे उनको अभी गिरफ्तार किए। तो ये लिफा पोती का काम छोड़ के प्रतिष्ठा का विषय ना बना के सरकार से मेरी मांग होगी, झारखंड के छात्र के हित में, राज्य के हित में, अविलंब मामले को सीबीआई को जांच के लिए रेफर।
0: तो अब कैसे रघुवर दास जी, कैसे टाइम पर एग्जाम हो, क्या कैंसिल होना चाहिए, नया एग्जाम कैसे होगा, क्योंकि ये तो भविष्य की बात है झारखंड के जो यूथ है उनके लिए, तो क्या कदम उठाने चाहिए सरकार को?
13: निश्चित रूप से कदम अविलंब सीबीआई को जांच दे और एग्जामिनेशन में सक्षम रिफॉर्म्स करे और सक्षम एजेंसी को नियुक्त करे और साथ ही साथ हर परीक्षा का कैलेंडर नियुक्त करे, समय पर परीक्षा हो, समय पर रिजल्ट निकले, तभी सरकार पर छात्रों का विश्वास जमेगा, अन्यथा ये छात्र जिस तरह आक्रोश में है, और ये आक्रोश एक दो एग्जाम को लेकर नहीं है, ये 6 साल में 10 एग्जाम में अनियमितता हुई है, भ्रष्टाचार हुई है। अब बोलिए ओमार सीट लेके कोई नेपाल में भर रहा, कोई बंगाल में भर रहा, इस तरह की घटना झारखंड में हुई, इसीलिए मैंने कहा कि देश का सबसे बड़ा भर्ती घोटाला अगर कहीं हुआ तो वह झारखंड में है।
0: चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।
13: आश्चर्य की बात है कि सरकार को समर्थन देने वाली कांग्रेस पार्टी जो गूंज के नाम पर देश देश में युवकों को भड़काने का काम कर रही है, उसकी सरकार है, और एक तरफ तो माननीय नेता प्रतिपक्ष आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं कि मैं छात्रों के साथ हूँ, तो छात्रों का मांग अगर ये सरकार नहीं मान रही है तो सरकार से समर्थन वापस ले।
0: आप कहते हैं राहुल गांधी को यहाँ भी आना चाहिए, झारखंड प्रोटेस्ट पे भी, और मिलना चाहिए और ऐसी धरना करना चाहिए।
13: निश्चित रूप से आप जब हर जगह जा रहे हैं तो झारखंड जहाँ आप सरकार को समर्थन दे रहे हैं, आपके समर्थन से सरकार चल रही है, और आप आंदोलन को समर्थन भी कर रहे हैं, तो कैसा समर्थन है, दोहरी नीति क्यों?
0: बहुत बहुत शुक्रिया रघुबर दास जी। यस, फॉर्मर झारखंड चीफ मिनिस्टर, यस, एंड ही इज आस्किंग वेयर आर द ऑपोजिशन लीडर्स, वेयर आर द कांग्रेस लीडर्स, एंड सेइंग सोरेन गवर्नमेंट नीड्स टू डू मच मोर। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आई हैव बिग न्यूज कमिंग इन, झारखंड एग्जामिनेशन प्रोटेस्टर्स आर नाउ टेकिंग डिफरेंट रूट्स, दे आर राइट देयर एट द असेंबली प्रेमिसेस, देयर हैज बीन बेटन चार्ज, देयर हैज बीन टियर गैस, देयर हैज बीन फायर, मीनवाइल द हाउस हैज बीन एडजर्नड फॉर द डे, एंड दिस रिमेंबर इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस, while of course the opposition parties are stepping up ante against the Soren government, against the JMM. Different visuals on your screen, water cannons being used and lathi charge and more. Shashi Bhushan, over to you.
14: कर सकते हैं, वहां वो मीडिया भी मौजूद है, हम भी मौजूद हैं, और बाकी जो सोशल मीडिया कवर करने वाले हैं वो भी मौजूद हैं, छात्र भी मौजूद हैं, तो अपने आप में ये एक अभूतपूर्व स्थिति है राजीव, जो पहले कभी नहीं देखी हमने। और अपने सहयोगी नदीम से कहें थोड़ा किनारे हो जाए, क्योंकि गाड़ियां जो हैं वो प्रशासनिक अधिकारियों की जा रही हैं, और तो ये अभी भी छात्र जो है ना वो जमे हुए हैं यहाँ पे, छात्र हटे नहीं हैं यहाँ से, उनकी जो डिमांड है उस डिमांड के कॉल को लेकर के, उनके पूरे होने को लेकर के लगे हुए हैं।
0: शिभूषण इज टेलिंग अस अबाउट द नेक्स्ट स्टेप, about what they are planning to do. Look at that, the force of the water cannon being used, the pushback by the forces, the violence being used. And remember, one perspective here is that you cannot be allowed to touch the assembly gates or the parliament, especially when a session is on. That cannot be permitted. It is a VVIP security zone. Number two, many would ask if the protesters, to their credit, were peaceful, democratic all this while. Why would it then be the action that they have seen? Why were water cannons and police force used? Why couldn't the police also manage to speak to the senior leaders or the spokespersons and ensure that restraint is followed? Because to the credit of the student protesters here, there was no stone pelting, there was no violence, there was no hitting or assaulting the Jharkhand police or the CRPF. So what was the need for the bait and charge? These are the visuals on your screen. And we'll continue to bring you about what precisely is the situation on the ground as well. Only one big question remains. If the government does not reach out to the protesters, what will the Gen Z of Jharkhand do next? What is their plan of action? I'll try and find answers for that from on the ground. Our reporters are telling us what's been happening. From 4 p.m., I'll return with the latest from Jharkhand after the break. Thank you.
15: You are watching India Today.
16: सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने.
17: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ.
18: सोच बदलो और बैंक भी.
19: द फैक्ट इज दैट अ नंबर ऑफ यंग पीपल आर फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड विद द सिस्टम एंड एक्सप्रेसिंग द एंगर एंड लुकिंग फॉर पोटेंशियली न्यू ऑल्टरनेटिव्स and thereby there's a certain tiredness with traditional politics. People feel strongly that the system is not delivering. So that's the message, I think, and thereby they're looking for new options.

देखिए, परिसीमन के बहाने ये पूरे देश के अंदर अराजकता फैलाना चाहते हैं। देश के अंदर अगर अलगाववाद की भावना पैदा होगी तो ये देश की एकता के लिए और अखंडता के लिए खतरा होगा। अगर ये देश के हित की बात सोचते तो ये कभी इसके बारे में नहीं सोच सकते थे, क्योंकि 2027 के सेंसस के ऊपर अगर परिसीमन लागू होता है तो उत्तर भारत की सीटें बढ़ेंगी और दक्षिण भारत की सीटें घटेंगी, जो एक डिसबैलेंस होगा। उस डिसबैलेंस से एक भावना जागृत होगी और वो भावना देश के लिए बहुत खतरनाक होगी।

0: Let's immediately go to Jharkhand, where in Ranchi, the protests have snowballed into sudden violence that's been reported. There were some plastic bottles that were thrown at the cops. In turn, there has been tear gas, a blatant charge by the police. Police also, adding here, we are told, have been pushing the student protesters away. Students have been largely peaceful through this protest. I go across now to Shashi Bhushan, because Shashi Bhushan has been reporting from different areas. Shashi, abhi kahan par hain protesters? Kafi jo inme se the, ye assembly ke andar tak pahunch gaye the, premises ke. Abhi kya situation hai?
1: बिल्कुल प्रीमिसेस के अंदर तो है और देखिए हम वहीं पर खड़े हैं. हालांकि जो प्रशासनिक अधिकारी है वो थोड़ी देर पहले ब्रीफ कर रहे थे कि आज विधानसभा की कार्यवाही खत्म हो चुकी है तो आप यहाँ से हट जाए, लेकिन जो प्रोटेस्टर्स हैं वो हटे नहीं है. और एक और तस्वीर जो सबसे दिलचस्प आपको दिखाता हूँ, देखिये ये किनारे की जो खाली जगह है ना, क्योंकि सामने बैरिकेड्स लगे हैं तो किनारे की जो खाली जगह है उससे जगह बनाते हुए प्रोटेस्टर्स जो है वो आगे, देखिए तस्वीर अधिक जगह में थोड़ा दाहिनी तरफ और दिखते हैं विधानसभा के एकदम ठीक सामने पहुंच गए हैं. काफी दूर पे एक ऊंचाई वाली जगह पे वो पहुंच चुके हैं. वहां से उनकी क्या स्ट्रेटजी होती है, हालांकि बहुत आसान नहीं है वहां से जम करके उस इलाके में पहुंचना. और विधानसभा की कार्यवाही खत्म हो चुकी है तो मंत्री विधायक भी यहां से निकल चुके हैं. लेकिन
2: और विधानसभा की कार्यवाही खत्म हो चुकी है तो मंत्री विधायक भी यहां से निकल चुके हैं. लेकिन हाँ, अपने आप में एक कह सकते हैं कि प्रशासन की जो तैयारी रही आज की, वो तमाम तैयारियां धारी की धारी रह गई. वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, टीयर गैस का हुआ, लाठी चार्ज भी थोड़ा बहुत बल प्रयोग किया पुलिस ने, प्रशासन ने, लेकिन सब कुछ बेकार. और यहाँ पर आकर के जो घेराव करना था, जो कॉल किया था छात्रों ने, वो घेराव करने में सफल रहे हैं. जी
0: शशि, आप अगर हमें थोड़ा सा ही बता पाए जहाँ पर आप खड़े हैं किस तरह का एरिया ये है, कैसे इतनी आसानी से अगर यहाँ पर पुलिस खड़ी है तो साइड से निकल जाते हैं स्टूडेंट्स?
2: देखिए ये पूरा एरिया बहुत किलेबंदी वाला है और ये विधानसभा परिसर है. जो छात्र नारेबाजी कर रहे हैं वहां पे मेरा कैमरा है, लेकिन हम थोड़ा पीछे दिखाएंगे. ये देखिए सामने विधानसभा, पीछे बिल्कुल ठीक पीछे ये विधानसभा है. यहाँ पर सरकार बैठती है, विपक्ष बैठता है और इस पूरे इलाके को प्रतिबंधित क्षेत्र माना जाता है. बगैर प्रवेश पत्र के आप इस इलाके में नहीं आ सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पहुँचे हैं. राहत की बात ये रही कि उनको पहुँचने में शाम हो गया, मतलब अभी का वक्त हो गया, और इस वजह से आज की कार्यवाही खत्म हो गई. लेकिन आप जहाँ तक जाइए आगे तक, आप देखिए विधानसभा गेट संख्या 1, 2, 3, 4 ये लिखा हुआ है और अंदर जो विधायक हैं वो बैठते हैं, कार्यवाही चलती है, प्रशासन के लोग यहाँ मौजूद हैं. अब एक बार फिर से थोड़ा सा मूवमेंट हो रहा है. अब किस बात को लेकर के ये देखना होगा, प्रशासनिक महकमे में हलचल है. लेकिन जो प्रोटेस्ट करने के लिए छात्र निकले थे वो विधानसभा परिसर में प्रवेश कर चुके हैं. ये अपने आप में एक बड़ी कहानी बताता है जो झारखंड में छात्र आंदोलन चल रहा है पिछले 17 दिनों से उसको लेकर के. जी
0: शशि, एक आखिरी सवाल, सरकार क्या रीच आउट नहीं करेगी अब? अगर इतना अभी तक नेगोशिएशन किया तो आखिरी एक और राउंड में क्यों झिझक रही है सरकार?
2: देखिए कल जो 6 घंटे की मीटिंग हुई थी सरकार और जो एजुकेशन करने वाले जो रिफॉर्म्स चाहते हैं स्टूडेंट्स उनके यूनियन के बीच, उसमें 6 घंटे में कई बातों पे सहमति बनी. जैसे जेपीएससी के अंदर जो ईडी की जांच है वो हो, उसको लेकर के सहमति बनी. लेकिन मुख्य जो मांग है जो जेएससी के अंदर है, सिजिल की जो परीक्षा है उसको कैंसिल करना और उसकी सीबीआई जांच की मांग, वहां पर बात अटक गई थी. सरकार के 3 मंत्रियों ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि सीबीआई जांच की अनुशंसा सरकार नहीं करने जा रही है, सरकार के रुख में, सरकार के स्टैंड में कोई बदलाव नहीं है. और यही वजह रही कि आज दिन भर रांची की सड़कों पर हंगामा होता रहा, प्रदर्शन, ट्रैफिक जाम, सब कुछ झेला है रांची ने. लेकिन एक तो धैर्य जो रहा वो छात्रों का वो काबिले तारीफ रहा, लेकिन उसके बाद प्रशासन ने भी बहुत तरीके से काम किया, वरना आज का दिन जो है वो बहुत बिगड़ सकता था.
0: ठीक, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात आप बता रहे हैं शशि भूषण, दैट रिस्ट्रेन वाज शोन बाय बोथ द साइड्स, बाय द स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स, बाय द पुलिस एज वेल, बट इवेंचुअली द फोर्स वाज यूज्ड. नाउ द एडमिनिस्ट्रेशन इज क्लेमिंग दे हैड टू रिसॉर्ट टू इट बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर वाज गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल. हाउएवर ऑफ कोर्स द क्वेश्चन रिमेन्स, व्हाई कुडंट द फोर्सेस शो मोर रिस्ट्रेन? because till now, to credit the protesters, they had been non-violent and peaceful. So what is the latest? Ladies and gentlemen, in case you missed what happened through the afternoon, hundreds of thousands of protesters gathered and were marching toward the assembly premises. Now, they marched with slogans, with tricolour in their hand, with posters as well. They are demanding the cancellation of the public service examination of the state and also a CBI investigation into it, because they say there have been paper leaks and it's not transparent. However, by the time they jumped at least three layers of barricades and reached the fourth, that is when this happened. There was water cannon used, baton charge and tear gas as well to disperse the advancing student protesters. Multiple barricades were breached first, and the cops first deployed water cannons before resorting to lathi charge to disperse the protesters. Students can be seen on camera running toward the assembly, climbing over the barricades. That's when police action initiated amid the escalating protest. Devendranath Mahato, he's one of the leaders who's at the forefront of the student protest, joined the march on a stretcher after about 9 days of hunger strike and a significant water loss. He held up the portrait of B.R. Ambedkar, of Shibish Soren and others, and Mahato accusing the government of pushing the state toward anarchy, slamming the Soren government.
3: गांव छोड़ब नहीं हम जंगल छोड़ब नहीं गाय माटी छोड़ब नहीं लड़ाई छोड़ब नहीं
4: लड़ाई छोड़ब नहीं मतलब लड़ना छोड़ेंगे नहीं।
5: देखिए ये झारखंड सरकार गांव खाली कर कर जंगल बेचकर कोयला बालू अबरक जहां है बिना मुआवजे का वो जमीन
6: ये चिंता का विषय है और प्रशासन के भी हाथ पैर मानिए तो फूले हुए हैं। मैंने दर्जनों से कहीं ज्यादा इस तरह के प्रदर्शन देखे हैं और समय के साथ वो कैसे बदलते हैं उनको भी देखा है। अभी भी कह रहा हूं कि छात्र अनुशासन में है, रेस्ट्रेन पुलिस जो कहते हैं ना, कि झारखंड पुलिस ने मिसाल कायम की है कि हजारों की संख्या में जो छात्र आए हैं उनसे कैसे निपटना है। उन्होंने फिर भी बहुत एक मिसाल कायम की है। उन्हीं पुलिसकर्मियों के लिए देखिए वहां ताली भी बज रही है तो बैनर पोस्ट ये देखिए, ये आप देखा आपने कैसे बीच में जूते चप्पल भी, तो कई सारे ऐसे तत्व भी हैं। ये देखिए कोई पानी की बोतल भर के भेज रहा है, कोई चप्पल भेज रहा है, कोई लकड़ियां फेंक रहा है। और जब ये प्रशासन पुलिस बलों की ओर जाते हैं तो वहां से भी जवाबी का ये देखे, देख रहे हैं आप, ये जूते चप्पल यहां से फेंके जा रहे हैं। अब ये कुछ छात्रों की भीड़ में कौन से तत्व जब आ जाते हैं ये अपने आप में एक समस्या जरूर खड़ी हो जाती है। लेकिन बाकी अगर 180 डिग्री में देखेंगे तो ज्यादातर छात्र हैं बैनर पोस्टर लेकर के वो नारेबाजी कर रहे हैं, नाच गा भी रहे हैं। जेन जी का जो प्रदर्शन होता है वो प्रदर्शन के रंग दिखाई दे रहे हैं। स्पाइडरमैन बैटमैन से लेकर के पूरी की पूरी मार्वल सीरीज यहां दिखाई दे जाएगी। लेकिन डेडलॉक बना है इस कन्फ्रंटेशन पॉइंट पर कि क्या पुलिस यहां से अब छात्रों को आगे जाने देगी। ऐसा भी नहीं कि गए नहीं है, मैं पुलिसकर्मियों के पीछे सैकड़ों छात्रों को देख रहा हूं जो पहले ही पहुंच चुके हैं उस रेस्ट्रेन की बदौलत, क्योंकि चार्ज नहीं हुआ लेकिन जो हल्का बल प्रयोग किया कि वो पीछे रखें। देखिए फिर एक बार आह्वान किया जा रहा है। दरअसल यही होता है, जैसे अचानक वो जोश में आते हैं आह्वान करते हैं, छात्र आगे बढ़ते हैं, दबाव बढ़ता और फिर यहां से रोक टोक की जाती है। छात्र कहां तक जाएंगे? और दरअसल ये कि अब वो लीडरशिप नहीं है, वॉलंटियर्स भी कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं तो संख्या बहुत ज्यादा है। और जब इस तरह की संख्या बल बढ़ रही है तब इस प्रदर्शन को कैसे नियंत्रित करेंगे ये अब छात्र संगठनों के लिए भी चिंता का विषय होना चाहिए। और प्रशासन तो खैर अपने आप में उसके हाथ पैर तो मैं फूले हुए दिखाई दे रहे। देखिए पानी की बोतलें, चप्पल, जूते, डंडे सब हवा में उड़ते हुए अब दिखाई दे रहे हैं। अब उसके बाद भी वहां पर महिला पुलिसकर्मी, आईआरबी और जो पुलिस है उनके जवान डटे हुए हैं जस के तसम। फिर एक बार वो आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर ये डेडलॉक बना हुआ है। एक डेडलॉक उस फैसले को लेकर के है, मांगों को रहे, और एक डेडलॉक विधानसभा से सिर्फ 100 मीटर की दूरी, विधानसभा का द्वार समझ लीजिए कि 100 मीटर की दूरी पर जहां पर ये छात्र, और ऐसा भी नहीं है करीबन सैकड़ों छात्रों को मैं देख रहा हूं जो दूसरी तरफ पहुंच चुके हैं, आगे भी बैरिकेडिंग पर रुका है। लेकिन यहां पर अब जो भीड़ बढ़ रही है इसे आगे शाम होते होते कैसे संभाला जाएगा ये अब अपने आप में चिंता का विषय है। फाइनली द प्रोटेस्टर्स हैव बीन एबल टू मार्च, विल हैव टू लुक इन द रन ऑन द अदर साइड, रन ऑन द अदर साइड। Okay, so they are very fastly. We'll have to make a little distance from them because now they are Anjali, they're heading on the other side. So we'll have to. Okay, so already the set of dozen of these protesters managed to reach. They have reached the barricade. Look at this. Oh, highly excited these protesters, since they're now they will march and they are marching. It's very difficult for the police official. And another 1.5 kilometer, hardly I think it would take. 5 to 10 minutes for them to make it through. So I'll take a little distance so we can show you the larger picture. It has been very difficult for the police officials to control them. And again, no violence, no aggression. All it was only this, since they announced the little push to the barriers, barricades, and they started marching. The protesters have gone literally out of control now. And it is very difficult for the administration to control them. However, they're also asking them to little slow down. They will organize a protest. And now, even those who are marching forward further, they have been slowing them down. That since they have to walk together. And 100 meters from now, there will be another barricade with water cannon. This is the second barricade where we are. Is around 750 meters new assembly where the students have announced to march. The barricadings, let's take you to the live images here. The students as they are marching, any moment it will collapse. Since they announced they will go to Vidhan Sabha, a few of their students, leaders who were on the protest, they have also reached here. So now the march as it begins, the core committee leaders are also here. They are literally running, you know, since it looks like the police personnel are also escorting them. The second barricade have been breached. They are way too. And from here to another 100 meter, there is a third layer. That's where we see the water cannons and other effective machinery have been deployed. But these students are maintaining high restraint. So they're saying no provocative slogan. They're not even doing any confrontation with the police officials. They said they want to go ahead where they see. Look at this. When they're being stopped, they're even stopping. They're slowing down their speed. So it's a democratic process. Remember when the government itself supports the protest, the chief minister himself said that the students are exercising restraint and their democratic process, democratic rights of a fundamental protest. And these students, I mean, 16th day, there were talks. When it rendered inconclusive, final demands, all the demands were not met. They announced the march and they are marching. The moment police announced to stop, they stopped. And these volunteers, this is how the volunteers are also, you know, maintaining the restraint. These volunteers are actually helping out that these students will not go. फिर से वाटर कैनन शुरू कर दिया है और जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने डांस करना शुरू कर दिया है सभी छात्र लुक अब जाकर के छात्रों को पीछे हटाने की कोशिश की जा रही है लेकिन ये स्टूडेंट्स यहाँ हटने को तैयार नहीं है बहुत सारे मजा ले रहे हैं वो छाता लेकर के आ गए स्टूडेंट छाता लेके आ गए हैं हालांकि वाटर कैनन का फोर्स मैंने इस्तेमाल देखा है इस तरह तो नहीं होता इससे ज्यादा फोर्स होती है दरअसल रिस्ट्रेन किया जा रहा प्रशासन की ओर से भी कि बहुत ज्यादा बल प्रयोग न किया जाए इसीलिए लाठी डंडे नहीं और वाटर कैनन ऐसा लग रहा है कि इनके लिए वो कोई वाटर पार्क का मौका है दिस इज लिटरली लुकिंग लाइक अ वाटर पार्क एंड द स्टूडेंट्स आर लिटरली एंजॉयिंग अब सिर्फ कमी ये है को भी वो देखिए कुछ छाता लेके आ गए बचाने के लिए फोन लेकर के और क्या आपने ऐसा प्रदर्शन कभी उम्मीद की होगी ये सिर्फ झारखंड में हो सकता है ये जेन जी है ये जनरेशन जी है जो ये कोशिश कर रहे हैं अब ये बैरिकेड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और बैरिकेड के साथ साथ दरअसल ये भी कोशिश हो रही है कि इन छात्रों को यहां से आगे ना बढ़ने दिया जाए जैसे ही प्रशासन टीयर गैस चलाने की कोशिश में था प्रदर्शन देखिए फिर से वाटर कैनन शुरू हो गया फिर से पानी चलाना शुरू कर दिया यहां पे फिर से वाटर कैनन चलाना शुरू कर दिया है प्रदर्शनकारियों पर दरअसल टीयर गैस चलाने की तैयारी थी लेकिन तुरंत ही उनको पुलिस ने रोक दिया प्रदर्शनकारी आगे पहुंचे और उन्होंने अधिकारियों को घेर लिया और अब जो है फिर से वाटर कैनन चल रहे देखिए जिस बैरिकेड पर डेडलॉक था ये देखिए ये डांस है ये कैसा प्रोटेस्ट है दे आर प्रोटेस्टिंग एंड दीज आर प्रोटेस्टर्स आर लिटरली डांसिंग ऑन द वाटर कैनन नाउ वी सी द फोर्थ फिफ्थ बैरिकेड विद द बार्ब वायर दे रिमूव्ड एवरीथिंग व्हेन द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स वर प्रिपेयरिंग टू They immediately cornered those officers. They mobbed literally to those officials and they ran away.
7: No, they are not at all resorting to violence. They have already aptly said that they will take out a peaceful march to assembly and their aim was to reach to the assembly. They have managed to reach to the assembly. Now they are raising slogans. They are singing different local dialect. They are singing songs, but they have not resorted to any kind of violence, and they are singing a local song. Gaon chhorab nahi, ham jungle chhorab nahi. I'll take the mic to them.

0: So you can see they are in upbeat mood. Their josh is really high, and they have already said that until their demands are conceded, they are not going to budge. They will continue with their agitation. They will continue with their steer.
1: The सरकार हमारे आवाज को कुचलने के लिए tear gas का, water cannon का, आंसू गोला का प्रयोग कर रही है, जो निंदनीय है. सरकार डर गई है, कायर सरकार है, और सरकार जब जब डरती है ये पुलिस को आगे करती है, लाठी गोली बंदूक वाटर किरण का प्रयोग करती है. अभी अभी सरकार से क्या बात करेंगे, और तीन राउंड बात हो गया, अब कोई बात नहीं करना है. हमारी मांग पूरी करे, नहीं तो ये छात्र सरकार के मुख्यमंत्री के कुर्सी तक पहुँच जाए. मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि जन्मदिन के मौके पर छात्र को कुछ ऐसा करे कि दिल्ली का जंतर मंतर की तरह कुछ अनहोनी हो. ऐसा गिफ्ट छात्र को ना दे जिसके बदन पे खून निकले, जिसके माथा पे चोट आए, और ये भीड़ और उग्र हो जाए.
2: कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है.
1: गिरफ्तारी ठीक है, वो कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन आज हेमंत जी का जन्मदिन है. जन्मदिन के मौके पर ऐसा तोहफा न दे जो जिससे खून बहे, जिससे अराजकता फैले, जिससे आक्रोश. ये शांति है, इनको शांति पूर्ण रहने दिया जाए.
3: हम लोग भूखे प्यासे आए हैं. उत्पाद सिपाही का एग्जाम सर जब दौड़ लिया गया था, तब दौड़ के बाद कम से कम 60 से 65 अभ्यर्थी की मृत्यु हो गई थी, लेकिन सरकार ने लिपापोती करके उसका दबा दिया. उसके बाद कितने भी आंदोलन लड़ लड़ के हम लोग एग्जाम को कंडक्ट करवाए, कितने बार तारीख को चेंज किया गया, लेकिन लिया गया उसी दिन धांधली हो गया जिस दिन एग्जाम सेंटर से हम लोग निकले. 166 अभ्यर्थी पकड़ा गए.
4: हम लोग एक शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, इसमें ना कोई हो हल्ला है, ना किसी पार्टी के खिलाफ नारा है, ना किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नारा है. हम बस अपने मांगों के लिए लड़ रहे हैं.
5: जब तक वो CBI जांच नहीं कराएंगे या फिर कुछ फैसला नहीं लेंगे, तब तक हम लोग इस पे डटे रहेंगे. और ये मेरे पोस्टर का मतलब ये था कि हम लोग स्लैब को कोई फिल्टर नहीं जो हमारा फ्यूचर वो स्किप कर दे, उनको ध्यान देना चाहिए और जांच भी करना चाहिए. इसलिए हम लोग आए और इसी पे डटे रहेंगे जब तक ये पूरा ना हो. तो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनको देखे, वो कितना दिन तक भूखे बैठे रहेंगे, और इतना तेज बारिश में, इतना देर धूप में, इतना हिम्मत है तो आके गवर्नमेंट देख के ले एक बार, एक दो दिन बैठ के वहाँ पे देखिए हम लोग पे ऊपर क्या बीत रहा है. आप देखिए आके, बात तो जरूर सुनना चाहिए.
6: जिनका पोटेंशियल जो एनर्जी है वो पूरा लगना चाहिए देश के डेवलपमेंट में, लेकिन आज कहाँ लग रहा है, प्रोटेस्ट में. हम प्रोटेस्ट के लिए नहीं बने हैं, और इसके लिए गवर्नमेंट ने भी हमारे लिए क्या किया है, वेपन्स डिप्लॉयमेंट करके रखे हैं वहाँ.
7: भरोसा है कि जीत.
6: हाँ बिल्कुल. और जो वहाँ पे है फेंसिंग, कहा जा रहा है कांटे वाली फेंसिंग है. तो मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ, हमें एक कबीर दास जी की पंक्ति याद आती है कि जो तो को कांटा बोवे ताही बो को फूल, तो ही बो के तो ही फूल के फूल है बाको है त्रिशूल. आप कांटा बोइए और हम जो है वो फूल बोएंगे.
8: अभी बैरिकेडन सब पार करके हम पार करेंगे, विधानसभा तक जाएंगे.
9: रोक रहे हैं,
8: ये जीवन में बैरिकेड लगा दिया है, यहाँ भी रोकना चाहते, रुकने वाले हम लोग नहीं.
10: Latest news that's coming in is that the police are now appealing to the student protesters to return home, because the session of the assembly has also now been adjourned for the day, and there's no point, they'll anyway not be allowed to go inside the assembly premises. What we have latest is the police administration appealing to the student protesters via loudspeakers, stating the session has ended, they need to now return. But can we say that the student protesters have largely been successful here and sadly have been lathi charged despite them being peaceful? Let's listen into what the police announcements are sounding like.
11: आज सभी विद्यार्थी का समाप्त हो गया है. आज सभी विद्यार्थियों से आप लोग अपने अपने घर चले जाएं. आप लोग शांतिपूर्ण अपने अपने घर चले जाएं. आज का समाप्त हो गया है. आप सभी विद्यार्थियों से आप लोग अपने अपने घर चले जाएं. आप लोग शांतिपूर्ण अपने अपने घर चले जाएं. आज का समाप्त हो गया है. आप सभी विद्यार्थियों से आप लोग अपने अपने घर चले जाएं. आप लोग शांतिपूर्ण अपने अपने घर चले जाएं.
10: The state opposition, the Bharatiya Janata Party, is charging now at the Soren government. They're upping the ante. They are in support of the student protesters, and Amit Malviya is one leading the charge, and BJP stating, after the lathi charge tear gas shells being fired at the students who have been peacefully protesting, Hemant Soren government will have to answer for this. Rahul Gandhi, Arvind Kejriwal and their cockroaches too, who do politics in the name of students in other states, and here, of course, referring to indirectly to Delhi. but are silent on the so-called suppression being carried out against students in Jharkhand. They should drown in shame, says Amit Malviya. Let's listen into other BJP voices as well. Earlier, I spoke to former Jharkhand Chief Minister Raghubar Das also.
7: We have Babulal Marandi, who is an MLA, on the phone line with us. Sir, इस वक्त इतने सारे स्टूडेंट्स असेंबली के बाहर खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी बात सुनी जाए, एग्जाम पेपर जो लीक हुआ है उस पर कुछ कदम उठाए जाए. क्या कह रही है सरकार, क्यों नहीं सुन रही सरकार?
9: बात तो मैं ये कहूंगा कि 12-14-15 दिन से लड़के धरना पर, उपवास पर बैठे हुए, अनशन पर बैठे हुए. सरकार बच्चों को सिर्फ इधर से उधर टहला रहे हैं. और यहाँ पेपर लीक का मामला नहीं है, यहाँ बच्चों की जॉब को बेचा गया है. JCC ने भी बेचा है, JPSC ने भी बेचा है. JCC ने आचार्यों की नियुक्ति को बेचा है. JCC ने CGL के परीक्षा में वहां गड़बड़ धांधली वहां किया है, वहां नौकरी को बेचा है. JCC ने एक्साइज विभाग के सिपाहियों की बहाली में गड़बड़ घोटाला किया है. JCC ने माध्यमिक PGT के शिक्षकों की नियुक्ति में घोटाला किया है. GPSC ने 11, 12, 13वां GPSC में भी गड़बड़ किया है, 14वां GPSC में भी गड़बड़ किया है. इसलिए छात्रों की यही मांग है, उसको रद्द करे और पूरे मामले को CBI से जांच कराओ. यही तो यहाँ के नौजवान मांग कर रहे हैं, यहाँ के छात्र मांग कर रहे हैं, और झारखंड की जनता यही मांग कर रही है. इसलिए यहाँ पेपर लीक का मामला नहीं है, यह मामला है नौकरी को सरकार ने बेचा है.
10: रघुवर दास जी, किस तरह से आप ये देखते हैं सिचुएशन को, क्योंकि इतना पीसफुल तो रहा प्रोटेस्ट, फिर भी फोर्स यूज किया गया. क्या आप मानते हैं कि स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट जेन्युइन है? क्या सरकार और सुननी चाहिए इसको, या सुन नहीं रही है तो क्यों?
12: देखिए, झारखंड के छात्र हाल के आंदोलन को अगर देखे तो झारखंड के छात्र एक उदाहरण पेश किए, कितना शांति प्रिय अनुशासित ढंग से विगत 15-16 दिन से रांची के रामदयाल सिंह मुंडा मैदान पे अपनी मांगों को लेकर, जो विगत 6 वर्षों से, जब से झारखंड में कांग्रेस JMM RJD की सरकार बनी, तब से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम ये सरकार कर रही थी. चाहे वो JPC परीक्षा हो, चाहे अभी तक जो 6 वर्ष में 10 एग्जाम इस सरकार के द्वारा कंडक्ट किया गया था, JCC CGL, उनका मांग है छात्रों का कि ये सारे जो अनियमितता हुई है, जो भ्रष्टाचार हुए हैं, भर्ती घोटाले हुए हैं, इसका CID के बजाय CBI से जांच की मांग करें. क्योंकि ये मैं मानता हूँ कि राज्य, देश का झारखंड राज्य में सबसे बड़ा भर्ती घोटाला है. क्योंकि जो बच्चों का एग्जामिनेशन का जिम्मेदारी TDPL, जिसको उत्तर प्रदेश सरकार ने ब्लैकलिस्ट की थी, और झारखंड सरकार के भी JCC CGL ने इसको ब्लैकलिस्ट की थी.
10: तो सर, उसी पर रघुबर दास जी, अभी जो है स्टेट CID ने, जो उनके फॉर्मर चेयरपर्सन थे हिंगियाद, उनको तो अरेस्ट कर लिया. वो कहेंगे ये क्या काफी एक्शन नहीं है?
12: नहीं, ये लीपापोती करने का काम कर रहे. जब विगत 15 दिन से हमारे छात्र इस बरसात के मौसम में, जहां सरकार ने तिरपाल बिछाने का भी परमिशन नहीं दिया, बिजली पानी नहीं दी, ऐसी स्थिति में आप लीपा पोती करने का काम ना करें. क्योंकि छात्रों का कोई मंत्री और मुख्यमंत्री से इस्तीफा की मांग नहीं कर रहे हैं, वो अपने उनके साथ हो रहे भविष्य के खिलवाड़ के साथ जो राज्य सरकार के द्वारा, चाहे JPC के द्वारा, चाहे JCC CGL के द्वारा जिस तरह घटना घट रही है, अनियमितता हो रही है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा, उनको उसी मुद्दे पर वो चाहते हैं कि पूरे मामले का CBI की जांच. और इसीलिए आज घोषित कार्यक्रम के तहत 10 अगस्त को आज ये जब आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से निकल रहे हैं, तो किस तरह कटीले तार, उसके बाद पानी की बौछार, टीयर गैस, ये जो चाहते हैं बर्बर सरकार, निर्मम सरकार, ये चाहते हैं छात्रों के आवाज को दमनात्मक कार्रवाई करके हम दबा दें तो, लेकिन छात्र का आंदोलन दबने वाला झारखंड में नहीं है।
10: The Jharkhand protest is reaching the parliament as well. Though adjourned for the day, Home Minister Amit Shah is likely to speak in the coming days. And that is also one on police action on the Jharkhand protest and the situation, therefore, with regard to youth in the country. The Congress party, and especially Rahul Gandhi, they've also escalated attack against the government. And they're saying that there are several other issues also that need to be spoken about. And what Kiran Rijiju, the Parliamentary Affairs Minister, has said is that the opposition parties, the India bloc, must allow the Home Minister to speak without disruption. The Congress party maintains that both demands must be met. The party wants a debate on the student protest, also what it calls the Chanda Chori issue, saying the Prime Minister and Home Minister, if they cannot respond on that, they need to resign.
13: इसमें गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट का सवाल नहीं, हम तो बहुत व्यापक कह रहे हैं, स्टेटमेंट ही क्यों, पूरा डिटेल चर्चा होना चाहिए और जवाब सरकार का जवाब जब देंगे तो उसमें कोई ऑपोजिशन पार्टी ऐसा हरकत नहीं करना चाहिए जवाब को डिस्टर्ब करने के लिए, पूरी तरह से सुनना पड़ेगा।
14: गृह मंत्री जवाब देने के लिए तैयार,
13: पूरी तरह तैयार है, एक एक बात का जवाब दिया जाएगा, देश को जानने का पूरा अधिकार है, लेकिन विपक्ष जवाब को रोकने के लिए हंगामा नहीं करना है, ये भी सुनिश्चित करना होगा।
15: सदन में आओ, बात रखो, डिबेट शुरू हो जाए, नहीं है तो आप लोग इस्तीफा देके घर चलो। हम तो डिबेट चाहते हैं, क्यों डिबेट नहीं करना चाहते? बाकी का स्टेटमेंट आकर बहुत बार यहाँ सदन में देते हैं, इसको क्यों नहीं दे रहे स्टेटमेंट? अब सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे ना, तो इसीलिए उनके पास इसका कोई रिप्लाई नहीं है और उनके वजह से सदन नहीं चल रहा है। वो रेस्पॉन्सिबल है, गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल है, मोदी जी रेस्पॉन्सिबल है, होम मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल।
16: आई हैव नॉट सीन व्हाट ही हैज सेड, बट व्हाट द इंफॉर्मेशन आई एम गेटिंग एंड व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन आवर डिफरेंट मीटिंग्स इज specifically the Home Minister's statement on the police action and brutality against students. We have not got any specific reply on that, that whether the Home Minister will speak on police action, police brutality against students or not. That clarification has not come and government has not given any specific reply whether they are ready to take up the debate on the corruption and mismanagement of the Ayodhya Ram Mandir Trust.
17: Ram Mandir pe sir bata dijiye kya non negotiable hai?
18: Nahi, dono vishay bahut zaruri hain chhatra naujawanon ke, jis tarah vyavhar hua, jis tarah chhatra naujawan apmanit hokar ke gaye aur abhi bhi unki mange to dur, jo sarkar ko faisla lena chahiye, sarkar ne bhi nyay kahan diya bachchon ko?
17: तो सर इसमें पहली मांग
18: दोनों पर चर्चा हो, दोनों की बातें हो तो स्वीकार करेंगे दोनों बातें।
10: Let me now bring you to Delhi about what's unfolding in the parliament. For the government, the delimitation bill is of prime importance. And I want to tell you something interesting that's unfolding here. We know that most opposition parties are not in favor of delimitation bills, especially the southern states. For example, LOP, senior leader of the party, Udayanidhi Stalin, has said that the DMK opposes this bill, opposes the delimitation bill. However, the DMK MPs in Delhi are non-committal. They've not really clarified and confirmed what the stand of the party will be. What happened also apart from that, while we looked at the DMK's reactions, speculation is rife. NCP Sharad Pawar's faction had a meeting with Prime Minister Modi. MPs have not made their position clear, saying that they'll follow the decision of the party chief Sharad Pawar and Supriya Sule. What about the Akali Dal? Now they have decided to back and support the delimitation bill. So the numbers eventually will be critical for the NDA. In the Lok Sabha, the NDA currently has, let's take a look at the numbers, 318 MPs against the 360 needed for a two-third majority, and that leaves a gap of about 42. In the upper house of the parliament, the NDA has 143 MPs, two-thirds mark stand at 163. They have a shortfall of 20. They will have to eventually take in consideration the opposition leaders to be able to have that number and an easy passage of the bill.
19: Well, joining me right now is DMK MP Tiruchi Shiva. So there's a lot of confusion over the DMK's stand on delimitation. I know Stalin has made it very clear that we oppose this. What is the stand of DMK in the parliament?
20: Who confused you? We never confused. We are very clear in our stand. We will never compromise if anything harm is happening to the southern states. That resolution has already passed, convening the meeting of the southern chief ministers by our then chief minister and our party president, Mr. Stalin, and we still stick it. So no need to confusion, and kindly don't confuse.
19: Will you look into the fresh draft, or you are still opposing the delimitation?
20: See, our view is the same. But after the bill draft comes, we will share to you about the bill and totally what will be our stand. As of now, we will never yield to anything that is done which is harmful to the southern states' representation in the parliament.
19: What is the DMK's official stand on
21: bill? Let it come here. Bill should come.
19: But sir, Stalin there is opposing this. So here also, will you oppose this?
21: So let it come out. Why you are people are... let it come.
22: देखिए, हमारा स्टैंड हमेशा बिल्कुल क्लियर रहा है कि वुमेन रिजर्वेशन होनी चाहिए, और हमने हमेशा इस बिल को जिस तरीके से भी जब आया था 2023 में तब भी सपोर्ट किया था, बिकॉज अकाली दल स्टैंड्स कमिटेड टू वुमेन रिजर्वेशन. पिछली बारी जब ये दोबारा लाया गया अभी अप्रैल के महीने में, जहां इसको पॉपुलेशन बेस्ड डिलिमिटेशन की जा रही थी जो बिल्कुल पंजाब के विरोध था, क्योंकि हमने अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल ही नहीं करी. लेकिन हमारा पिछले 10 सालों में कांग्रेस और आप सरकार के समय में बहुत मास माइग्रेशन पंजाब से बाहर हुआ है, तो हमारी सीटें घट जानी थी
19: जी.
22: इस करके हमने इसको अपोज किया. रिप्लाई में होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि मैं 50% अक्रॉस स्टेट्स जो डिलिमिटेशन होगा वो मैं इन राइटिंग देने को तैयार हूँ. तो जिस फॉर्मूला से पंजाब की सीटें 6-7 सीटें बढ़ के 6-7 और के आती है, तो अकाली दल इसका अपोज क्यों करे? सो ये मैं विपक्ष को भी मैं कहती हूँ कि सबसे पहला फंडा सबका यही था कि आप इन राइटिंग डाल दीजिए कि 50% ऑफ क्रॉस स्टेट होगा. जब वो आ जाएगा तो किसी को उसका विरोध नहीं करना चाहिए.
19: परिसीमन होता है, उस पर आपकी पार्टी क्या उसको समर्थन करेगी, क्या उसका खिलाफत करेगी, क्या होगा?
23: हमारी पार्टी तो आज तो अपोजिशन में बैठे है, तो इसलिए अपोजिशन का जो स्टैंड रहेगा वो हमारे पार्टी
19: का. लगता है महाराष्ट्र में अगर सीट बढ़ेगी उससे आप ही को फायदा होगा, आपको नहीं लगता है?
23: नहीं, वो क्या है, जो हमारी पार्टी के लीडर हमारे सांसद के सुप्रिया ताई है और हमारे पवार साहब है, जो डिसीजन लेंगे वो डिसीजन के साथ हमारे एनसीपी के सब सांसद रहेंगे.
19: अगर समर्थन करते हो तो आप समर्थन करेंगे?
23: पवार साहब ने बोला, सुप्रिया ताई ने बोला, तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं.
24: देखिए, परिसीमन के बहाने ये पूरे देश के अंदर अराजकता फैलाना चाहते हैं. देश के अंदर अगर अलगाववाद की भावना पैदा होगी तो ये देश की एकता के लिए और अखंडता के लिए खतरा होगा. अगर ये देश के हित की बात सोचते तो ये कभी इसके बारे में नहीं सोच सकते थे. चूंकि 2027 के सेंसस के ऊपर अगर परिसीमन लागू होता है तो उत्तर भारत की सीटें बढ़ेंगी और दक्षिण भारत की सीटें घटेंगी, जो एक डिसबैलेंस होगा. उस डिसबैलेंस से एक भावना जागृत होगी और वो भावना देश के लिए बहुत खतरनाक होगी.
10: Reactions aside, there would be a lot of back channel talks and expectations, because eventually it is about the number game in the parliament. And let me help you understand that. Let's go to Lok Sabha once, the lower house of the parliament. The NDA currently stands at 318. This number is including the MPs who have now defected to the NDA, which is TMC rebel MPs that became the NCPI and the UBT Sena that added to the Eknath Shinde Sena. 318, but that means they're still short by 42 if we take the 3/4 majority to be able to have a clear passage of the bill. Rajya Sabha, upper house of the parliament, a similar situation, though likely a little more easy for the government. 143 is the number. They're short by about 20 because the two-third mark is 163. So they will want to convince even the opposition leaders if they want to have a clear passage. Otherwise, there's going to be complete fireworks. So what is happening? Just about a few hours ago, there was a meeting that took place between Prime Minister Modi and NCP Sharad Pawar faction leaders and the members of parliament while the session is on. Now, what our sources are telling us officially on agenda was the Maharashtra issues. However, many are wondering if there were discussions with regard to the delimitation bill, to which the NCP Sharad Pawar faction MPs have said they'll go by what Sharad Pawar decides, what Supriya Sule decides, but not really confirming their own stand. Of course, they'll have to then follow the party stand as well. But this meeting also comes, remember, in the backdrop of what happened in the Trinamool Congress or in the UBT Sena. So many are wondering if there is any change or political realignment that could be expected when it comes to the NCP. For now, of course, there has been no response on that. I want to, though, add here, the NCP SP MPs have described the meeting as positive. PM Modi held a breakfast meeting with Shiv Sena MPs, also remember, reviewing development work in their constituencies and discussing ways to fast-track government projects. All right, I want to also add here quickly and briefly that details that are coming in from this meeting, an update. A key demand, we are told, has been to confer the Bharat Ratna on Maharashtra icons Mahatma Jyotirao Phule, Savitribhai Phule and Sahir Anabhav Tugroji Maharaj. The MPs have also saw the renaming of the Navi Mumbai Airport as D.Y. Patil Airport. There are also parliamentary constituencies that were discussed with the Prime Minister Modi. They have submitted a written memorandum to the Prime Minister. Irrigation issues also officially have found a mention in that meeting, which lasted about 30 minutes.
0: Yeah.
1: जी, एक तो पहले मैं ये बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो कयासबाजी जो चल रही है इसमें कोई भी तक नहीं। हम 8 सांसद हैं एनसीपी एसपी के, हम विपक्ष में बैठते हैं और हमारे कई सारे मुद्दे जो कई दिनों से प्रलंबित है, महाराष्ट्र के कुछ मुद्दे जैसे किसानों की ऋण माफी को लेकर मुद्दे, महाराष्ट्र के ड्रॉट के बारे में मुद्दे, प्याज के बारे में मुद्दे, पुणे नासिक सेमी हाई स्पीड रेलवे के बारे में मुद्दे, ऐसे हर चुनाव क्षेत्र के जो मुद्दे इन समस्याओं को लेकर आज हमने पीएम सर से मुलाकात की और हम रियली थैंकफुल कि पीएम सर काफी पीएम सर ने ये सब मुद्दे सुन लिए, समस्याएं सुन ली और उन्हें इस पर कोई ठोस कार्रवाई करेंगे ऐसा आज।
10: Big news coming in. You may have come across on your social media algorithm a video of what appears to be a domestic help being assaulted and beaten by the owner, a woman. And this was not just in any apartment society, but one of the most posh, probably in the country, and that is in Gurugram. Police have taken suo motu cognizance of the video that has gone viral on social media. They filed a case against unknown persons for now. The video is going viral and let me just tell you and help you understand why this is so important. A garb screen grab of that video on your screen is about someone who filmed that video and have made it viral. This is the posh Camellia Society on Golf Course Road. Based on preliminary police investigation, verification of facts, a case has been registered. Formal report has been sent to the area magistrate and higher officials as well. And that is a reminder of how sometimes, even in the most expensive, so to say, rich homes and houses, there are these assaults that this time was captured on camera. And I want to tell you why, if for those just in case, you may not know why I'm constantly referring to the word posh here. Going by the accounts that come in, apartments or these houses in DLF Camellias can go up to 100 crore rupees, from 50 crore to 100 crore rupees, even beyond. And that is why it is pertinent to understand about the kind of, you would expect that families of a certain standard, so to say, may not be as empathetic to their staff members or to their domestic help. We'll go across to our reporters on the ground as well. Anshul is joining me. Anshul, what are the details that you have? How and why has suo motu cognizance been taken? How will this be taken ahead?
2: Well, yes, the suo motu cognizance was taken after the video went viral on social media, and then a team of both Gurugram police actually visited the spot where the said incident allegedly happened. And over there, the Gurugram police said that there were that the person or the victim was not present over there, and hence no written complaint has been given to the Gurugram police. Post which cognizance of this entire matter has been taken by the police and investigation has been launched. The accused, in fact, is being questioned by the police at this point in time, and we can expect some serious action that could actually be taken by the Gurugram police within the next few minutes itself.
10: Anshul, keep tracking this big story, because this, remember, is the fact that this has been caught on camera. One wonders how many of these stories have been unreported. And you employ your domestic staff for your household, and then you don't fear assaulting them and beating them. This woman is still not behind bars. The police, of course, will be looking at it and verifying further details. Appreciate you joining us, Anshul, for the latest on that. High drama right outside the Jharkhand Assembly, because what we are told is, despite the adjournment of the session, the protesters are refusing to leave. And they have even touched gates now of the Assembly. This is the premises. It's a high security zone. And remember, even if the protesters have been peaceful, they cannot be allowed to be in this area. It cannot be permitted. Security will be used against them. That's part of the protocol, Parliament or Assembly. But what I'm told is likely the leaders are not there anymore. The session has been adjourned. We'll immediately go across to our reporters on the ground. Session has been adjourned, but the protest continues. Let's dip into this ground report by our colleagues.
0: पुलिस काफी देर तक रोक नहीं सकी छात्रों को, और छात्र देखिए विधानसभा के अंदर प्रवेश करते हुए अब आखिरी बैरिकेड भी ध्वस्त हो गया है और छात्र उससे आगे बढ़ के आ गए हैं। और देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बिल्कुल अफरा तफरी की स्थिति, प्रशासन ने यहाँ रोका है। और इधर की स्थिति दिखाते हैं आपको, देखिए यहाँ भी जो तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो आगे की तरफ वहां से प्रवेश कर गए हैं और उनको भी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। थोड़ा आगे चलते हैं, हम आगे की तरफ दिखाते हैं। देखिए जो सामने की दीवार है, बड़ी दीवार, उस दीवार से भी छात्र नीचे की तरफ कूदे हैं। और ये विधानसभा सामने ये निकास गेट है जहां देखिए छात्र अंदर की तरफ आ गए हैं और अब बेहद अफरा तफरी की स्थिति है यहां पे। जो सहयोगी नदीम हमारे दिखा रहे हैं कैमरे में, थोड़ा जूम करके थोड़ी दूर पर आप देखिए जो तमाम छात्र हैं वो अंदर जा चुके हैं इस वक्त। और देखिए ये छात्र किस तरीके से अंदर आ रहे हैं, देखिए ये छात्र जो दीवार पे खड़े हैं वो थोड़ी देर में एक एक करके जंप कर रहे हैं, अंदर की तरफ आ रहे हैं। और मकसद जो था विधानसभा घेराव का, ये सामने विधानसभा और सुरक्षा कर्मी जो है वो चेक पॉइंट जो ऊपर बनाए गए हैं, वॉच पॉइंट्स, वॉच टावर्स, उस पे खड़े हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं वो इस वक्त आ चुके हैं। छात्रों से बात कर रहे हैं, क्या आप लोगों का क्या करना है, यहाँ तक आप लोग आ गए हैं, आज तक यहाँ कोई पहुँचा नहीं प्रदर्शन करते, मैसेज क्या है सरकार के लिए?
3: सरकार को हम लोग यही कहना चाहेंगे, जिस प्रकार हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं तो उसी प्रकार आप भी हमारी मांगों को पूरा करें, और जिसमें अनियमितता हुई है, जिसमें पेपर लीक हुआ है, उनको आप अविलंब रद्द कीजिए, अविलंब। ये नहीं कि आश्वासन हमें नहीं चाहिए। और
0: वार्ता की कोई स्थिति बची है अब?
4: हाँ सर, वार्ता की स्थिति बची हुई है। और चूंकि सर मैं पूछना चाहता हूँ, अगर इलेक्शन लीक नहीं होता तो परीक्षाएं क्यों लीक होती है? सर पेपर लीक बात मुद्दा एसएससी सीजीएल जेपीएससी का नहीं है, कक्षा आठवीं की है, दसवीं की है, बारहवीं की है, हर एक परीक्षा लीक हो रही है सर, जो कि हमारे युवाओं की जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। यहाँ जितने भी पदाधिकारी हैं सभी एग्जाम लिख के आए हुए हैं, अभी वही एग्जाम इनके साथ भी लिख होता,
0: आप
5: हमारे मांगे पूरा हो जाता तो हमें यहाँ तक नहीं आना पड़ता,
0: यहाँ तक नहीं आना पड़ता। अगर मांग पूरी हो जाती तो ये पोस्टर, बैनर, प्ले कार्ड्स लेकर के, जिसमें झारखंड में नौकरी बेचना बंद करो लिखा हुआ है, और यहाँ तक नहीं आना पड़ता छात्रों को। और सरकार के लिए कितनी असहज स्थिति, प्रशासन ने बहुत रणनीतिक तौर पे बड़ा कंट्रोल करने की कोशिश की, कोई बड़ी घटना ना हो जाए, छात्रों ने भी संयम दिखाया, लेकिन अंततः नतीजा क्या? विधानसभा तक जो मार्च है वो पहुंच चुका है, ये गेट नंबर एक है गौरव, और यहाँ पर इस वक्त मौजूदगी है छात्रों की। हम अंदर की स्थिति भी दिखाने की कोशिश करेंगे, सहयोगी नदीम से कहेंगे एक बार दिखाएं। देखिए अंदर में सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं, उन सुरक्षा कर्मियों को भी मालूम है कि अब जाना आगे आसान नहीं होगा। हम भी सुरक्षा के मापदंड जो है उनका पालन करते हैं और हम दूर हैं इससे, और लेकिन आपको दिखाते हैं यहाँ पे। अब चूंकि आज की कार्यवाही खत्म हो चुकी है तो कुछ स्टाफ होंगे जो अमूमन सेशन पीरियड में रहते हैं यहाँ पे, जो मार्शल्स हैं, जो दूसरे सुरक्षा कर्मी हैं, जो अधिकारी हैं, वो हैं यहाँ पे, सचिवालय विधानसभा का जो है उसके कर्मी हैं। लेकिन हाँ, सरकार के लिए ये खतरे की घंटी है। हेमंत सरकार ने कभी यह परिकल्पना नहीं की होगी, कभी नहीं सोचा होगा कि जो एक आंदोलन शुरू हुआ जेपीएससी को लेकर के, वो इतना बड़ा स्वरूप ले लेगा कि आज विधानसभा के सामने तक, गेट तक जो छात्र हैं वो प्रदर्शनकारी पहुंच जाएंगे। गौरव।
10: All right, that is Shashi Bhushan reporting from on the ground, and he's telling us how these protesters are now literally at the assembly gates. And even though the session has been adjourned, that's Devender Mahato on your screens. He's been at the forefront. He's the student leader. He's been on a hunger strike since the 2nd of August. He was in fact brought first in an ambulance, then taken out on a stretcher. He's right now being held on a stretcher with the help of others on their shoulder. And he's being taken to near the assembly premises, but is not being permitted. You see the use of water cannons and tear gas as well. Now, this is reflective of the kind of protest that you're witnessing in Jharkhand. However, no abusive words that have been used by the protesters. They've consistently mentioned about their demands. There have been teams of volunteers who've ensured that no rogue element or anti-social element are allowed to enter into the protest and give it a bad colour. However, as you can see, force is being used. Many will question if this force was necessary at all when the protesters have been largely peaceful. There were some instances of plastic bottles that were thrown at the police, but unlike what we saw in Delhi, there was no violence against the men or women in uniform, and there was no attacking the public property or stone pelting. And however, yet they faced the lathi charge. However, right now, as the situation has turned to a relatively controlled situation, but they are still at the assembly premises in Jharkhand, but they'll have to be moved from there. Let's listen into another ground report coming in. Will they be allowed to stay put at the assembly premises? चल रहे
0: मामले का हवाला देती है। इसके अलावा इसके इतर जो सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, उस सीबीआई जांच के लिए सरकार तैयार नहीं है। तो जो 98% वर्सेस 2% का मामला है, जिसमें सरकार ये क्लेम करती है कि 98% मसलों पे हमारी सहमति बन गई बातचीत में, 6 घंटे की जो बातचीत हुई लगभग, लेकिन 2% में मामला जो फंसा है वही सरकार के गले की फांस है, और उसी चलते ये पूरा घटनाक्रम आज हुआ है। गौरव।
10: Right, Shashi Bhushan is telling us about the interactions that are taking place, the negotiations and discussions. Remember, the Hemant Soren government did reach out to a delegation of student protesters. However, that did not really result in any breakthrough. And therefore, the protesters say that they are back and now not only at the protest, but marching toward the assembly, which they did. They've managed to enter into the premises area as well. What are the demands that have not been met? One, cancel the public service examination that is organized by the state government. What is the latest that Hemant Soren government has done? The state CID of Jharkhand have arrested the former chairperson of the examination that was organized, of the JPSC. They've arrested former chairperson L. Khyangit, and he had resigned already in the month of July. But clearly the protesters say, how is that enough if the examination stands on, if the results that they believe have come after paper leak or any sort of irregularities, this action is not really the one that is deemed appropriate. And remains our top story of the day. Stay tuned when we return at 5 p.m. We'll tell you more about what's happening, especially in the state, what does the government intend to do, and furthermore, other details that are coming in. Thank you for watching. Take care of yourself. Stay tuned to India Today Television always. Thank you.
6: You are watching India Today.

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

वो इतने इरिस्पॉन्सिबली आकर के कुछ नशा करके, या तो अल्कोहल हो या तो कोई और ड्रग्स हो, वो लेकर के आके फ्लाइट में इतने लोगों का जान अपने हाथ में रखते हैं, बहुत इरिस्पॉन्सिबल है। और इससे भी ज़्यादा जो मेरे को क्या लगता है कि सिस्टम की गलती है। यहाँ पे जो DGCA हैं या एयरपोर्ट अथॉरिटी है या एयरलाइंस हैं, इनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, इनको इम्प्रूवमेंट्स करने चाहिए अपने प्रोसेस में, ताकि हमारे जैसे लोग, हम तो चलो बचे, लेकिन बहुत जो नहीं बच पाए हैं आज तक और आगे, उनका लाइफ खतरे में नहीं जाए।

0: You're watching India Today. I'm Akshita Nandagopal. We're cutting straight across to a live press briefing by Leader of Opposition Rahul Gandhi and Congress Chief Mallikarjun Kharge on the Jharkhand students' protest. Let's cut across.
1: उसको सीमित वो डिस्कशन हो जाए, वो आए और जो पेपर लीक होते हैं कैसा हो गए इसके ऊपर हम पहले से चर्चा जाने, लेकिन उन्होंने 14-15 दिन उसके बारे में कुछ नहीं कहा। इसका मतलब

0: उस कालखंड में बांटने का काम उस कालखंड में उन लोगों ने किया था जिसके कारण देश गुलाम हुआ था, वही पाप आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता समाज को जाति के नाम पर बांटने का पाप फिर से कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, इनके बांटने का परिणाम क्या है, कोई पूछे तो इन लोगों से, किसी ने पूछने का प्रयास किया कभी कि देश के अंदर और प्रदेश के अंदर सर्वाधिक समय तक कांग्रेस ने शासन किया, सर्वाधिक समय तक शासन किया, लेकिन इन्होंने अपने समय में इन्होंने क्या किया था युवाओं के लिए, क्या किया था किसानों के लिए, क्या किया था गरीबों के लिए, क्या किया था इन्होंने महिलाओं के लिए। इस समाजवादी पार्टी ने तो हर जिले में एक माफिया पाल दिया था, हर जिले में माफिया, हर थाने में माफिया का कब्जा, हर तहसील में माफिया का कब्जा, गरीब की जमीन पर कब्जा होता था, लैंड माफिया, केन माफिया, सैंड माफिया, कैटल माफिया और पेशेवर अपराध के लिए कुख्यात माफियाओं की समानांतर सत्ता ये प्रदेश की पहचान थी।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: यू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: न्यू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: यू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: EBU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: एक्टिव सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.
1: Presented by
2: Ek Hint To Dete. Hint, bade aaram se.
3: Suzlon, good energies that work.
4: Good evening, you're watching News Track with me, Maria Shakil, from Delhi's Jantar Mantar to the streets of Jharkhand's Ranchi. The script of student protests has repeated itself. Students demanding answers over recruitment examinations once again found themselves facing barricades, water cannons, tear gas and lathis as they marched towards the Vidhan Sabha. The visuals from Ranchi have now triggered a political storm. The BJP has launched a sharp attack on the Hemant Soren government, accusing it of using excessive force against protesting students. The Jharkhand Mukti Morcha says the BJP is politicizing the agitation and has alleged that outsiders were brought in to create chaos. But Leader of Opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi, has sought Home Minister Amit Shah's resignation after the July 20th crackdown has offered condemnation, putting his own alliance partner under pressure. So two student protests, two crackdowns, but beyond the BJP versus JMM battle, beyond the centre versus opposition politics, the central question remains. What happens to the students whose examinations, careers and futures are at stake? Will the Soren government give in to the students' demands, or will the streets of Ranchi once again become a battleground? Before I bring in the Leader of Opposition in Jharkhand Assembly, Babulal Marandi, here's a report.
5: They were just meters away from the Jharkhand Assembly. And then came the lathis, tear gas shells and water cannons.
6: फिर से वाटर कैनन शुरू हो गया, फिर से पानी चलाना शुरू कर दिया यहाँ पे, फिर से वाटर कैनन चलाना शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारियों पर दरअसल टीयर गैस चलाने की तैयारी थी, लेकिन तुरंत ही उनको पुलिस ने रोक दिया। प्रदर्शनकारी आगे पहुंचे और उन्होंने अधिकारियों को घेर लिया और अब जो है फिर से वाटर कैनन चल रहे। देखिए जिस बैरिकेड पर डेडलॉक था, ये देखिए, ये डांस है, ये कैसा प्रोटेस्ट है। दे आर प्रोटेस्टिंग एंड दीज आर प्रोटेस्टर्स आर लिटरली डांसिंग ऑन द वाटर कैनन। नाउ वी सी द फोर्थ फिफ्थ बैरिकेड विद द बार्ब वायर। दे रिमूव्ड एवरीथिंग व्हेन द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स वर प्रिपेयरिंग टू टीयर शेल्स। दे इमीडिएटली कॉर्नर्ड दोज ऑफिसर्स, दे मॉब लिटरली टू दोज ऑफिशियल्स एंड दे रैन अवे।
5: एक और जंतर मंतर, जस्ट माइनस द पैलेट गन्स। After talks with the government failed on Sunday, protesting students decided to march towards the Vidhan Sabha. Fasting student leader Devendranath Mato joined the students' march on a stretcher.
7: जब तक वो सीबीआई जांच नहीं कराएंगे या फिर कुछ फैसला नहीं लेंगे, तब तक हम लोग इस पे डटे रहेंगे।
8: झारखंड के सरकार के कानों में आवाज नहीं जा रही है।
9: शांति पूर्वक हम लोग आंदोलन कर रहे थे, हम लोग शब्द भी नहीं बोले हैं। अचानक पीछे से पुलिस आती है, लाठीचार्ज करती है।
5: But when the protesters breached multiple barricades and entered the Vidhan Sabha premises, police resorted to water cannons, tear gas and lathi charge.
10: पानी की बोतलें, चप्पल, जूते, डंडे सब हवा में उड़ते हुए अब दिखाई दे रहे हैं। अब उसके बाद भी वहां पर महिला पुलिसकर्मी, आईआरबी और जो पुलिस है उनके जवान डटे हुए हैं जस के तसम। फिर एक बार वो आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर ये डेडलॉक बना हुआ है। एक डेडलॉक उस फैसले को लेकर के है, मांगों को रहे, और एक डेडलॉक विधानसभा

0: सिर्फ 100 मीटर की दूरी, विधानसभा का द्वार समझ लीजिए कि 100 मीटर की दूरी पर जहां पर ये छात्र, और ऐसा भी नहीं है, करीबन सैकड़ों छात्रों को मैं देख रहा हूं जो दूसरी तरफ पहुंच चुके हैं, आगे भी बैरिकेडिंग पर रुका है।
1: Several students were injured. BJP leaders, on the other hand, घेराव झारखंड चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन's residence, demanding his resignation, with several leaders being detained as well.
2: हम लोग पॉलिटिकल टाइप का किसी भी हम लोग बाहर नहीं निकला, कोई भी एक अश्लील शब्द, झंडा सिर्फ तिरंगा रहा, न कोई समाज का, न कोई धर्म का, न कोई पार्टी का रहा। आज मायने सिर्फ एक ही रहता है कि यहाँ के युवाओं का भविष्य का सौदा किया जा रहा है, बहुत रो रो के परेशान है।
1: The protest continued into the evening with students being subjected to a lathi charge again. The politics over the police action has intensified. The BJP has condemned the police action on protesting students in Ranchi. It questioned the opposition leaders who villainized Delhi police over pellet guns used and went silent on Jharkhand police.
3: Rahul Gandhi ji se kehna chahunga ki jantar mantar pe karam aur jo Ranchi ke chhatr hain unke upar zulm, Rahul Baba, ye zulm na kar.
1: The JMM, meanwhile, has accused the BJP of politicizing the agitation and alleged that outsiders were being brought in to create chaos.
4: सरकार की सहानुभूति पूरी तरह से छात्रों के साथ है, उनके भविष्य के साथ है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद बहुत दुखी हैं, वो उनके साथ है। उसको पॉलिटिकल, कुछ लोग पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका अनुरोध है कि वो पॉलिटिक्स इसमें ना करें।
1: It's deja vu. We have seen this play out before. The moment a student protest turns violent, the debate shifts from the students' demands to allegations of outsiders and anti-social elements. But this time there is another political message. Lok Sabha leader of opposition Rahul Gandhi has criticized his own ally. He has said that the use of force against protesting students in Jharkhand is wrong.
5: Jharkhand ke chhatron ke liye mera message clear hai. We condemn any violence against peacefully protesting students. Does not matter where it is happening, we condemn it, we are against it. We do not recommend it, we do not support it.
1: The leader of opposition in the Lok Sabha has spoken. And once again, he has put the ball in the center's court as the government faces questions over the July 20th crackdown on students. It is learned that Home Minister Amit Shah is likely to speak on the students' protest in Parliament. Two protests, similar crackdowns, but very different political messaging. Yet beyond the politics, there is one truth that cannot be lost in the noise. The students, the demand for fair and transparent recruitment exams, their right to protest and their right to question any government. At Jantar Mantar, the demand was for a minister's resignation. The Modi government eventually gave in to the students' demand. In Jharkhand, the students want the JPSC prelim and backlog exams cancelled. They're also demanding a CBI probe into alleged irregularities in the JSSC CGL examination. So the question now is simple. Will the Soren government listen? Or will the streets once again become the battleground between students and the Soren Sarkar? Because the real test for any government is not how it handles dissent when the streets are silent, but how it responds when students raise their voice. With Ashutosh Mishra and Satyajit Kumar in Ranchi, Bureau Report, India Today.
6: Just a few minutes ago, Jharkhand Chief Minister Hemant Soren has put out a tweet. And he has said that he is appealing to protesting students to maintain peace and has assured them that his government will act with seriousness and sensitivity on their demands. He has gone on to say that he thanks the police and the administration for handling today's student protest with restraint. Soren has said that students have every right to raise their concerns in a democracy and that it is the government's responsibility to respect their voice. He said that senior ministers have been in continuous dialogue with the protesters and assured that steps will be taken to address their grievances and make the examination system more transparent, technology-driven and secure and accountable. Hemant Soren also accusing that some of the opposition leaders are trying to politicize the protest, and he has urged students not to be misled by political narratives. He reiterated his appeal for dialogue and trust to resolve this issue. And joining me first on the show is Babulal Marandi, a leader of opposition of Jharkhand Assembly. मिस्टर मरांडी, अप्रिशिएट योर टाइम इंडिया टुडे से बात करने के लिए शुक्रिया. सरकार ने शाम में, जो राज्य सरकार है झारखंड की, उसने शाम में छात्रों पर फिर से लाठियां बरसाई हैं. छात्र विधानसभा के परिसर में बैठ गए हैं, वहीं से वो अपना धरना आगे बढ़ाएंगे. आप आगे क्या देखते हैं, आगे क्या होगा इसमें?
7: देखिए, छात्रों की मांग बिल्कुल साफ है. JSSC और JPSC के एग्जाम में सरकारी कर्मचारी और पदाधिकारियों की नियुक्ति में ये दोनों ही संस्थान ने नौकरियों को बेचा है, और इसलिए छात्र गुस्साए हुए हैं और पिछले 15-16 दिनों से धरना पर थे, भूख हड़ताल पर थे. छात्रों का एक ही मांग था, जिस भी एग्जामिनेशन में जो नौकरी को बेचा गया है पैसों से, उसकी जांच CBI से सरकार करावे. लेकिन सरकार उस मांग को तैयार नहीं है. सरकार कह रही है सब कुछ ठीक हुआ है, हमारे CID जांच कर रही है. अगर सब कुछ सब ठीक ठाक है तो फिर सरकार को CBI जांच से डरनी नहीं चाहिए, घबरानी नहीं चाहिए. इसलिए आंदोलन को सरकार कुचलने पर लगी हुई, लाठी डंडे से कुचल रही है. नहीं तो 15-16 दिनों तक आराम से बैठे हुए, शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हुए, ना कोई गाली गलौज कर रहे, ना कोई पत्थर चला रहे हैं, अपनी हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं. और वो तो इतना ही कह रहे हैं कि भाई इन इन एग्जामों में नौकरी बेचा गया, उसका प्रमाण है छात्रों के पास, उनके पास कोई न्याय नहीं हुआ है. अब इन सारे मामलों को CBI से जांच करा, जो दोषी होंगे उनको सजा मिलेगी, जो पैसे से खरीदा है नौकरी उनकी नौकरी चली जाएगी, और अगर कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ है तो फिर सब कुछ क्लीन हो जाएगी, अच्छे हो जाएगी. फिर दिक्कत क्या है, डर किस बात की है? लेकिन सरकार जिस प्रकार से लाठी गोली से दबा रही है, तो ये लगता है कि सरकार के निश्चित रूप से मुख्यमंत्री के बिल्कुल करीबी लोग कहीं फंसते हुए दिख रहे होंगे, तभी सरकार CBI जांच से भाग रही.
6: बाबूलाल जी, आप काफी गंभीर आरोप लगा रहे हैं, आप नेता प्रतिपक्ष हैं और झारखंड के पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो इसीलिए मेरा आपसे दूसरा सवाल ये होगा कि सोरेन सरकार कह रही है कि उन्होंने छात्रों की ज्यादातर मांगे मान ली हैं और न्यायिक जांच के भी आदेश दे दिए हैं, तो फिर आप CBI जांच की क्यों मांग कर रहे हैं? तो केंद्र सरकार को इसमें क्यों दखल देना चाहिए?
7: केंद्र इसमें दखल नहीं दे रही है. एक तो इन्होंने CID से पहले जांच कराया था CGL के पेपर का, लेकिन CID उस समय करीब करीब ठीक दिशा में जांच कर रही थी, लेकिन जैसे ही लगा कि इसमें से और लोग पकड़े जाएंगे, पूरा CID के टीम को इन्होंने बदल दिया. और जब पूरा टीम को बदल दिया तो CID वालों ने हाईकोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक को लोगों ने मिसगाइड किया. अब पुरानी जांच रिपोर्ट है, CID का ही जांच रिपोर्ट है, वो सारे आज पड़ा हुआ है सब कुछ. तो ऐसी स्थिति में कैसे लोग विश्वास करेंगे उस CID के ऊपर की निष्पक्ष वो जांच करेंगे? और एक बात मैं कहूंगा, क्या SEBI भी एक जांच एजेंसी है, एंटी करप्शन ब्यूरो, उन्होंने पिछले दिनों, आज जैसे CID गिरफ्तार कर रही है लोगों को, अध्यक्ष को गिरफ्तार किया, कई मेंबरों को गिरफ्तार किया, वहां पदाधिकारियों को किया है, उसी प्रकार से दारू घोटाला में, शराब घोटाला में SEBI ने विनय चौबे समेत 1.5 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया था. उस समय लगता था कि शायद आप बड़ा कार्रवाई होगी. अब एक साल से अब करीब करीब अधिक हो गया, लेकिन अभी भी कहीं उन्होंने चार्जशीट तक सबमिट नहीं किया. बाय डिफॉल्ट 90 दिन में सबको बेल मिल गया, तो ये भी वही कर रहे हैं. इसलिए झारखंड के चाहे CID हो चाहे SEBI हो, इनसे कौन विश्वास करेगा, कौन भरोसा करेगा कि ये ईमानदारी से जांच करेंगे? और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि भाई अदालत की निगरानी में, अब अदालत की निगरानी में आप CBI जांच कराइए. जो लोग दोषी होंगे वो दंडित होंगे, जो पैसे लेकर के जिन लोगों ने नौकरी प्राप्त किया है वो पर्याप्त प्रमाण मिलेगा, उनकी नौकरियां चली जाएगी. और जो लोग कुछ भी नहीं किया होंगे तो फिर किसी को कोई दिक्कतें नहीं होगी, मुख्यमंत्री को और सरकार को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए CBI को देने.
6: JMM वाले कह रहे हैं कि BJP नौकरी चाहने वाले युवाओं के गुस्से का राजनीतिक फायदा उठा रही है, बजाय कोई ठोस समाधान पेश करने के.
7: मैं तो ठोस समाधान ही तो मैं कह रहा हूँ, मैं शुरू दिन से कह रहा हूँ, जब से बच्चे बैठे हुए तब से मैं कह रहा हूँ, बच्चे नहीं भी बैठे थे तब भी हम कह रहे थे, और जब विधानसभा में सर्वदलीय मीटिंग हुआ था उस दिन भी मैंने कहा था क्या भी इस मामले की सीबीआई से जांच कराइए, जब कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई तब मैंने कहा कि सीबीआई से जांच कराइए, सीबीआई से जांच कराएंगे तो फिर कहां कोई हमें लाभ उठाने की मामला है, उसका लाभ तो मुख्यमंत्री को सीधा सीधा मिलेगा। इसीलिए ये हम कोई राजनीतिक फायदे के लिए नहीं करें, हम झारखंड के फायदे के लिए, झारखंड के नौजवानों का जो हक बेचा गया है उसमें उन नौजवानों को न्याय दिलाने के लिए हमारी पार्टी लड़ रही है और उन नौजवानों के साथ में है।
6: बाबूलाल जी, आज छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पानी की बौछार भी की गई, कुछ छात्रों को हिरासत में लिया गया है, तो आपको क्या लगता है इस प्रदर्शन में आगे क्या होगा, ये प्रदर्शन आगे कैसे जाएगा?
7: आगे हम लोग तय करेंगे, अभी तो आगे की हम लोगों ने तय नहीं किया, लेकिन लगता है कि लड़ाई, लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी सरकार से, आसानी से सरकार मानने वाली नहीं है, अब रांची तक में नहीं संपूर्ण झारखंड में इस लड़ाई को हम लोगों ने इसको फैलाएंगे, ताकि लोकतंत्र में मालिक जनता होती है कि हम जनता के बीच भी जाएंगे, ताकि लोग समझे उन्होंने किस प्रकार से एक एक नौकरी को बेचा है, कैसे इन लोगों ने ये धंधा किया है पूरी तरह से, ये हमें जनता को बताना है। तो इस लड़ाई को हम लोग झारखंड की गांव गांव तक भी ले जाएंगे और देश व्यापी भी ले जाएंगे, कैसे एनडीए अलायंस के लोग जहां उनकी सत्ता है और वहां किस प्रकार से ये लोग क्रूरता पर उतर आते हैं, जब शांतिपूर्ण धरना होता है तो सरकार सुनती नहीं है, और विधानसभा की तरफ जब लोग कुछ करते शांतिपूर्ण ढंग से तो डंडे चलाते हैं।
6: मेरा आखिरी सवाल ये होगा आपसे कि अभी कुछ देर पहले राहुल गांधी ने भी छात्रों के संबंध में बोला है, और भाजपा का कहना है, आप ये कह रहे हैं कि रांची तक ये प्रदर्शन सीमित नहीं रहेगा और पूरे झारखंड में आप फैलाएंगे, तो आगे क्या करेंगे आप?
7: नहीं, स्वाभाविक है, अब मैं तो कहता हूँ छात्र का ही ये मामला नहीं है, झारखंड का मामला है। मैं लोगों से बार बार कहता हूँ, हम तो जनप्रतिनिधि है, 5 साल के लिए चुने जाते हैं, प्रत्येक 5 साल में हमें जनता के अदालत में एग्जाम देना होता है, लेकिन आज जो लोग पैसे के बल पर कर्मचारी और पदाधिकारी बनेंगे तो अगले 20-25-30 वर्षों तक झारखंड में भ्रष्टाचार की रायता ही फैलाएंगे, तो झारखंड कहाँ जाएगा? झारखंड पूरी तरह से भ्रष्टाचार की दलदल में फंस जाएगा। इसीलिए ये लड़ाई सिर्फ उन नौजवानों का ही नहीं है, सिर्फ हमारा ही नहीं है, ये लड़ाई झारखंड के लोगों का है, झारखंड को भ्रष्टाचार की दलदल से बचाने का ये लड़ाई है, और इसीलिए इस लड़ाई में संपूर्ण झारखंड के लोग साथ दे रहे हैं और आगे भी आने वाला समय में भी लोग देंगे।
6: चलिए, बाबूलाल मरांडी, द लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ झारखंड एंड ऑल्सो द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, अप्रिशिएट योर टाइम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। ज्वाइनिंग मी ऑन द शो टुनाइट, भाव्या इज द नेशनल स्पोक्स पर्सन ऑफ द कांग्रेस, तुहीन सिन्हा रिप्रेजेंटिंग द बीजेपी, एंड चंदन कुमार इज अ PhD रिसर्च स्कॉलर एंड स्टूडेंट लीडर हु इज पार्ट ऑफ दिस JPSC JSSC न्याय मंच। आई वॉन्ट टू बिगिन विथ यू चंदन, इस तरह का प्रदर्शन आज हुआ है, स्टूडेंट्स पर लाठी चार्ज हुए, आगे क्या आप लोगों ने बनाया है, आगे क्या करने वाले हैं? क्योंकि आपने सुना बाबूलाल मरांडी वो क्या बोल रहे थे, उनका कहना है कि ये बस अब रांची तक नहीं सीमित रहेगा, ये पूरे झारखंड में वो फैलाएंगे।
8: बिल्कुल सही बोले माननीय पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल जी ने, मैं कहना चाहता हूँ कि तो बेच रहे हैं, लेकिन झारखंड के जो भविष्य नौकरियां जो होती है, जो हम समूह संवैधानिक है, उसको ना बेचा जाए। आज हम लोग संवैधानिक तरीके से,
6: चंदन मैं आपका ऑडियो फिक्स करूंगी, मैं अपने प्रोड्यूसर को बोलूंगी कि आपका ऑडियो फिक्स करे, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम है, तब तक भाव्या कैन कम इन। भाव्या, यू नो क्वेश्चंस आर बीइंग रेज्ड एज टू व्हाई इज द कांग्रेस हैविंग डबल स्टैंडर्ड्स व्हेन इट कम्स टू अबाउट इश्यूज ऑफ द स्टूडेंट्स। If the students are lathi charged in Delhi, the Congress raises it. But when they are lathi charged in Jharkhand, then you are silent because you feel that this entire protest, a section of it, is being you know, has the support of the BJP?
9: Maria, there are two arguments I would like to make here. One, you're comparing apples and oranges. In Delhi, they were using pellet guns, shock batons. This is something...
6: No, what are apples and oranges? That the Jharkhand police did not use pellet guns.
9: For you to use the word double standard, that means you are comparing the police brutality in Delhi.
6: No, I'm asking the reaction of the Congress party. I'm talking about the reaction of the Congress party. You can say that they are my alliance partner. I will not take a stand.
9: If you let me complete, yeah? Or you want to just keep talking or interrupting me, or will you let me complete? I said you're comparing apples and oranges because here they did not use pellet guns. They did not use shock batons. And also, the leader of opposition, national leader of opposition, Rahul Gandhi, has condemned even this force. And if there is any police excess in this, we will make sure whoever is responsible will be taken to task and there will be justice. Second part. When it comes to JPSC exams, we need to understand one thing. Any public service commission is an independent constitutional body. It doesn't come under the government. But still, JPSC, the government has appointed CID and three members have resigned. The chairperson of JPSC has been arrested along with 20 others. The exam has been cancelled as well. Within 1 week, all of this has happened. Water cannon.
6: Ma'am, you can finish your point.
9: But they're saying they can't hear me.
6: No, this, you can be heard loud and clear. Please go ahead.
9: Okay. So, 20 people have been arrested. Three people have resigned. And the chairperson has also been arrested. Anything anymore. We are open. And the process is going on. The dialogue is happening. Unlike in Delhi, where they let on until the leader of opposition intervened. Prime Minister did not even acknowledge this. Here, the Chief Minister has acknowledged, gotten into a dialogue with the students.
6: Okay, so there is a reaction. There's a difference in the manner in which the political class has reacted.
9: Tuhin Sinha. Tuhin,
6: please come on the screen now. Let me take that question to Tuhin. Tuhin, the question here is that if the students, and I'm seeing visuals, they are equally dramatic in Ranchi, students being water cannons used, tear gas issued, lathi charge against students, protesting students. Here is Hemant Soren saying that his police acted in restraint. But the question really is that when they knew well in advance that there will be a gherao of the assembly, then why was this kind of brutality allowed against protesting students?
7: You know, Maria, the genuineness and the sincerity of a protest can be gauged by the fact that not a single policeman has been injured in the protest. How many were injured in Delhi? Good 250 policemen had suffered serious injuries. So these students were extremely peaceful protesters. They have been very focused in their demand. What is their demand? A twofold demand: to constitute, to initiate a CBI inquiry, and number two, to cancel the JPSC exams. And mind you, exam paper leak is one thing. Over here, what Jharkhand has witnessed in the last 6 years is continuous selling of seats. So, admit cards in large numbers are found from people who do not even appear in exams, but who subsequently get the jobs, the JSC jobs, which are meant for the extremely poor sections of society. So, Rahul Gandhi has an iota of seriousness in him, he should tell Hemant Soren that Hemant Soren should go for a CBI inquiry. But instead, when Rahul Gandhi is nailed, he gives these sermonizing statements that police should be fair to the students and all of that. Mm. Why is Rahul Gandhi not gherowing the residents of Jharkhand?
6: Let Bhavya respond. Bhavya, respond to this.
9: Will Amit Shah allow Supreme Court monitored committee as we demanded to Hinshah? Of course, CBI will be. One second. Students have a demand for CBI. The same way students have a demand for Supreme Court monitored committee, right? At the central level. Will Amit Shah allow that? One second. Will Amit Shah allow that? And what about the brutality in... Till now, the Home Minister has not...
10: Don't confuse cockroaches with students. CJP is a full-fledged subsidiary of Aam Aadmi Party. And if Congress is an iota of dignity, it should
9: not be getting injured. Here, the police are controlling violence. There, the police are inflicting violence.
6: You know, argument, Tuhin. I have a problem with that argument. A student is a student, irrespective of which political party or youth wing he belongs to. And I don't think so. It's a fair comparison to him.
9: You know,
6: this was a group of students who motivated other students. I don't think so. You can draw that parallel. Let's not draw that parallel, please.
9: We will never call the students as anti-nationals or terrorists. They are fighting for their right.
6: Okay, Chandan, let me bring in the student. Let me put the spotlight on those who matter here, that someone who's part of these protests. Chandan, मुझे बताइए कि आप क्या अभी कुछ छात्र अभी भी असेंबली के परिसर में बैठे हुए हैं कि सब अब निकल करके जहां पर ये स्टेडियम है वहां पे आ गए?
8: मैं बताना चाहता हूं कि रात के 10:30-7 बजे पुलिस लाइट बंद करके बर्तापूर्वक लिए चार्ज किए, जिसमें से मुझे भी 4-5 लाठी चार्ज किए गए और बहुत छात्रों को घायल है उनको डिटेन करके ले जाया गया और भगदड़ मच चुकी थी। भगदड़ के दौरान देवनाथ महतो बैठे हुए थे विधानसभा में, कोई हालत में वो सदर हॉस्पिटल में एडमिट करना था। और मैं कहना चाहता हूँ इस सरकार को, इस सरकार तुम नौकरियां को करनी संपदा है, किसी के लिए हर कुछ है, बालू है, कोयला है, सोना है, अभ्रक है, बॉक्साइट है, लेकिन हम छात्रों का जो भविष्य है इसे हम लोग सिस्टम के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे, सरकार के विरुद्ध लड़ाई नहीं लड़ रहे, डीपीसी हो चाहे जीएसएससी हो। जब से सरकार बनी है हेमंत की सरकार, लगातार
6: the problem is there, really bad audio again, Chandan. This has to be fixed before we can continue. Let me give the last 30 seconds to both you and Bhavya and Tuhin. Bhavya, you want to go first? 30 seconds quickly.
9: When it comes to Delhi, brutality. Of course, Jharkhand, if there is police excess, as we see, and as Tuhin Sinha said, yes, there are no attacks on police because police were inflicting violence there. Here, the police are stopping violence. Second point, Amit Shah so far has not shown a little bit of courage as Rahul Gandhi has by mentioning Jharkhand in his Chhatron Ki Gooj. Although our government is there, he mentioned Jharkhand. And okay, today's press conference, he openly said he is condemning the violence. But did Amit Shah even have the unounced courage to come to parliament and make a statement about the role
6: now, please,
9: the students protesting in Delhi?
10: Maria, can you ask her to calm down?
6: Yes, please.
10: You know,
6: go
10: tomorrow, the open question to Congress party is, will Rahul Gandhi be present when Amit Shahji is on the floor of the House on the student issue? And, you know, it is going to be a comprehensive discussion. We have seen this pattern from the Congress party. They provoke us that, you know, we are not prepared for the discussion. When we come for the discussion,
6: okay, let's see finally whether the discussion actually happens on the floor of the House tomorrow. Tuhin and Bhavya, really appreciate your time. Thank you so much for joining us. That's all from me on this edition of NewsTrack. Thanks so much for watching.

0: 2 days, the committee will select 3 candidates and submit a report to the trust. What we're also learning is that the appointment of the CEO is expected to be announced on the 2nd of September, and a total of 5,200 applications have been received for this particular position. Kumar, Abhishek has more details. Kumar, क्या कुछ फ्रंट रनर्स के बारे में अभी जानकारी है या कुछ प्रोमिनेंट नेम्स जो इतने हजारों लोगों ने इतनी इंथुजियाज्म दिखाई है इस पोजीशन के लिए, क्या कुछ नामों के बारे में अभी आपको पता है?
1: देखिए, नाम तो बहुत साफ तरीके से अभी सामने नहीं है, लेकिन 18 लोग शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं टीम, और उनमें से 2 दिन जो ये इंटरव्यू चल रहा है उसमें से एक नाम फाइनल होगा। हालांकि कई नाम चल रहे हैं, पूर्व आईएएस अधिकारी चाहे दिल्ली से हो, उत्तर प्रदेश से हो, कई नाम चल रहे हैं, लेकिन इसे अभी सिर्फ कयास ही कहना ठीक होगा। 18 लोग बाहर से आ रहे हैं, इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश का शायद इसमें कोई नहीं है, और इनके जो इंटरव्यूज हैं ये कल और परसों 2 दिन चलेंगे। तो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स लगभग पहुंचने शुरू हो गए हैं जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, और सभी अयोध्या रुके हुए हैं। 2 दिन के इंटरव्यू के बाद इनके नामों का जो ऐलान है, घोषणा है, वो 2 सितंबर को होना है। तो कुल मिलाकर के फिलहाल अभी तैयारी इंटरव्यू की है और इसी में से कोई एक नाम फाइनल होगा।
0: कुमार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये सारे डिटेल्स के लिए।

0: मारना, पकड़ना, कादा फेंकना, काली फेंकना, जूता का चप्पल फेंकना, ये हमारा संस्कृति नहीं हो सकता है, ये भाजपा का संस्कृति नहीं है। हो सकता है ममता बनर्जी बहुत कुछ किया है, बहुत दोष किया है, लेकिन हम तो ये समर्थन कभी नहीं कर सकते, वो भी एक महिला और वो भी इतना उम्र के महिला, हम इसको समर्थन नहीं करते हैं। हम बार बार बोलते हैं, हमारा माननीय मुख्यमंत्री नहीं समर्थन करते, हमारा माननीय राज्यसभापति समर्थन नहीं करता, जो भी कर रहे हैं, अगर भाजपा का स्टैंप लगाकर अगर करना आप ये ले रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं।
1: बीजेपी लोग तो किए ही नहीं, फ्लैग देखे वहाँ पे कुछ नहीं, ममता बनर्जी के सामने एक भी बीजेपी का झंडा नहीं हुआ, जो भी हुआ हुआ था कि ये नागरिक लोग किए हैं। देखिए जो चोर है तो चोर को क्या साधु संत तो बोलेंगे हम लोग, चोर को चोर बोलना क्या खराब है। ये 2 साल हो गया है ममता बनर्जी पानीहाटी के ऊपर यहाँ से गए, उसको एक बार मन में यही नहीं था कि 9 अगस्त है आज, और एक बार अभया का घर में आकर उसका मम्मी से ये जो भी है उसका आत्मा का स्मरण करे, शांति का कामना करे। भूल स्वीकार करना खराब चीज नहीं है, वो नहीं किए वो, और यही नहीं किए। इस बार अगर वो आए पानीहाटी में आप देख लो क्या होगा उसका।

0: these protesters who were sitting on. And the moment there was dark, the police started asking them to evacuate. And then all of a sudden, there have been a literally brutal lathi charge. They all are injured, have received injury. Many of these protesters I have seen literally crying with the injury marks. जी बताइए,
1: कुछ बात करना चाहता हूँ। मेरा नाम विशाल कुमार है, मैं एक शिक्षक हूँ।
0: आप वहाँ पे थे?
1: हाँ, मैं वहाँ पे था। मुझे लाठियां भी लगी है इस बच्ची को बचाने के लिए। सर, मैं सारी बातें आपको विस्तार से रखता हूँ, कम शब्दों में। हम लोग पीसफुली प्रोटेस्ट को कर रहे थे। हाँ। पीसफुली हम लोग जो है विधानसभा के बाहर बैठे हुए थे। कुछ बच्चों का समूह लगभग 1000 की संख्या में विधानसभा परिसर।
0: कितने बजे लाठी चार्ज हुआ था?
1: लाठी चार्ज हुआ सर अभी से लगभग 7 बजे रात।
0: 7 बजे, यानी जैसे अंधेरा हुआ था,
2: 7:30 बजे तक लाठी चार्ज किया गया। बैरिकेड लगाकर मारा गया, बैरिकेड लगाकर मारा गया। जैसे कि एक मतलब एक जानवर को पीटा जाता है ना, उस तरह से हम लोग को ट्रीट किया गया है। हम लोग को इस तरह से मारा गया है। सो बताइए,
0: बहन को पैर में भी लगा हुआ है। देयर इज अ स्वेलिंग ऑन द लेग्स। These students were literally locked since there was a dark morning. And then on the other side, look at this. There are again another set of the students. They're also helping each other with the ointment. Number of students, so those who were literally stuck and they wanted to evacuate when the police was trying to use force. Number of the students have been injured. Mehto, since was ill, he was fasting. He has been taken to hospital. Another student from the Reform Manch, who was also injured, has been taken to the hospital. And that raising severe question that the police, who claims to be maintaining restraint, all of a sudden, why it turned so violent when these students were gradually evacuated? A few were adamant, since the talks were already on, there could have been a way to sort it out. Look at these all are injured and sitting on the students. If right. I turn the camera on the other side, Rajdeep, the students came back. The agitation continues. Until unless the, you know, the JSS and CGL examination is withdrawn, the results withdrawn, we see the students are continuing this.
3: Sir, bahut ganda mara hai, sir, bahut.
0: Aapko bhi.
3: Ji, sir, dekhiye na, sir. Ye, yes, sir.
0: There's a mark on the leg. That's a mark on the leg.
3: Sir. सर, हम लोग
4: बांस का डंटा था सर, बांस का डंटा, मोटा मोटा डंटा सर, बांस के डंटा से मारा है सर।
3: जबकि हम लोग
5: पीसफुल नहीं थी तो उसका जब सर, जब मीडिया कर्मी नहीं थी तो उसके मौका का फायदा
6: उठा सर, मीडिया वाला कोई।
0: वी हैव सीन द रिस्ट्रेन टिल 6 एंड ऑल ऑफ सडन व्हेन देयर वाज सनसेट, राजदीप, दिस वाज ब्रूटल अटैक ऑन द स्टूडेंट्स। दे वर इवैक्यूएटिंग, ऑफ कोर्स दे वर आस्किंग देम टू इवैक्यूएट, एंड देन ऑल ऑफ सडन द पुलिस लिटरली, यू नो, घेर आउट द स्टूडेंट्स एंड देन लुक एट दिस व्हाट हैज हैपेंड। They all are injured, helping out each other with ointments and medicines. Rajdeep.
7: Okay, I'll come back to Ashutosh later. As you can see, those are the images coming from Jharkhand. This has been a day where the student protest has dominated the headlines. It's erupted into a full-blown showdown on the streets of Ranchi, with protesters breaching barricades, facing lathi charge, water cannons, and tear gas. With recruitment exam irregularities at the heart of the agitation, students asking for at least 13 exams to be cancelled. The standoff has now escalated into a political battle against the JMM Congress government in Jharkhand, with the BJP fully supporting the protesters. Take a look at this report.
8: Jharkhand students are on a warpath against the Hemant Soren government over irregularities in recruitment exams. Thousands came out on the streets on Monday in response to the call to ghera the Vidhan Sabha in Ranchi. Multiple barricades were put up to stop them from reaching the assembly. But one by one, the barricades fell. The police responded first with a lathi charge, then with water cannons, and finally tear gas. The students, however, reached the assembly and stood outside the gates.
0: इन्होंने कहा था हम आएंगे, ठाना था और आए। अब यही छात्रों को वापस भी निकाल रहे हैं, कह रहे हैं प्रदर्शन हमारा सांकेतिक प्रदर्शन संकेत देना था, सरकार पर दबाव डालना था, जेएसएस सीजीएल खत्म हो और अब उसको वापस लिया जाए। जितना छात्रों का जमावड़ा था, एक एक करके, दो दो करके सब निकल रहे हैं। कहीं कोई ऐसी हिंसा नहीं हुई, एक दूसरे की मदद की छात्रों ने रहे और बड़ा फ्रेंडली मैच हो रहा था।
8: देवेंद्रनाथ महतो, हु हैज बीन ऑन अ हंगर स्ट्राइक, जॉइंड द प्रोटेस्ट मार्चिंग होल्डिंग अ फोटोग्राफ ऑफ शिबू सोरेन।
9: लाठी चार्ज, वाटर कैनन, सब का प्रयोग किया जा रहा है हमारे आवाज को दबाने के लिए। ये सरकार डर गई है, कायर सरकार है। जब जब सरकार डरती है, पुलिस को आगे करती है। हम लोग डरने वाले नहीं है, सरकार का एक ही विकल्प है, हमारा मांग को पूरी करे, अन्यथा सरकार अपना कुर्सी नहीं बचा पाएगी, उसका कुर्सी पर खतरा है।
8: While the Soren government has agreed to cancel 3 Jharkhand Public Service Commission and Jharkhand Staff Selection Commission exams, the students are insisting on cancelling the Jharkhand Staff Selection

0: Education Commission's combined graduate level exam as well. They're also demanding a probe by the CBI and the ED. The CID has arrested former chairperson on the Jharkhand Public Service Commission, L.K. Angde.
1: तकरीबन हर बात को हम लोगों ने माना है रिफॉर्म्स के मामले में एक बहुत बड़ा बदलाव राज्य सरकार लेकर के आने का के प्लान में है वो बातें भी उनके समक्ष रखी गई
0: Meanwhile, the BJP hit out at Rahul Gandhi, accusing the Congress leader of selective outrage.
2: Rahul Gandhi ko Jharkhand Ranchi ke chhatron ki goonj sunai nahi pad rahi hai. Yah darshata hai ki unka uddeshya chhatr hiton ki baat karna nahi, apne rajnaitik swarthon ki poorti karna hai.
0: Hours later, in a social media post, Rahul backed his protesting students.
3: We condemn any violence against peacefully protesting students. Does not matter where it is happening, we condemn it, we are against it, we do not recommend it, we do not support it.
0: The streets remain tense, the students remain defiant, and the political battle is only intensifying. For now, the standoff over the students' demands remains unresolved. With Ashutosh Mishra, Satyajit Kumar and Shashi Bhushan in Ranchi, Bureau Report, India Today.
4: Okay, I want to go to two students who have been part of their protest in different ways. Deepak Prajapati is joining me. He has done these exams and therefore has someone who's been directly impacted by the irregularities in those exams. Also joining us, Adarsh Gupta. He's a singer and influencer whose videos are going viral. And Raj Kashyap, who's preparing for the exams but has been at the protest site for the last 17 days. Deepak, pehle bataiye what you have seen today. Government is saying 98% demands have been met. They have cancelled three of the four main exams. The fourth exam, they say they cannot cancel because it was done under court monitoring and people have already been recruited. Do you agree ki 98% jo hai, wo aapke demands meet hue hain aur ab ye andolan ki zarurat nahi hai, sarkar keh rahi hai. Kya kahenge aap? आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है राज कश्यप आप एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे थे आप इस आंदोलन में क्यों शामिल हुए
5: सर यहाँ पे जो आंदोलन चल रही है पिछले कुछ सालों तो बोलना उचित नहीं होगा सर 26 सालों से जब से झारखंड फॉर्म हुआ है सर तब से ही यहाँ पे धांधली चल रही है आज तक कोई भी जेपीएससी और जेएसएससी का जो भी पेपर हुआ है वो बिना पेंडिंग बिना कोर्ट के ऑर्डर के बिना आज तक क्लियर नहीं हो पाया है सर और अगर मैं बात करूँ पिछले 17 दिनों से चल रहे शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट को कैसे हाईजैक करने की कोशिश करती है और कैसे प्रोपेगेंडा के तहत इसे ब्लेम करने की कोशिश करती है सरकार सर हमारी जो मांगे थी सर सरकार बोल रही है 98% आपका जो है मांग को रख लिया गया है बट वो सरकार की तरफ से 98% है हमारे साइड से सर 5% का वो है तो हमें जो है 5% में कैसे अग्री कर सकते हैं सर आप बताइए जिस राज्य में खनिज संपदा भरी पड़ी है उस राज्य में सरकारी वैकेंसी 9-9 साल से पेंडिंग पड़ी हुई है सर अभी तक रिक्रूटमेंट आई नहीं है आपको मैं दरोगा का वैकेंसी के बारे में बताना चाहूंगा सर पिछले 9 साल में एक भी वैकेंसी नहीं आई है सर दरोगा की अगर मैं बोलूं किसी एक दरोगा बनने की जो उम्र समय सीमा होती है सर वो 21 से 30 इयर्स मतलब 21 टू 30 इयर्स होती है सर अब जो युवा इस अवस्था में होगा जिसका 21 से 30 साल होगा सर वो तो अब कभी एलिजिबल भी नहीं हो पाएगा सर उसके लाइफ में कभी ये टर्म आएगा सर क्या वो बन सकता है दरोगा तो इस
4: पर नहीं सवाल नहीं नहीं सवाल ये है कि जो एग्जाम्स सरकार ने कैंसिल किए हैं आप कह रहे हैं सभी एग्जाम्स को कैंसिल करना पड़ेगा पिछले 5-6 साल के जितने भी एग्जाम्स हैं क्योंकि कई लोगों को तो रिक्रूट भी किया गया है सरकार ने
5: जी सर अगर रद्द नहीं करा सकते सर सीबीआई जांच हम लोग पहले मांग रहे थे सर सीबीआई जांच करने को भी रेडी नहीं है सरकार हम ना उनका इस्तीफा मांगना चाह रहे हैं सर ना उनकी कुर्सी चाहते हैं हम चाहते हैं कि सीबीआई जांच करे और सीबीआई पे इसलिए भरोसा है सर ताकि ये जो चीजें चल रही है स्टेट के अंदर, और अभी सरकार जो है अपोजिशन की है सेंट्रल में, इसलिए हम लोगों को सीबीआई पे थोड़ा सा भरोसा है सर कि सीबीआई कम से कम ये परफॉर्म कर करके और हम लोगों के हित में बात करेगी, तो इसलिए उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं सर कि सीबीआई कम से कम हम लोगों का जांच, हम लोगों के लिए जांच करे सर और हम लोगों के फेवर में रखे चीजों को, जब तक हम लोग नीचे तह तक जा करके लूफोल्स को फाइंड आउट नहीं करेंगे सर, झारखंड की शिक्षा प्रणाली व्यवस्था कभी नहीं सुधर सकती है सर, इतना ज्यादा यहाँ पे लूफोल्स है सर शिक्षा प्रणाली व्यवस्था में, सिर्फ कॉम्पिटिटिव में नहीं सर, ये एकेडमिक में भी बहुत सारी धांधलियां चलती है सर, छह बारह महीना सर यहाँ पे सेशन डिले चल रहा है सर, मैं क्या ही बताऊं आपको झारखंड के बारे में, कहने को बहुत सारी चीजें है सर।
4: मेरे साथ दीपक के साथ राज कश्यप जी भी हैं, राज जी आप बताइए मुझे, आप इस सॉरी दीपक प्रजापति मुझे बताइए आप इस आंदोलन में क्यों शामिल हुए हैं, और क्या आपको लगता है कि पूरे सिस्टम का ओवरऑल चाहिए, सभी एग्जाम जितने भी पिछले 5 साल में हुए हैं सभी को रद्द करना है?
6: जी सर, हम सभी एग्जाम जो है ना झारखंड में जितने हेमंत सोरेन के कार्यकाल में एग्जाम हुए हैं उसको हम रद्द करने का मांग कर रहे हैं, उसका हम कारण भी बता रहे हैं सर। जब से हेमंत सोरेन हमारे झारखंड में मुख्यमंत्री बने हैं तब से यहाँ पे लगभग 3-4 साल तो बरगलाया गया स्टूडेंट को, मतलब की बात घुमाया गया। यहाँ पे 2019 दिसंबर में हेमंत सोरेन का सरकार आया, 20 में कोरोना आया, 21 में नियुक्ति वर्ष उन्होंने बोला कि 2021 नियुक्ति का वर्ष माना जाएगा, लेकिन उस वर्ष भी चला गया। 2022 में नियमावली का चर्चा चला लेकिन नियमावली भी नहीं बना। 2023 में बहुत आंदोलन होने के बाद सीजीएल का एग्जाम हुआ, लेकिन सीजीएल का जब एग्जाम हुआ तो जनवरी 2023 में एग्जाम हुआ था, लेकिन उसमें भी जैसे हम लोग एग्जाम दे मेरा दो दिन एग्जाम था, तो फर्स्ट दिन मेरा एग्जाम नहीं था, सेकंड दिन था, सेकंड रविवार को, तो फर्स्ट रविवार को जो एग्जाम दिया उसी दिन पेपर धांधली हो गया, हम लोग पेपर भी नहीं दिए और पेपर धांधली हो गया तो पेपर कैंसिल हो गया। फिर सितंबर में एग्जाम हुआ तो उसमें भी पेपर धांधली हुआ, जब हम लोग प्रोटेस्ट किए जेएसएससी सीजीएल ऑफिस, पूरा सबूत, फिर सीआईटी जांच का मांग हुआ, सीआईटी जांच चला 5 महीना, सीआईटी जांच चला मई तक,
4: और आज जब पुलिस ने जो क्रैकडाउन किया है, पुलिस कह रही है आप इस तरह से असेंबली के अंदर नहीं आ सकते,
6: पेपर भी नहीं दिए और पेपर धांधली हो गया तो पेपर कैंसिल हो गया। फिर सितंबर में एग्जाम हुआ तो उसमें भी पेपर धांधली हुआ, जब हम लोग प्रोटेस्ट किए जेएसएससी सीजीएल ऑफिस, पूरा सबूत, फिर सीआईटी जांच का मांग हुआ, सीआईटी जांच चला 5 महीना, सीआईटी जांच चला मई तक,
4: और आज जब पुलिस ने जो क्रैकडाउन किया है, पुलिस कह रही है आप इस तरह से असेंबली के अंदर नहीं आ सकते, इसलिए हमें लाठी का प्रयोग करना पड़ा, क्या कहेंगे
6: सर? हम लोग जो भी
5: सर मैं बताना चाहूंगा सर कि एक बार जब सीआईडी की फर्स्ट कमिटी गठित की गई थी एसआईटी की, तो उन्होंने बताया था कि 120 क्वेश्चन मैच्ड विद द क्वेश्चन, ठीक है, एक बार जो एग्जाम हुआ था उसका 120 क्वेश्चन हूबहु मिला था सर, और दूसरी बार जब सीआईडी की टीम एसआईटी के द्वारा गठित किया गया था वो बोल रहे थे इस चीज को बोल रहे थे अ फ्यू क्वेश्चन वुड बी मैच्ड, तो सोचिए सर कितना फासला है, 135 क्वेश्चन में 120 क्वेश्चन फ्यू क्वेश्चन होता है सर, क्या ये फ्यू क्वेश्चन है? तो इस तरह से हम कैसे बिलीव करेंगे सर सीआईडी पे? सीआईडी की जो काम थी सर कि उनको मैटर को उभार देना, उन्होंने बखूबी निभा दिया है, अब हम चाहते हैं कि सीबीआई की टीम आ करके और इसको इन्वेस्टिगेट करे और प्रॉपर जो भी लूपहोल्स है सर वो सारी फाइंड आउट करके और शिक्षा प्रणाली व्यवस्था बनाने में एक अच्छी व्यवस्था बनाई जाए, एक अच्छा लॉ लाया जाए जिसको रिफॉर्म करके और झारखंड का शिक्षा व्यवस्था कम से कम सही किया जाए सर, हर साल कम से कम एक वैकेंसी तो आए, एक अच्छे से वैकेंसी तो आए सर।
4: ठीक है राज कश्यप, दीपक प्रजापति, मैंने आपकी आवाज सुनी है, होपफुली गवर्नमेंट इज लिसनिंग टू यू, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी ऑन द शो। आपने जो आपका गुस्सा है वो सरकार तक पहुंचना है, सोरेन सरकार तक। नाउ दिस July 20th स्टूडेंट प्रोटेस्ट क्रैकडाउन हैज ट्रिगर्ड अ पॉलिटिकल शोडाउन इन पार्लियामेंट विद कांग्रेस एंड द बीजेपी ट्रेडिंग शार्प चार्जेस Rahul Gandhi rejecting the government's offer that Amit Shah will come and discuss the students' issues. Now he wants

0: Thiang Te, the former chairman of the Jharkhand Public Services Commission. He's been taken into custody. But protesters and the opposition, the BJP, both of them say that these protests and these arrests are an eyewash. The protests in Jharkhand have led to a furious war of words between the ruling party and the opposition, even at the center. The BJP has accused the Congress party of blatant double standards. BJP MP Sudhanshu Trivedi accused leader of opposition Rahul Gandhi of adopting double standards. Very vocal on protests in Delhi in Jantar Mantar, but absolutely silent on students being lathi charged in Jharkhand right now, except one perfunctory condemnation. Now, they're saying that students are also protesting in Keralam, the Congress is in power. Not a word from Rahul Gandhi. The Congress has hit right back. Leader of opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi, he has criticized the lathi charge on students in Jharkhand. He is up the ante in Delhi, demanding that Union Home Minister Amit Shah put in his papers and clarify whether the Home Minister ordered the use of pellet guns in Delhi protests or was he unaware. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said Home Minister Amit Shah was willing to speak on the issue of students and the protests in Delhi. Congress says the opposition is not interested in the Home Minister's point of view. They only want clarity on one aspect. Did the Home Minister order the firing or was he unaware of the use of pellet guns? Just a short while back, moments ago, Union Health Minister JP Nadda, he accused the Congress of repeatedly shifting goalposts and not wanting the House to function. He said the Home Minister was willing to respond to every issue raised by the opposition, but it was Rahul Gandhi and the Congress party, they were running away from a debate. He accused the Congress of being a hand in glove with the Jharkhand government and the use of force against students and the use of concertina wires to block students in Jharkhand. We'll get you all sides of this big debate that's escalating. But for the latest on ground, I quickly want to cut across to Ranchi. Shashi Bhushan, my colleague, now joins me from Ranchi with the latest. Shashi, is samay ki kya sthiti hai? Kya chhatron ko puri tarah se hata diya gaya hai assembly ke samne? Lathi charge hua ya keval chhatron ko hataya gaya?
1: नहीं देखिए, थोड़ा बल प्रयोग करना पड़ा है पुलिस को, और पुलिस के पटना माफ़ कीजिएगा रांची पुलिस के जो एसएसपी हैं वो इस बात को कबूल भी रहे हैं कि हमने थोड़ा सा बल प्रयोग किया है. लेकिन छात्रों का ये कहना है कि पुलिस ने लाठियां चटकाई जब छात्रों की संख्या कम हो गई थी और जब अंधेरा हो गया था और बारिश के बाद हालात बदल गए थे. लेकिन हाँ, सबसे बड़ी बात ये है गौरव कि अब छात्र जो वहाँ से निकले हैं वो छात्र कहाँ जाएंगे, या आज जिन छात्रों की मौजूदगी रही, हजारों लाखों की संख्या आप कह सकते हैं, हजारों तो आप बिल्कुल मान लीजिए, तो उन परिस्थितियों में जो छात्र झारखंड के अलग अलग कोने से आए हैं उन छात्रों के लिए अब क्या विकल्प है? क्या वो आज वापस चले जाएंगे अपने दूसरे जिले में या गांव में, या फिर वो आज यहाँ रुकेंगे? क्योंकि आज सरकार ने बात
0: यहाँ जब आप कह रहे हैं वो असेंबली के सामने या जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम वापस जाएंगे, अभी क्या स्थिति है? अभी छात्र के अभी भी असेंबली के सामने है या वहां से उनको खदेड़ दिया गया है?
1: नहीं, वहाँ से छात्रों को निकाला गया है और पुलिस ने इंश्योर किया है कि वहाँ पे छात्र ना रहें. लेकिन हाँ, मैं उसी बात पे आ रहा था कि अब छात्रों के पास विकल्प ये बचता है कि जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम है जहाँ पर पिछले 17 दिनों से ये पूरा आंदोलन चल रहा है, अब वही छात्रों के लिए एक जगह बचती है जहाँ छात्र जाएंगे. तो मुझे ये लगता है जो अब तक हमने आज देखा प्रोटेस्ट को, जिस तरह से विधानसभा का घेराव किया, छात्रों को शायद ये बात लग रही है कि सरकार उनको उनकी अनदेखी कर रही है. उनके डिमांड्स पे सरकार ने आज कोई पहल नहीं की. देवेंद्र महतो लगातार कह रहे हैं कि अब वार्ता का दौर खत्म हो चुका है, अब आपको फैसला लेना है. सरकार 98% बातें मान लेने का कमिटमेंट कर रही है या उसको बता रही है बयानों के जरिए, लेकिन जो 2% पर मामला अटका है ना, यही 2% सबसे निर्णायक भी है. और इसी 2% की वजह से आज हेमंत सरकार की किरकिरी हुई है कि जो आज तक नहीं हुआ, कभी विधानसभा के सामने तक इस तरह से कोई प्रदर्शनकारी नहीं पहुंचे, आज वो इतिहास बन गया है झारखंड का. गौरव,
0: और देवेंद्र सिंह महतो का क्या कहना है? जिस तरह से वो कह रहे हैं कि उनका दमन किया जा रहा है, छात्रों की आवाज को कुचला जा रहा है. शशि, स्टे विद मी, वी विल हैव अ कॉन्वर्सेशन इन ग्रेटर डिटेल अबाउट दिस, बट फॉर द बेनिफिट ऑफ व्यूअर्स हु आर जस्ट जॉइनिंग अस, आई वांट टू गेट यू द डेज डेवलपमेंट्स. वेव आफ्टर वेव ऑफ स्टूडेंट्स, दे केम टू द झारखंड असेंबली. देयर एम वॉज टू रीच द असेंबली. टुडे इंसिडेंटली इज चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन्स बर्थडे. द स्टूडेंट